0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है समाचार, अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण करते हुए ये बात कही।
2: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
1: ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा।

0: जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट और परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी का विषय 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वाणिज्य विषय का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और समाजशास्त्र का विषय 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला यह नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। वहीं भारतीय जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमस्करुणन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी से होगा। उधर पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम आज नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। आज का मुकाबला पूल डी में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एक 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं, आइए सुने चिंतन।

इस संसार में उम्मीद वो सबसे ताकतवर शब्द है जिसके सहारे असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। उम्मीद है तो कुछ भी पाया जा सकता है। जब हमारे भीतर आस है कुछ हासिल करने की, कुछ कर दिखाने की, तो हमें इस संसार की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। जब तक हम आशा का दामन थाम कर रहेंगे, तब तक हमें कोई चीज़ हरा नहीं सकती। इसलिए तो कहा जाता है कि आशा जिए और निराशा भागे। तो जीवन में हमेशा आशावान बने रहें और खुशहाल जीवन की उम्मीद बरकरार रखें। चिंतन के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना की शुरुआत हम कर रहे हैं सभी मांगलिक कार्यों को

देवों के देव महादेव जो भक्ति और आराधना के प्रतीक है, वह प्रत्येक प्राणी को धर्म और सद्मार्ग पर ले जाए और इस समस्त सृष्टि के कल्याणकारी बने। भोलेनाथ हम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। इसी कल्याणमयी भावना के साथ आइए जयकारा लगाते हैं भोलेनाथ का।

श्री कृष्ण मुरारी इस समस्त सृष्टि के तारणहार है। जिस किसी ने भी सच्चे मन से उन्हें याद किया, वो हमेशा ही उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। सुबह के 6:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं रामचरितमानस से एक और भक्तिमय प्रस्तुति मानस गान।

शोक संताप और ग्लानि के सागर में डूबते उतराते सुमंत्र ने सारा दिन अयोध्या नगरी के बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर बिताया। जब शाम का अंधकार घिरने लगा तो उन्होंने नगर में प्रवेश किया। महामंत्री का अकेले वापस आना सुनकर रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल प्रेतों के निवास स्थल जैसे लगने लगे। सुमंत्र को मौन तथा व्याकुल देखकर रानी कौशल्या उन्हें अपने महल में लिवा ले गईं। वहां का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक है।

आभूषण रहित मलिन राजा दशरथ धरती पर पड़े हैं। वाणी के नाम पर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी मात्र यही शब्द सुनाई पड़ते हैं। सुमंत्र ने जयजीव कहकर प्रणाम किया तो राजा ने उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया।

अभी आप सुन रहे थे मानस गान 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से हमारी आज की प्रसारण सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की। सात बजकर 7:10 पर आप सुनेंगे सुबह सुहानी कार्यक्रम। 7:40 पर हम आपको सुनवाएंगे हिमाचली लोक गीतों का कार्यक्रम शुभ भ्याग। देश और दुनिया का ताजा हाल समाचारों से आप जान सकते हैं सुबह 8:00 समाचार प्रभात में, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, इसके अलावा दिन में 1:00, शाम 5:00, शाम 7:00, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9:00 News@9 और सभा के अंत में रात्रि 11:00। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। 8:45 पर आज आप सुनेंगे कानून की बात कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।

सुबह 9 बजे आप सुनेंगे ईमेल बेस्ड प्रोग्राम गीतांजलि, जिसमें आप हमें मेल भेजकर सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत। प्रादेशिक समाचार हमारे केंद्र से सुने जा सकते हैं सुबह 9:20 पर, सुबह 11 बजे, दिन में 3 बजे, शाम 6 बजे और 7:45 पर। ये प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। गीतों का कारवां, ये कार्यक्रम आप रोजाना सुनते हैं सुबह 10 बजे और 10:30 पर। आनंद लीजिए, पहाड़ी लोक संगीत का कार्यक्रम रहेगा पहाड़ों के सुर। पंजाबी गीत आप एंजॉय कर सकते हैं सुबह 11:05 पर, कार्यक्रम रहेगा महक पंजाब दी। 11:30 पर सुनेगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दिन में 12 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं सैनिकों के लिए कार्यक्रम और 12:30 पर आप सुनेंगे सुनो सखी कार्यक्रम। दोपहर 1:10 से लेकर शाम 5 बजे तक आनंद लीजिए विविध भारती के कार्यक्रमों का। हमारी सायंकालीन सभा की शुरुआत हम करते हैं भजनों के साथ 5:10 पर। 5:25 पर युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा मंच। 6:05 पर हम आपके लिए लेकर आते हैं सुरमई सांझ कार्यक्रम और 6:30 पर आनंद लीजिएगा मौजा ग्राइंडिया कार्यक्रम के। किसान बागवान श्रोता खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनेंगे शाम 7:10 पर। रात्रि 8 बजे सुनेगा संसद समीक्षा और 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कुछ देशभक्ति गीत। एक ही कलाकार कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर और 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे गूंज पहाड़ों के कार्यक्रम।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा और लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही पर आधारित रिकॉर्डिंग, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। श्रोता, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से। हमारी आज की प्रसारण सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही बलों में संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इन क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये विशेष व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाके सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण महीनों तक कटे रहते हैं। ऐसे में वहां समय पर जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। जनगणना संचालन निदेशक अमित शर्मा ने बताया कि इस प्रक्रिया से निवासियों को 1 से 30 सितंबर तक घर घर जाकर जाने वाली जनसंख्या गणना से पहले डिजिटल रूप से अपनी जानकारी देने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय का परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करते हुए ये बात कही। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे।

विशाखापट्टनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेंगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला ये नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बाय मिलने के बाद पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसारुक्कुन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी स्कॉट गिल्डिया और पॉल रेनॉल्ड्स से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुबह सुहानी।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार श्रोताओं। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आप है आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ। सुबह के 7:10 हो चुके हैं और शुरुआत हो चुकी है एक ऐसे प्रोग्राम की जिसमें बातें हैं, जानकारियां हैं कुछ बीते दिनों की, तो कहीं कुछ बातें होगी उन ताज़ा तरीन हलचलों की जो आप सभी के आसपास हो रही है इन दिनों। और सबसे अहम हिस्सा रहता है हमारे प्रोग्राम का, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं कुछ प्यारे प्यारे से गीत। तो बस आप हम सफर बन जाइए हमारे सुबह सुहानी प्रोग्राम में। जी हाँ दोस्तों, सुबह सुहानी प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं इस खूबसूरत से सुविचार के साथ। दोस्तों, अब जैसी संगति में रहेंगे वैसे ही आपका भविष्य बनेगा, इसलिए सोच समझ कर दोस्त और माहौल चुनिए, क्योंकि इन दोनों का ही आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। आप जैसे इंसान बनना चाहते हैं वैसे ही दोस्त चुनिए। और रही बात माहौल की, तो भाई वो तो सुबह सुहानी प्रोग्राम में एकदम से मस्त रहने वाला है, क्योंकि हम आपको सुनाने जा रहे हैं कुछ प्यारे प्यारे से गीत आकाशवाणी धर्मशाला पर। और इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ।

जी हाँ, आज की भीगी भीगी सी मदमस्त सुबह में आप इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं सुबह सुहानी प्रोग्राम। जी हाँ श्रोता, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज विशेष की। जानते हैं आज की उन प्रमुख घटनाओं के बारे में जो आज के इस दिन को और भी विशेष बना देती है। बात करें 17 अगस्त 1909 की, तो महान भारतीय क्रांतिकारी मदनलाल ढींगरा को ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वैली की हत्या के आरोप में लंदन की पेंटोल विलेज जेल में फांसी की सजा आज सुनाई गई थी। वहीं 17 अगस्त 1945 में इंडोनेशिया ने नीदरलैंड से अपनी स्वतंत्रता की आधिकारिक घोषणा की। साल 1947 में भारत के विभाजन के बाद बंगाल का मालदा जिला आधिकारिक तौर पर पश्चिम बंगाल का हिस्सा बना। वहीं आज ही के दिन स्वतंत्रता मिलने के ठीक बाद ब्रिटिश सेना की पहली टुकड़ी ने भारत छोड़ा और अपने देश के लिए रवाना हुई। बात करें 17 अगस्त 1993 में, तो आज के दिन लंदन स्थित बकिंघम पैलेस में के दरवाजे पहली बार जनता के लिए खोले गए। चलिए अब आपको बता देते हैं आज के दिन किन प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म हुआ। 17 अगस्त 1916 में प्रसिद्ध साहित्यकार और उपन्यासकार अमृतलाल नागर का जन्म हुआ। वहीं साल 1943 में प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता रॉबर्ट डी नीरा का भी जन्म हुआ।

चलिए श्रोताओ, आपको बता देते हैं कि आज है हिंदी के महान और लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार और नाटककार अमृत लाल नागर की जयंती। जी हाँ, जिन्हें मुंशी प्रेमचंद का सच्चा उत्तराधिकारी

भी माना गया है। उन्हें वर्ष 1967 में अमृत और विश के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1981 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बात करें उनके आरंभिक जीवन की तो 17 अगस्त 1916 में आगरा के उत्तर प्रदेश में उनका एक गुजराती परिवार में जन्म हुआ। उसके बाद उनका परिवार लखनऊ में बस गया और जिससे उनकी रचनाओं में लखनऊ की संस्कृति और समाज की गहरी छाप हमें दिखाई देती है। और बात करें उनकी शिक्षा की तो उन्होंने हाई स्कूल तक की अपनी जो है वो पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने स्वयं अध्ययन किया और हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और मराठी भाषाओं पर जो है आधिकारिक पकड़ हासिल की। आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने 1953 से लेकर 1956 तक ऑल इंडिया रेडियो में ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में भी काम किया और उनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो उनमें शामिल है मानस का हंस, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, खंजन नयन और बूंद का समुद्र, जबकि उनकी प्रमुख कहानी संग्रह में शामिल है वाटिका, तार तारा और आज के खाने। चलिए बता देते हैं कि आज एक और खास दिन हम मना रहे हैं। जी हाँ, आज है नाग पंचमी। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार ये पवित्र त्यौहार 17 अगस्त को मनाया जा रहा है क्योंकि इस दिन उदय तिथि और सावन सोमवार का विशेष संयोग है। इस दिन नाग देवता और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। नागों को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा करने से भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन पूजा और रुद्राभिषेक करने से काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है और आप सर्प के भय से भी मुक्त होते हैं। नाग देवता को के चित्र या मूर्ति को हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सफ़ेद फूल और कच्चा दूध अर्पित किया जाता है। वहीं आज के दिन शास्त्रों में ये बताया जाता है कि भूमि की खुदाई करने से जो है बचना चाहिए। फिलहाल तो हम सभी भी नाग पंचमी के इस पावन त्यौहार को मिलजुल कर आपस में मनाते और भोलेनाथ की उपासना करते हैं।

0: Step into the world of Nexa.
1: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
0: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags.
1: And now it's yours at an effective price of just 5.79 lakh rupees.
0: Yes, rupees 5.79 lakh. Valid till 31st August.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today.
0: Hurry, offer still stocks last. TNC apply.
2: Nexa.
3: जी हाँ, बने हुए हैं आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ और इस वक्त आप सुन रहे हैं सुबह सुहानी प्रोग्राम। तो चलिए प्रोग्राम में अब रुख करते हैं न्यूज हेडलाइंस की तरफ और आपको बताते हैं आज की ताजा तरीन हलचलें।

स्वतंत्रता दिवस के बाद वंदे मातरम के पूरे गायन को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 को लेकर एक नया राजनीतिक तर्क देते हुए बयानबाजी शुरू की। वहीं रिलायंस के रॉल्स रॉयल्स के फाइटर जेट के इंजन निर्माण को लेकर एक नई रणनीति की घोषणा की गई। चलते चलते बात करें मौसम की, तो मॉनसून जो है वो इन दिनों पूरी तरह से हमारे देश में सक्रिय है और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से नदियां उफान पर है और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। जहां कई सड़कें और पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई है, वहां पर लोगों को कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। बात करें आने वाले दिनों की, तो अभी मॉनसून का यही रुख हमें देखने को मिलने वाला है और कई स्थानों पर आज भी बारिश की संभावना जताई गई है।

0: जी हाँ श्रोतो, इसी गीत के साथ आज का सुबह सुहानी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।
1: सुबह सुहानी।
0: सो 3.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली लोक गीतों का कार्यक्रम शुभ ब्याह।

0: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ।
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: शुभ कार्यक्रम का अगला लोकगीत आइए सुनिए कृष्णलाल सहगल और कली शर्मा की आवाजों में।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ भ्याग। कार्यक्रम का अगला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं विनोद गंधर्व की आवाज में।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे देश गान। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है। देश और दुनिया का ताजा हाल समाचारों से जानने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो समाचार प्रभात के लिए। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण वाली 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। 1 अक्टूबर को संदर्भ तिथि मानकर लद्दाख में जनगणना 2027 पूरी हो जाएगी। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
7: लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है जहां जनगणना 2027 का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। स्वगणना आज से शुरू हो रही है। लद्दाख में पूरी आबादी को शामिल करने के लिए करीब 637 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि सितंबर में जनसंख्या गणना कराने का निर्णय क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी, दुर्गम इलाकों और सीमित पहुंच को देखते हुए लिया गया है। जनसंख्या गणना में आबादी के वितरण, जनसांख्यिकी संरचना, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, पलायन, दिव्यांगता, भाषा, प्रजनन और आबादी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। यांगचेन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
6: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।

0: मंत्रालय ने बताया है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप एनपीजी तंत्र के माध्यम से किया गया है। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में हाल ही में संपन्न मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाना है। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के इंदौर में देश में पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू किया है। इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा भी शुरू हुई है। एक रिपोर्ट।
2: करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से PPP मॉडल पर 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी तैयार की गई है। वर्चुअल जंगल सफारी में लोग तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों का आभासी अनुभव ले सकेंगे। वहीं 14D सिनेमा में दर्शकों को फिल्म देखने का अलग अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सुविधाओं का कल लोकार्पण किया और स्कूली बच्चों के साथ 14D सिनेमा में फिल्म भी देखी। इन नई सुविधाओं से बच्चों और पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति को तकनीक के जरिए समझने का मौका मिलेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान के 5वें चरण के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति केवल सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 011-23-31-04-81 या 23-71-17-17 या 23-71-7106 और 23-31-44-44। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ

0: करेंगी। इस पहल को चुनावी साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर में राहत और बहाली के काम में तालमेल बिठाने के लिए 3 IAS अधिकारियों को तैनात किया है। मछुआरों को कल तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बालेश्वर जिले के जलेश्वर में लगातार बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 1 अन्य गंभीर रूप से घायल है। मयूरभंज जिले में रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय ये वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। एक रिपोर्ट।
2: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना किया। राजौरी और पुंछ जिलों में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। समुद्र तल से करीब 4,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू सफेद पत्थर का शिवलिंग है। यात्रा से जुड़ी सहायता के लिए श्रद्धालु जम्मू यातायात नियंत्रण इकाई से 01912467302 और श्रीनगर यातायात नियंत्रण इकाई से 01942479871 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं कृष्णकांत।
3: BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारतीय खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज से भिड़ेंगी। पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गौले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद प्रियंका। वंदे मातरम पर तीखी तकरार और UGC नेट पेपर में गड़बड़ी से जुड़ी खबरों को आज हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आज़ादी के उत्सव के बाद सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के बीच टोका टाकी, भाजपा बोली माफी मांगे। रेलवे स्टेशनों के पानी में जहरीले बैक्टीरिया मिलने की CAG की रिपोर्ट के बाद नवभारत टाइम्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान को सुर्खी दी है कि रेलवे करीब 20,000 जगहों पर नया टैंक टू टैप पानी फिल्टर सिस्टम लगाएगा। पुरानी टंकियां बदली जाएंगी और नियमित जांच होगी। 5 बार के तृणमूल विधायक आशीष बनर्जी के दफ्तर में खुदकुशी की खबर को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट हटाने की वजह जान सकेंगे यूजर्स। अमर उजाला की सुर्खी है, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद बड़े सुधार की चल रही है तैयारी। छोटे शहरों में JEE, नीट, CUET के मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेगी सरकार। पंजाब, हरियाणा सहित 7 राज्य साथी पोर्टल से पायलट प्रोजेक्ट में 21 लाख बच्चे ले चुके हैं कोचिंग। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहे बस्तर में आजादी के बाद से पहली बार तिरंगा फहराया जाना और प्रधानमंत्री मोदी का अपने संबोधन में युवा कार्यबल पर जोर देना स्वागत योग्य है, लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण होगा जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दैनिक भास्कर की यह खबर ध्यान खींचती है, ना इंटरनेट ना बिजली, दीवारों पर ही नोट्स तैयार किए। राजस्थान के बाड़मेर और आसपास के जिलों के करीब 18 गरीब होनहारों ने नीट क्वालिफाई किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले

0: sociology and commerce following complaints of errors in these papers. Protesting Jharkhand students to hold fresh round of talks with state government in Ranchi today. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Odisha and Gangetic West Bengal. Annual pilgrimage to Himalayan Shrine of Burha Amarnath begins in Jammu and Kashmir. And BWF Badminton World Championships to begin today in New Delhi. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: एक सौ 3.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। जी हाँ श्रोताओं, आपके मनोरंजन के लिए लेकर आ गए हैं हम कुछ फिल्मी गीत। प्यारे प्यारे से गीतों को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे सरगम फिल्म के इस गीत के साथ। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

जी हाँ श्रोताओ, गीत संगीत की सुरीली सी सरगम छिड़ चुकी है आपके अपने रेडियो स्टेशन पर, जहाँ हमारी हर मुमकिन कोशिश रहती है आपके दिन को बेहतर बनाने की। तो चलिए एक और प्यारा सा गीत आप सभी के रेडियो सेट्स पर हम भेज रहे हैं मुकेश की आवाज में। फिल्म है संगम।

0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price, starting from just 9.67 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 31st August.
1: Own the style icon at an EMI of just 899 rupees per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbag as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए
6: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी
7: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में सौतन फिल्म से ये गीत

श्रोता, इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कानून की बात कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: की बात कार्यक्रम। नालसा नशीली दवाओं के दुरुपयोग के पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशीली दवाओं के खतरे के उन्मूलन योजना 2015। विशेषज्ञ हैं विक्रांत कौंडल, अतिरिक्त सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला, और इनसे भेंट कर रहे हैं डॉक्टर हुकुम शर्मा। हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी सुना जा सकता है।
1: नमस्कार, कानून की बात कार्यक्रम में मैं हुकुम शर्मा आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। श्रोताओं, कानून की बात में आज नशीली दवाओं के दुरुपयोग के पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशीली दवाओं के खतरे के उन्मूलन योजना 2015, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और जानकारी देने के लिए आकाशवाणी स्टूडियोज में आज हमने आमंत्रित किया है विक्रांत कौंडल जी को। आप अतिरिक्त सचिव हैं हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला। विक्रांत कौंडल जी, आकाशवाणी स्टूडियोज में हम आपका स्वागत करते हैं। और शुरुआत यहीं से ही करते हैं कि जो नालसा की नशीली दवाओं से संबंधित जो योजना है, ये शुरू कब की गई थी?
2: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग से प्रभावित व्यक्तियों को विधिक सहायता एवं अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई है। योजना का उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग से उत्पन्न कानूनी एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान करने में विधिक सेवा संस्थाओं की भूमिका को प्रभावी बनाना है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो नशीली दवाओं के दुरुपयोग से प्रभावित एवं पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क एवं प्रभावी विधिक सेवाएँ, कानूनी सलाह सहायता उपलब्ध करवाना है। इसके साथ साथ नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों से संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना, प्रभावित व्यक्तियों को आवश्यक सहायता एवं पुनर्वास सेवाओं तक पहुंच दिलाना तथा नशे के खतरे को कम करने के सामूहिक प्रयासों में योगदान देना भी इसका एक उद्देश्य है।
1: तो इस योजना के जो प्रमुख लाभार्थी हैं वो कौन कौन हैं?
2: इस योजना के प्रमुख लाभार्थी नशीली दवाओं के दुरुपयोग से प्रभावित या पीड़ित व्यक्ति हैं। इसमें नशे की लत से प्रभावित व्यक्ति, उनके परिवार के सदस्य तथा ऐसे व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें नशीली दवाओं से संबंधित मामलों में कानूनी सहायता या मार्गदर्शन की आवश्यकता हो।
1: विक्रांत जी, इस योजना के अंतर्गत जो है किस प्रकार की विधिक सहायता जो है वो प्रदान की जाती है?
2: इसमें जो पात्र व्यक्ति होते हैं उनको निःशुल्क विधिक सलाह, कानूनी परामर्श, आवश्यक मामलों में विधिक प्रतिनिधित्व तथा न्यायालय से संबंधित कार्रवाई के संबंध में सहायता प्रदान की जाती है।
1: जो विधिक सेवा संस्थाओं की जो है ना इस योजना में मुख्य भूमिका क्या रहती है?
2: विधिक सेवा संस्थाएं नशे से प्रभावित व्यक्तियों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देते हैं, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाते हैं तथा उन्हें आवश्यक सरकारी चिकित्सीय परामर्श एवं पुनर्वास सेवाओं तक पहुंचाने में सहायता करते हैं।
1: क्या ये योजना जो है केवल न्यायालय में विधिक प्रतिनिधित्व तक ही सीमित है?
2: जी नहीं, योजना का उद्देश्य केवल न्यायालय में प्रतिनिधित्व प्रदान करना नहीं है। इसके अंतर्गत विधिक जागरूकता, परामर्श, अधिकारों की जानकारी, आवश्यक सहायता तक पहुंच, पुनर्वास से संबंधित सहयोग तथा विभिन्न संबंधित संस्थाओं के साथ समन्वय जैसे पहलुओं पर भी महत्व दिया जाता है।
1: हम ये भी जानना चाहेंगे कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग के पीड़ित को कहां से निःशुल्क विधिक सहायता मिल सकती है?
2: जो प्रभावित व्यक्ति अपने जिले में रहते हैं वो अपनी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार वह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला या तालुका विधिक सेवा समिति में भी सहयोग के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
1: योजना में

0: विधिक जागरूकता का क्या महत्व है?
1: जागरूकता हर क्षेत्र में बहुत महत्व रखती है। विधिक जागरूकता व्यक्ति को उसके अधिकारों, कानूनी दायित्वों और उपलब्ध विधिक उपायों की जानकारी देती है। नशीली दवाओं से संबंधित मामलों में सही कानूनी जानकारी व्यक्ति को गलत निर्णयों से बचाने में, उचित सहायता प्राप्त करने में और न्यायिक प्रक्रिया को समझने में मदद करती है।
0: इस योजना का व्यापक सामाजिक उद्देश्य क्या है?
1: योजना का व्यापक उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, उन्हें आवश्यक सहायता एवं पुनर्वास सेवाओं से जोड़ना तथा न्याय तक समान पहुंच निश्चित करवाना है।
0: हम ये भी जानना चाहेंगे जो ये योजना है, इसका कोई जो मुख्य संदेश?
1: इस योजना का जो मुख्य संदेश है वो है कि नशे से प्रभावित व्यक्ति को उसके कानूनी अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। नशे से बचाव, अधिकारों की जानकारी, समय पर सहायता, उपचार एवं पुनर्वास तथा न्याय तक पहुंच इस योजना के प्रमुख संदेश हैं।
0: विक्रांत कौंडल जी, जो नशे की लत है ना, इसे प्रभावित व्यक्ति के लिए विधिक सहायता की अगर हम बात करें तो ये क्यों आवश्यक है?
1: नशे की जो समस्या है उसके कारण जो व्यक्ति होता है वो कई प्रकार की कानूनी और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करता है। विधिक सहायता उसे अपने अधिकारों को समझने में, उचित कानूनी उपाय अपनाने में, न्यायिक प्रक्रिया को समझने में उसकी मदद करती है।
0: जी, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे विक्रांत कौंडल जी कि जो नशे के विरुद्ध जो जागरूकता फैलाने में जो विधिक सेवा संस्थाएं हैं, इनकी क्या भूमिका रहती है?
1: विधिक सेवा प्राधिकरण प्रभावित व्यक्तियों को उनकी जो पात्रता के अनुसार निशुल्क विधिक सलाह देता है, परामर्श और विधिक सहायता उपलब्ध करवाता है। साथ ही वह लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा आवश्यकता होने पर संबंधित संस्थाओं के सहायता प्राप्त करने में भी मार्गदर्शन करता है।
0: क्या आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति हैं निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं वो लोग?
1: जी हाँ, वो भी निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के पात्र होते हैं।
0: नशे के दुरुपयोग की रोकथाम में जो हमारा जो समाज है, या हम कहें कि एक आम व्यक्ति जो है, उनकी भी क्या कोई भूमिका रह सकती है क्या?
1: समाज की एक बहुत अहम भूमिका होती है। अगर समाज एक साथ मिलकर काम करे तो कई जो विकृतियां समाज में हैं उनका खात्मा किया जा सकता है। समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है। समाज को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए, नशे की रोकथाम के प्रयासों में सहयोग करना चाहिए तथा नशे से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव के बजाय सहानुभूति और सहयोग का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
0: नशे की जो समस्या है इससे निपटने में पुनर्वास की जो हम बात करते हैं तो ये क्यों महत्वपूर्ण है?
1: देखिए, केवल नशे का सेवन बंद कराना पर्याप्त नहीं होता है। प्रभावित व्यक्ति को सामान्य एवं सम्मानजनक जीवन में वापस लाने के लिए उपचार, परामर्श, परिवार का सहयोग, कौशल विकास और सामाजिक पुनर्वास आवश्यक होते हैं।
0: विक्रांत कौंडल जी, जब भी कोई व्यक्ति नशा करता है ना, मेरा अपना अनुमान है कि ना केवल उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है नशे का, समाज के ऊपर भी, परिवार के ऊपर भी, शायद बहुत से लोग प्रभावित होते हैं। क्या कहेंगे आपकी जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग का जो है प्रभाव जो है वो किस पर पड़ता है?
1: जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नशीली दवाओं का दुरुपयोग केवल व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि साथ में उसके स्वास्थ्य, मानसिक एवं सामाजिक जीवन, परिवार, शिक्षा, रोजगार और आर्थिक स्थिति पर भी गंभीर प्रभाव डालता है। इसका जो व्यापक प्रभाव होता है वो समुदाय और समाज पर भी देखा जाता है।
0: तो हम तो प्रयास ये कर सकते हैं ना कि इसको रोका जाए। आप क्या कहेंगे कि नशे की रोकथाम के लिए जो है सबसे प्रभावी जो कोई उपाय आप कहना चाहें?
1: नशे की जो रोकथाम है उसमें समय पर जागरूकता, शिक्षा, परामर्श और सहायता अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। विशेष रूप से बच्चों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों तथा स्वास्थ्य जीवन शैली के बारे में समय रहते जागरूक करना प्रभावी रोकथाम का महत्वपूर्ण माध्यम होता है।
0: जिला स्तर पर नशे से संबंधित विधिक सहायता अगर कोई व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है तो ये कहाँ प्राप्त की जा सकती है?
1: मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक जिला में हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थापित हैं। जिला स्तर पर व्यक्ति अपने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है और जो हमारी ये प्राधिकरण है वो पात्र व्यक्ति को निशुल्क विधिक सलाह और आवश्यकता अनुसार अन्य विधिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन का काम करते हैं।
0: नशे के विरुद्ध कानूनी जागरूकता जो है ये किसके लिए आवश्यक है?
1: कानूनी जागरूकता केवल नशे से प्रभावित व्यक्तियों के लिए ही नहीं बल्कि युवाओं, विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, समुदाय के सदस्यों और आम जनता के लिए भी आवश्यक है। इसे लोग नशे के कानूनी एवं सामाजिक परिणामों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं।
0: नशे की लत से पीड़ित व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए?
1: अक्सर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति नशे से प्रभावित होता है समाज उसके प्रति थोड़ा सा उदासीन व्यवहार करता है। ये गलत बात है। नशे की लत से प्रभावित व्यक्ति के साथ सम्मान, संवेदनशीलता, सहानुभूति और सहयोग के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। उसे सामाजिक रूप से अलग थलग करने के बजाय उपचार,

0: परामर्श और पुनर्वास के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
1: कोई भी व्यक्ति जो कि नशे का आदी हो जाता है, उसमें जैसे कि आपने पहले भी कहा कि समाज का भी दायित्व है और बहुत से लोगों का, परिवार का भी दायित्व है, सभी का दायित्व मिलजुल कर बनता है कि हम उसके जो दुष्प्रभाव हैं उन दुष्प्रभावों से उस व्यक्ति को जागरूक करें। लेकिन अगर हम बात करें कि नशा मुक्ति के प्रयासों में जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, तो ये कुछ अन्य संस्थाएं या कोई अन्य किसी प्रकार के जो व्यक्ति हैं, तो किन किन के साथ ये समन्वय स्थापित करता है?
0: जी, विधिक सेवा प्राधिकरण आवश्यकता के अनुसार सरकारी विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, गैर सरकारी संगठन, पुनर्वास एवं नशा मुक्ति केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों तथा अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ समन्वय करता है। इस प्रकार बहुआयामी प्रयासों के माध्यम से प्रभावित व्यक्तियों को आवश्यक सहायता तक पहुँच दिलाई जाती है।
1: विक्रांत कौंडल जी, आज युवाओं की बहुत चर्चा हो रही है। आज का अगर हमारा युवा वर्ग जो है वो जागरूक हो जाए, नशे के प्रति हो या किसी भी क्षेत्र में हम कहें, तो शायद कोई भी समस्या जो है ना, समस्या नहीं रह जाती है, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या है युवाओं की। तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारे देश के युवा हैं, नशे के विरुद्ध इनका भी कुछ योगदान रह सकता है क्या?
0: जी, जैसे ये हम सब जानते हैं कि जो युवा पीढ़ी है वही देश का भविष्य होती है, तो युवा नशा मुक्त समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे स्वयं नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर अपने साथियों को जागरूक कर तथा सकारात्मक सामाजिक गतिविधियों में भाग लेकर नशे के विरुद्ध जन जागरूकता को मजबूत कर सकते हैं।
1: तो नालसा की जो है ना, इस योजना के लिए अगर हम कहें कि एक अंतिम लक्ष्य है, वो क्या है?
0: योजना का व्यापक लक्ष्य नशीली दवाओं के प्रभावित व्यक्तियों को न्याय, विधिक सहायता, जागरूकता और आवश्यक पुनर्वास सहयोग तक पहुंच प्रदान करना है तथा समाज में नशीली दवाओं के खतरे को कम करने में योगदान देना है।
1: तो एक और जहां हमने बात की कि युवा अगर जागरूक है तो भी हम इससे निपट सकते हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे कि नशे के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए जो है कोई और कोई कौन सा माध्यम अच्छा है?
0: इसके लिए किसी एक माध्यम को पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। शिक्षा, विधिक साक्षरता शिविर, स्कूल कॉलेज कार्यक्रम, सामुदायिक बैठकें, जन जागरूकता अभियान, परामर्श कार्यक्रम या सामाजिक भागीदारी मिलकर अधिक प्रभावी परिणाम दे सकते हैं।
1: तो आप क्या कहेंगे कि जो नशे की जो समस्या है या नशे की जो आदत है, क्या केवल एक व्यक्तिगत समस्या है?
0: नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। नशे की समस्या का प्रभाव व्यक्ति से आगे बढ़कर उसके परिवार, मित्रों, समुदाय और समाज तक पहुंचता है। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पारिवारिक संबंध और सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होती है। इसलिए इसे एक व्यापक सामाजिक समस्या के रूप में संबोधित करना आवश्यक है।
1: तो जो नशा मुक्त समाज की हम एक कल्पना करते हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या आवश्यक है इसके लिए?
0: नशा मुक्त समाज के लिए जागरूकता, रोकथाम, शिक्षा, समय पर उपचार, परामर्श, पुनर्वास, परिवार का सहयोग, सामुदायिक भागीदारी और प्रभावी विधिक सहायता सभी आवश्यक हैं।
1: नालसा का एक बहुत बड़ा इसमें प्रयास है समाज को नशा मुक्त करने में। जो नालसा है, इसका नशे के विरुद्ध कोई एक संदेश भी कोई आपका रहेगा?
0: जी, नालसा का मुख्य संदेश है कि नशे से दूर रहें, अपनी कानूनी अधिकारों को जानें और आवश्यकता पड़ने पर विधिक सहायता प्राप्त करें।
1: जो नशीली दवाओं का सेवन कोई भी व्यक्ति करता है, उसके जीवन को वो कैसे प्रभावित कर सकता है?
0: आजकल ये कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं है, सब जानते हैं कि नशे के गलत परिणाम सामने आते हैं। नशीली दवाओं का सेवन व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। उसके अतिरिक्त शिक्षा, रोजगार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध और सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
1: परिवार की भी इसमें कोई भूमिका रह सकती है, क्या कर सकता है परिवार?
0: ऐसी स्थिति में जो परिवार होता है वो सबसे अहम सपोर्टिव सिस्टम का काम करता है। परिवार नशे की रोकथाम में पहली और महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई है। परिवार को बच्चे और युवाओं के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए और उन्हें उचित मार्गदर्शन देना चाहिए। यदि कोई सदस्य नशे से प्रभावित है तो उसे दोष देने के बजाय उपचार और पुनर्वास के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
1: नशे से संबंधित मामलों में विधिक सहायता का उद्देश्य क्या है?
0: विधिक सहायता का उद्देश्य पात्र व्यक्ति को न्याय तक पहुंच प्रदान करना, उसके कानूनी अधिकारों की रक्षा करना और उसे आवश्यक कानूनी सलाह एवं सहायता उपलब्ध कराना है।
1: तो विक्रांत कौंडल जी, क्योंकि वक्त हमारे पास अब कार्यक्रम का लगभग समाप्त हो रहा है, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप कहना चाहेंगे तमाम हमारे श्रोताओं से?
0: जी, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि नशा आज के वक्त में एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन चुका है। ये परिवार का और हर नागरिक का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अगर कहीं भी देखते हैं कि कोई नशे का कारोबार कर रहा है तो उसकी सूचना पुलिस को या संबंधित विभाग को एकदम से दें। मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी नागरिक इस तरह की सूचना पुलिस को या किसी विभाग को देता

0: आपसे चर्चा की। आकाशवाणी स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: श्रोताओं। इसी के साथ कानून की बात कार्यक्रम का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप कानून की बात कार्यक्रम सुन रहे थे। विषय था नालसा नशीली दवाओं के दुरुपयोग के पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशीली दवाओं के खतरे के उन्मूलन योजना 2015। विशेषज्ञ थे विक्रांत कौंडल, अतिरिक्त सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला, और इनसे भेंट कर रहे थे डॉक्टर हुकुम शर्मा। हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी प्रसारित किया जा रहा था।
3: स्टूडियो की घड़ी हमें चुपके चुपके से इशारा कर रही है, कहीं किसी के दिलों की धड़कन बढ़ा रही है, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं वो खास प्रोग्राम जहाँ आप सभी की भागीदारी रहती है सबसे खास। जी हाँ, वही प्रोग्राम जहाँ आपके प्यारे प्यारे से मैसेजेस हम तक पहुँचते हैं, आपकी प्यारी प्यारी सी ईमेल्स के जरिए, और हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद के कुछ गाने एकदम लाइव। तो चलिए भाई, जल्दी से शामिल हो जाइए इस खूबसूरत सफर में जो चलने वाला है अब से लेकर ठीक 10 बजे तक। प्रोग्राम है गीतांजलि। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं अपना ईमेल आईडी। मैसेज करने के लिए आपको हमें मेल करना है musicmaildishala@gmail.com पर। आप चाहे तो हमारी फेसबुक पेज के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से फोन उठाइए और मेल कीजिए। और हाँ, अपना नाम और लोकेशन लिखना ना भूलें, क्योंकि हम तभी जान पाते हैं कि हमारे प्यारे प्यारे से लिसनर्स हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। तो चलिए भाई, जब तक आपकी मेल्स हम तक पहुंचती है, हम आपको सुनवाएंगे एक प्यारा सा गीत, और आप फटाफट से मेल कीजिए और सुनिए अपनी पसंद के गीत।

जी हाँ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं ईमेल बेस्ड प्रोग्राम गीतांजलि, और आपके प्यारी प्यारी सी मेल्स को पढ़ने का सिलसिला हम जो है ना वो शुरू करने वाले हैं। चलिए आप सभी को बता देते हैं कि प्रोग्राम की पहली मेल जो है ना वो हम तक पहुंची है। मेल किया है छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने, और ये सुनना चाहते हैं हमारी पसंद से कोई सा भी गीत। नमस्कार जी, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं लोहगढ़ ठाकुरा वाला से। लिखने वाले हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुलराम सिंह सा, और इनके साथ ही है गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। ये भी सुनना चाहते हैं हमारी पसंद का कोई सा भी गीत।

प्रोग्राम में अगली मेल हम शामिल कर रही हैं जो कि हमें मिली है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से। मेल करने वाले हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। तो चलिए इन तमाम लिसनर्स की रिक्वेस्ट पर इनके लिए प्ले करते हैं ये बेहद ही प्यारा सा गीत। आप यूं ही जुड़े रहिए दिल से हमारे साथ और सुनते रहिए गीतांजलि प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आप जल्दी से मेल कर सकते हैं म्यूजिक मेल dshala@gmail.com पर।

जी हाँ लिसनर्स, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं ईमेल बेस्ड प्रोग्राम गीतांजलि, और आप भी जल्दी से मेल कीजिए हमारे इस प्रोग्राम में और सुनिए अपनी पसंद के गीत। फिलहाल प्रोग्राम में नेक्स्ट मेल जो हम शामिल कर रही हैं वो हमें मिली है नरगोंडा छत्तीसगढ़ से। मेल करने वाले हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। ये सुनना चाहते हैं हमारी पसंद से कोई सा भी गीत। और प्रोग्राम की नेक्स्ट मेल जो हम शामिल कर रहे हैं वो हमें मिली है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। मेल करने वाले हैं बलकरण वर्मा, अंजलि, नीरा वर्मा, ज्योति और प्रहलाद वर्मा। इसके साथ ही अगली मेल हमें मिली है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। मेल करने वाले हैं टीडी मल्होत्रा, रितिका मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जय सिंह ठाकुर, शुभचंद्र बजाज कालका से, और इनके साथ ही है बिट्टू बजाज। जरा हट के जरा बच के फिल्म के लिए मेल किया है भाटानगर छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और इनके साथ ही है नौखेलाल वर्मा। तो चलिए आप सभी सुनने वालों के लिए हम जल्दी से प्ले कर देते हैं जरा हट के जरा बच के फिल्म से ये गीत।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: Step into the world of Nexa.
3: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: Need the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: And now it's yours at an effective price of just 6.75 lakh rupees.
3: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 31st August.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa. श्रोताओ, आकाशवाणी धर्मशाला केंद्र से गीतांजलि प्रोग्राम यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल समय हो रहा है प्रादेशिक समाचारों का। 9:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा और उसके तुरंत बाद एक बार फिर से आप आनंद ले पाएंगे गीतांजलि प्रोग्राम का।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
1: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में जनगणना का दूसरा चरण सितंबर माह में होगा आयोजित। आज से 31 अगस्त तक नागरिकों के लिए ऑनलाइन स्वगणना की सुविधा आरंभ। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार का राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता व प्रबंधन संस्थान काउंसिल के सदस्य के रूप में चयन। राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में किसानों बागवानों की सुविधा के लिए घर द्वार पर मार्केट यार्ड कर रही स्थापित। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस की संगठनात्मक तैयारियां शुरू। आज भाजपा के 20 प्रकोष्ठों की शिमला में अहम बैठक। और विश्वविख्यात मणिमहेश यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत पहली बार बीएसएनएल स्थापित कर रहा अस्थायी टावर। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में जनगणना 2027 का दूसरा चरण 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 1 से 5 अक्टूबर तक पुनरीक्षण चरण होगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज से 31 अगस्त तक नागरिकों को ऑनलाइन स्वगणना की सुविधा मिलेगी, जिसमें 40 प्रश्नों के तहत सूचना एकत्रित की जाएगी। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार को देश के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता व प्रबंधन संस्थान काउंसिल का सदस्य निर्वाचित किया गया है। इस पद के लिए आयोजित चुनावी प्रक्रिया के तहत 13 अगस्त को डॉक्टर सिकंदर कुमार को काउंसिल का सदस्य चुना गया। ये काउंसिल देश में खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उत्पाद मूल्य संवर्धन, सप्लाई चेन और खाद्य सुरक्षा मानकों के निर्धारण में सर्वोच्च संस्था है। सिकंदर कुमार के निर्वाचन से प्रदेश में फल व सब्जियों के लिए उचित प्रसंस्करण और कोल्ड चेन के नेटवर्क को बढ़ावा मिलने की उम्मीद की जा रही है। बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर जिला के पूह उपमंडल में कल जंगी ग्राम पंचायत में सब्जी मंडी का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने इस क्षेत्र में कोल्ड स्टोर व एचपीएमसी के पैकिंग व ग्रेडिंग हाउस को स्थापित करने की घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में जगह जगह मार्केट यार्ड स्थापित कर रही है, जिससे किसानों व बागवानों को स्थानीय स्तर पर ही उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख दल संगठनात्मक स्तर पर रणनीतियां बनाने और तैयारियों में जुट गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय दीपकमल शिमला में प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में विभिन्न प्रकोष्ठों की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पार्टी के 20 प्रमुख प्रकोष्ठों की आगामी चुनावों में भूमिका और रणनीति पर मंथन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार 20 अगस्त को शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस पदाधिकारियों, जिला प्रभारियों और जिला कांग्रेस अध्यक्षों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस बैठक को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रदेश कांग्रेस महासचिव विनोद जिंटा ने बताया कि बैठक के लिए प्रत्येक जिला अध्यक्षों के अब तक के कामकाज का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। सिरमौर जिला में पुलिस बल को सशक्त बनाने और स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए लंबे समय के बाद एक रिजर्व पुलिस बल मिला है। धौलाकुआं स्थित आईआरबीएन की 6 बटालियन से 24 जवानों की रिजर्व टुकड़ी जिला पुलिस को सौंपी गई है। जिला में अब तक रिजर्व बल नहीं होने के कारण कैदियों की गार्ड के लिए कई बार पुलिस कार्यालयों और थानों से कर्मचारियों को ड्यूटी पर भेजना पड़ता था। स्टाफ की कमी से जूझ रहे थानों और चौकियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता था। नई रिजर्व पुलिस टुकड़ी मिलने के बाद नियमित पुलिसिंग प्रभावित किए बिना कैदियों की सुरक्षा संबंधी ड्यूटियों का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल द AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक चलने वाली चंबा जिला की

0: विश्व विख्यात मणिमहेश यात्रा इस वर्ष 4 सितंबर को 19 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। प्रशासन ने यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर दी है, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल के अनुसार चंबा भरमौर NH सहित मणिमहेश यात्रा के पैदल ट्रैक को भी दुरुस्त किया जा रहा है। यात्रा के लिए हेली टैक्सी सेवा की बुकिंग 25 अगस्त से शुरू हो जाएगी। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए इस दुर्गम मार्ग पर पहली बार BSNL द्वारा मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने के लिए अस्थाई टावर स्थापित किए जा रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
1: विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार दुर्गम यात्रा मार्ग पर बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी मिलेगी। BSNL ने धनचो और हरसर में 4G नेटवर्क उपलब्ध करवाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस तरह की सुविधा पहली बार BSNL द्वारा मणिमहेश यात्रा में उपलब्ध करवाई जा रही है। BSNL कांगड़ा चंबा के वरिष्ठ महाप्रबंधक विपिन कुमार मौर्य के मुताबिक धनचो में 4G टावर का काम पूरा हो चुका है, इसे ऑन ईयर कर दिया गया है। वहीं हरसर में भी टावर स्थापित करने का काम जारी है। इससे श्रद्धालु अपने परिजनों से संपर्क में रह सकेंगे और आपदा या आपात स्थिति में राहत बचाव कार्यों के लिए संचार व्यवस्था भी मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू हुई नई अकादमिक व्यवस्था को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला ने ERP आधारित छात्र पोर्टल तैयार किया है। इलेक्टिव और चॉइस आधारित पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के विषय चयन का रिकॉर्ड इसी ऑनलाइन व्यवस्था से तैयार किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल ने बताया कि पोर्टल में विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों व पाठ्यक्रमों के चयन का विकल्प दिया गया है। इसका रिकॉर्ड परीक्षा व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में मॉनसून के एक बार फिर सक्रिय होने की संभावना बनी है। मौसम विभाग ने आज से अगले 48 घंटों के लिए कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार आज 8 जिलों ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के कई स्थानों में भारी बारिश की संभावना है, जबकि 22 अगस्त तक निचले और मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम जारी रहेगा। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा की गई घोषणा को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, पेंशनरों को 15 से 35%, चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को इसी माह 20,000 एरियर। पंजाब केसरी के शब्द है, जल शक्ति विभाग में भरे जाएंगे 4,000 पद, 100 CBSE स्कूल खुलेंगे। दिव्य हिमाचल का शीर्षक है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी पेंशनरों का बकाया भुगतान भी इसी माह 281 करोड़ खर्च करेगी सरकार। दैनिक जागरण ने खबर दी है, हिमाचल में सप्ताहांत पर बढ़ा ट्रैफिक का दबाव, घंटों तक जाम में फंसे लोग। मौसम पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, प्रदेश में अब तक 18% कम बारिश दर्ज, आज 4 जिलों में ऑरेंज और 6 जिलों में येलो अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जनगणना का दूसरा चरण सितंबर माह में होगा आयोजित। आज से 31 अगस्त तक नागरिकों के लिए ऑनलाइन स्वगणना की सुविधा आरंभ। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार का राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता व प्रबंधन संस्थान काउंसिल के सदस्य के रूप में चयन। राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में किसानों बागवानों की सुविधा के लिए घर द्वार पर मार्केट यार्ड कर रही स्थापित। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस की संगठनात्मक तैयारियां शुरू, आज भाजपा के 20 प्रकोष्ठों की शिमला में अहम बैठक। और विश्व विख्यात मणिमहेश यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत पहली बार BSNL स्थापित कर रहा अस्थायी टावर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

0: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल,
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे,
0: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं,
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में

जी हाँ श्रोताओ, प्रादेशिक समाचार के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे गीतांजलि प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम है आपकी ईमेल पर आधारित, तो आप भी जल्दी से प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। जल्दी से हमें मेल कीजिए musicmaildshala@gmail.com पर और सुनिए अपनी पसंद के गीत। प्रोग्राम में अगली मेल हम शामिल कर रहे हैं जो कि हमें मिली है राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। मेल करने वाले हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हमें मैसेज किया है मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा, पीहू स्वर्णकार और ये सभी लिख रहे हैं। कृपया अपनी पसंद से कोई सा भी गीत हमें सुना दीजिए। और इसके साथ ही नेक्स्ट मेल हम तक पहुँची है, ये मेल किया है बक्सर बिहार से शफीकुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुमित रमेश साहू। इसके साथ ही डुमराव बिहार से हमें मेल किया है डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा। इनके साथ ही है दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से मेल किया है श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य। समीरपुर बक्सर से हमें मेल किया है राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल अंसारी ने। ये सभी सुनना चाहते हैं गेम फिल्म से कोई सा भी गीत। प्रोग्राम में अगली मेल हमें मिली है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से। मेल करने वाले हैं बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीषा पवार। खलीफों की बावड़ी से मेल किया है खुदा बख्श खलीफा। रादेवरा से दिनेश चौहान और डंगरी से हमें मेल किया है बाबूराम जायसवाल ने। ये सभी सुनना चाहते हैं हमारी ही पसंद का कोई सा भी गीत। और अगली मेल हम तक पहुंची है फरासी हिसार से। मेल करने वाले हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। तो चलिए इन सभी सुनने वालों की फरमाइश पर जल्दी से इनको सुनवा देते हैं गेम फिल्म का ये गीत। आप यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए गीतांजलि प्रोग्राम।

जी हाँ श्रोताओं, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं ईमेल बेस्ड प्रोग्राम गीतांजलि, और इस प्रोग्राम में आपकी मेल्स का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, और यहाँ से हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने लिसनर्स को उनकी पसंद के कुछ प्यारे प्यारे से गीत सुनवाएं।

सूरमा फिल्म से गीत सुनने के लिए हमें मेल किया है योगराज मस्के, और इनके साथ ही है इंदुमती मस्के, मल्हार मस्के, कविता मस्के, मोहन मस्के, विशाल मस्के, कुशल, गोपाल और गोविंद मस्के। इन सभी के लिए हम जल्दी से प्ले करने वाले हैं इनकी पसंद का गीत। इसके साथ ही अगली मेल हम तक पहुंची है वीरेंद्र भयान की, सुरेंद्र भयान, इनके साथ ही है शमशेर भयान और मनोज, ये सभी हमें मेल कर रहे हैं जेवरा हिसार से। हमारी पसंद से कोई सा भी गीत सुनने के लिए हमें मेल किया है, और मेल करने वाले हैं महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई और प्रीतेश संघई। तो चलिए इन सभी के लिए सुनवाते हैं सूरमा फिल्म से ये गीत। आप दिल से यूं ही बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए गीतांजलि प्रोग्राम।

0: Step into the world of Nexa.
1: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
0: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
0: And now it's yours at an effective price of just 6.75 lakh rupees.
1: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 31st August.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
0: Nexa.
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
3: श्रोता, ईमेल बेस्ड प्रोग्राम गीतांजलि इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। आप भी शामिल हो जाइए हमारे इस प्रोग्राम में अपनी मेल के जरिए और सुनिए अपनी पसंद के गीत। मेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी रहता है musicmaildshala@gmail.com। तो चलिए प्रोग्राम में अगली मेल जो हमें मिली है, वो हमें मेल कर रहे हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से। मेल करने वाले हैं रज़ाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जशीन खान। ये सभी सुनना चाहते हैं केसरी फिल्म से कोई सभी गीत। हमारी पसंद से कोई सभी गीत सुनने के लिए हमें मेल किया है दादा बाबू रोड झारखंड से। मेल करने वाले हैं मोहम्मद यासीन अनजान, इनके साथ ही है साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहद और मिफ्रा नवाज़ बेबी चाहत। तो इसके अलावा एक और मेल इसी फिल्म के लिए हमें मिला है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। मेल करने वाले हैं सुल्तान सिंह तरार, कपिल देव तरार और हिम

जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम का समय बिल्कुल समाप्ति की ओर है और आप जल्दी जल्दी से मेल करके इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत। चलिए बता देते हैं, गदर टू फिल्म के लिए हमें मेल कर रहे हैं नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से मेल करने वाले हैं अब्दुल गफ्फार डाबर खुशनीप, और इनके साथ ही है अब्दुल हक डाबर जियाऊ हक डाबर और भाटापारा छत्तीसगढ़ से मेल कर रहे हैं सोहन जोशी। और इसके अलावा अगली मेल जो हम तक पहुंची है वो हमें कर रहे हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी बबीता मिगलानी सुभाष योगी और बबलू और डब्लू। इसी फिल्म से गीत सुनने के लिए अगली मेल हम तक पहुंची है जिला नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से मेल करने वाले हैं जयशंकर जायसवाल गणेश लाल जायसवाल शुभ प्रसाद जायसवाल अर्णव जायसवाल दुर्गेश्वरी जायसवाल राखी जायसवाल तृप्ति जायसवाल। तो चलिए आप सभी सुनने वालों के लिए हम प्ले कर रहे हैं गदर टू फिल्म से ये गीत। आप सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर। प्रोग्राम चल रहा है गीतांजलि।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं इस वक्त गीतांजलि प्रोग्राम, जो कि है ईमेल बेस्ड। और प्रोग्राम में आखिरी गीत के लिए हम मेल शामिल कर रहे हैं जो कि हमें मिली है। जनकपुरी सहारनपुर से मेल किया है जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो ने। ये सभी सुनना चाहते हैं टाइगर जिंदा है फिल्म से कोई सा भी गीत। प्रोग्राम में अगली मेल हम तक पहुंची है पुराना तालाब डुमराव से। मेल करने वाले हैं वालीउल्ला अंसारी, अस्मा नाज अंसारी, शबनम बानो। जेल रोड बक्सर से मेल किया है राज एसडी अंसारी, फातिमा नाज और इनके साथ ही है इनके परिवार के सदस्य, जो कि हमारी पसंद से कोई सा भी गीत सुनना चाहते हैं। और कार्यक्रम में अगली मेल हम शामिल कर रहे हैं, ये हमें लिख रहे हैं सुप्रीम। नमस्कार, हमारी ओर से भी आपको नमस्कार। और मेल किया है संबलपुर कांकरे से मेल करने वाले हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। तो इन सभी की पसंद पर हम प्ले करने जा रहे हैं टाइगर जिंदा है फिल्म का ये गीत।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं कार्यक्रम लेकर गीतों का कारवां। आज मैं हूं आपके साथ रीना। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के इस खूबसूरत गीत के साथ, जिसे गाया है कुमार सानू और कविता कृष्णामूर्ति ने। जावेद अख्तर की रचना को संगीतबद्ध किया है RD बर्मन ने।

आशिकी फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में। गायक कलाकार हैं कुमार सानू, रचना मदन पाल की है।

0: अनजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza. Now available with the exciting Turbo Booster Jet, refined K15C engine and underbody SCNG. With 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats. New 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of 7.39 lakh rupees. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
2: फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। बलमा फिल्म का खूबसूरत सा गीत आपके रेडियो सेट पर है। आवाजें हैं नितिन मुकेश और आशा भोंसले की। संगीत नदीम श्रवण का है और गीतकार हैं समीर।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: इंदिवर का लिखा गीत अब आपको सुनवा रहे हैं जतिन ललित के संगीत निर्देशन में। खूबसूरत से गीत के लिए आवाजें दी हैं अभिजीत भट्टाचार्य ने। संगीत जतिन ललित का है।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: All I need is you।

0: शरबती होठों वाली बेदाग जवानी वाली जानम रुक जाना।
1: विपिन सचदेवा की आवाज में अभी आप सुन रहे थे सनम बेवफा फिल्म से ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों का कारवां। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति शिव कुमार की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में जनगणना 2027 का दूसरा चरण 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 1 से 5 अक्टूबर तक पुनरीक्षण चरण होगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज से 31 अगस्त तक नागरिकों को ऑनलाइन स्वगणना की सुविधा मिलेगी, जिसमें 40 प्रश्नों के

0: राज्य में सड़क संपर्क बेहतर होने से पर्यटन, बागवानी, कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, इसलिए सड़कों के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये बात लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कल शिमला जिला के ठियोग उत्सव के समापन अवसर पर कही। उन्होंने बताया कि शिमला से रामपुर तक मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए करीब 1,400 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत होना क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। ये मार्ग रामपुर सहित किन्नौर और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के आगामी विस्तार व सुधार कार्यों में अधिकतम सुरंगों के निर्माण की मांग की जा रही है, ताकि भूस्खलन व प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख दल संगठनात्मक स्तर पर रणनीतियां बनाने और तैयारियों में जुट गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय दीपकमल शिमला में प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में विभिन्न प्रकोष्ठों की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पार्टी के 20 प्रमुख प्रकोष्ठों की आगामी चुनावों में भूमिका और रणनीति पर मंथन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार 20 अगस्त को शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस पदाधिकारियों, जिला प्रभारियों और जिला कांग्रेस अध्यक्षों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस बैठक को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रदेश कांग्रेस महासचिव विनोद झंडा ने बताया कि बैठक के लिए प्रत्येक जिला अध्यक्षों के अब तक के कामकाज का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। कृष्ण जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक चलने वाली चंबा जिला की विश्वविख्यात मणि महेश यात्रा इस वर्ष 4 सितंबर से 19 सितंबर तक आयोजित होगी। प्रशासन ने यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर दी है, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल के अनुसार चंबा, भरमौर, NH सहित मणि महेश यात्रा के पैदल ट्रैक को भी दुरुस्त किया जा रहा है। यात्रा के लिए हेली टैक्सी सेवा की बुकिंग 25 अगस्त से शुरू हो जाएगी। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए इस दुर्गम मार्ग पर पहली बार BSNL द्वारा मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने के लिए अस्थायी टावर स्थापित किए जा रहे हैं। बीते वर्षों में यात्रा के दौरान हुए नुकसान को देखते हुए इस वर्ष ये तैयारी की गई है। दुर्गम क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी स्थापित होने से आपात स्थिति में त्वरित सहायता और जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सिरमौर जिला में पुलिस बल को सशक्त बनाने और स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए लंबे समय के बाद एक रिजर्व पुलिस दल मिला है। धौलाकुआं स्थित IRBN की 6 बटालियन से 24 जवानों की रिजर्व टुकड़ी जिला पुलिस को सौंपी गई है। जिला में अब तक रिजर्व बल नहीं होने के कारण कैदियों की गार्द के लिए कई बार पुलिस कार्यालयों और थानों से कर्मचारियों की ड्यूटी पर भेजना पड़ता था। नई रिजर्व टुकड़ी मिलने के बाद रिजर्व जवानों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार विभिन्न सुरक्षा और गार्ड संबंधी ड्यूटियों में किया जाएगा। राज्य में मानसून ने एक बार फिर सक्रिय होने की संभावना बनी है। मौसम विभाग ने आज से अगले 48 घंटों के लिए कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार आज 8 जिलों ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के लिए कई स्थानों में भारी बारिश की संभावना है, जबकि 22 अगस्त तक निचले और मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में मानसून की वर्षा का क्रम जारी रहेगा। इस बीच राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार राज्य में बारिश व भूस्खलन से अभी भी 110 सड़कें अवरुद्ध है, जबकि 217 पेयजल परियोजनाएं और 91 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
1: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। जी हाँ, सुबह के 11:05 हो चुके हैं और यहां पर लेकर आ गए हैं हम पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाब दी। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं गिप्पी गरेवाल और सुनिधि चौहान की आवाजों में गाए इस गीत के साथ। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर और आनंद लेते रहिए पंजाबी गीतों का। प्रोग्राम है महक पंजाब दी।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: महक पंजाब दी प्रोग्राम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

श्रोता पंजाबी गीतों को इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। अभी आपने सुना रूपेंद्र संधु की आवाज में ये गीत, और प्रोग्राम का नेक्स्ट सॉन्ग हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं अमरिंदर गिल की आवाज में।

श्रोता, इसी के साथ पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाब दी अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:30 होने को है। अब आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार, धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। तो आइए करते हैं हमेशा की तरह शुरुआत आज के सुविचार से, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
3: वाह, संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
2: सबके लिए शिक्षा की प्रेरणा जगा देता है, ऐसा प्यारा है कार्यक्रम उमंग।
3: तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत कविता के लिए जो आपने अपने प्यारे कार्यक्रम उमंग को समर्पित किया। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सहसपुर लोरमी से

0: छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम ला सुनाइन दो कंपियर साथी हमरा बहुत सुंदर प्रस्तुति देईस, अहो ज्ञान वर्धक बात बताई ना, एकर बार बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: हमें आशा है कि हमने इस भाषा को ठीक से पढ़ा है।
1: जी, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो हमारा पूछा गया पहला प्रश्न था, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
1: इसका उत्तर है, पंचतंत्र नीति साहित्य का कथा ग्रंथ है। इसके रचयिता 2500 से 3000 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध आचार्य विष्णु शर्मा माने जाते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था?
1: इसका उत्तर है साथियों, बिरसा मुंडा द्वारा प्रारंभ किए गए विद्रोह को उल गुलान के नाम से जाना जाता है।
0: हमारा अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए?
1: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल 30 डिजाइन प्रस्तुत किए थे।
0: और अब अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न था, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
1: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
1: राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में घोषित किया गया था।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
0: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर सुन सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नहीं होना बीमार।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बड़े हास्य प्रहसन के साथ रोचक ढंग से बताया गया है कि एक बच्चा जब बीमारी का बहाना करते हुए स्कूल नहीं जाता तो उसे अपने घर पर कैसी कैसी अजीब और मजेदार परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है।
2: बेटा सुमेश, चलो झटपट तैयार हो जाओ, चाचा जी को देखने जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ।
3: जी दादाजी।
4: साथियों, हुआ ये कि सोमेश के चाचा सुधाकर अचानक बीमार हो गए, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
5: सोमेश दादा दादी के साथ अस्पताल पहुंचा। ये उसका अस्पताल जाने का पहला अनुभव था। उसने देखा,
3: वाह क्या सफाई है, सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चकाचक, कोई शोर नहीं, अद्भुत शांति।
4: एक पलंग पर सुधाकर चाचा लेटे हुए थे, उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गए।
6: कैसे हो बेटा, अब कैसी तबीयत है?
7: जी माँ जी, अब बहुत बेहतर हूँ।
6: अरे ये लो, डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब, सुधाकर के लिए थोड़ा सा साबुदाने का हलवा लाई थी, खिला दूं? बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। हाँ
8: जी जी, जरूर खिलाइए, शौक से खिलाइए, लेकिन हाँ, ना बाहर का खाना और ना तला भुना हुआ खाना।
3: वाह क्या ठाट है बीमारों के भी,

0: आराम से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने का हलवा खाते रहो, कोई काम भी नहीं करना पड़ता। काश सुधाकर चाचा की जगह मैं होता। ओह, मैं कब बीमार पड़ूंगा।
1: कुछ दिन बीत गए। एक दिन सोमेश को स्कूल जाने का मन नहीं हुआ। उसने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। उसने सोचा मम्मी पापा भी किसी काम से दूसरे शहर गए हैं, बीमार पड़ने के लिए आज का दिन सबसे बढ़िया रहेगा, सो चलो बीमार पड़ जाते हैं।
2: सुमेश, सुमेश बेटा उठो, स्कूल का समय हो गया है।
0: दादी, लगता है मुझे बुखार है।
2: क्या कहा, बुखार है? अरे तेरे मम्मी पापा को भी कल ही जाना था, लेकिन तुम तो कल तक बिल्कुल ठीक ठाक थे। जरा माथा तो छूने दो। अरे तुम्हारा माथा तो बिल्कुल ठंडा है।
0: दादी, बुखार बस अभी अभी आया होगा, इसलिए माथा गर्म नहीं हुआ होगा।
2: अरे कोई बात नहीं, मैं जरा थर्मामीटर लेकर आती हूँ।
0: अरे दादी, इतनी जल्दी पता थोड़ी चलेगा।
2: लो ये रहा थर्मामीटर, चलो अब इसे अपने मुंह के अंदर रखो। हाँ
0: दादी, मुंह में रखने से पता थोड़ी चलेगा, अंदर जल रहा है।
2: अरे बेटा, लेकिन स्कूल का क्या होगा?
0: मैंने कहा ना, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, स्कूल नहीं जाना, अब तो पेट में भी दर्द हो रहा है।
2: अरे ये तो खांस भी रहा है। अब तो स्कूल बस भी निकल गई, चलो तुम आराम ही कर लो।
0: जी दादी।
3: सर्दियों के दिन थे, सोमेश को और क्या चाहिए था, रजाई में दुबक गया। थोड़ी देर में फिर से गहरी नींद आ गई। खटर पटर की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली।
4: सोमेश बेटा, बेटा सोमेश, अब कैसी तबीयत है?
0: जी दादाजी, अच्छा नहीं लग रहा है।
4: अरे अरे अरे अरे, फिक्र न करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तबीयत। हो तुम्हें तो खांसी भी है। अजी सुनती हो?
2: जी।
4: सुमेश को खांसी भी आ रही है, जरा वो वैद्य जी वाला काढ़ा भी लेती आना, गाढ़ा वाला काढ़ा।
2: जी जी, अभी लाई। लो बेटा, काढ़े के साथ साथ पुड़िया वाली दवा भी ले लो, धीरे धीरे आराम आ जाएगा। चलो ये लो दवा, लो चलो चलो गटक जाओ, शाबाश।
0: ओ, ये तो बहुत कड़वी है ये।
2: अच्छा इसे खाने में क्या देना है?
4: देखो आज शाम तक उपवास ही करे तो अच्छा, सारे विकार निकल जाएंगे। बेटा अब तुम थोड़ा आराम कर लो, लेट जाओ, शाबाश।
0: जी दादाजी।
3: दोनों चले गए। सोमेश को फिर से नींद आ गई। तेज भूख भला निंदिया रानी को कैसे टिकने देती। थोड़ी देर बाद आंख खुल गई। लेटे रहना मजबूरी थी, यूं ही पड़ा रहा। पड़े पड़े अब पीठ भी दुखने लगी थी, लेकिन कोई उपाय न था। लगभग एक घंटे के बाद फिर से दादाजी आए।
4: कैसी तबीयत है बेटा?
0: जी जी, अब बिल्कुल ठीक हूँ।
4: बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बेटा तुम्हें दवाई पूरी लेनी पड़ेगी, दवा बीच में नहीं छोड़ते, रात होने तक दो बार लेनी है। लो लो दवा पी लो, चलो उठो उठो, शाबाश। पकड़ता हूँ तो उठो। चलो चलो, शाबाश बेटा, अब तुम आराम कर लो।

0: बड़ी मुसीबत थी।
1: ये नाटक अब भारी पड़ता जा रहा था। भूख के कारण नींद भी नहीं आ रही थी और आंख जरा भी लगती तो खाने की चीजें ही दिखाई पड़ती।
2: बर्तनों की आवाज आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। आहा, फिर उसमें उन्होंने नींबू भी तो निचोड़ा होगा। हरी मिर्च भी तली गई है, उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जरा देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो साबुदाने का हलवा ही तो मांगता, कोई ताजमहल थोड़ी ही मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो सोमेश बाबू, सारे विकार निकल जाएंगे। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई, इससे अच्छा तो स्कूल ही चला जाता, सजा ही तो मिलती, पर ऐसी सजा, उफ।
3: पीछे रेडियो पर गाना चल रहा था, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अब तो सोमेश बाबू हाय हाय करने लगे, जब रहा नहीं गया तो रजाई फेंक कर खड़े हो गए और दरवाजे के पास जाकर बाहर झांका। खाना नहीं मिला तो खुशबू ही सूंघने लगे। कि तभी,
4: अरे सुमेश बेटा, जग गए? कुछ आराम आया बेटा? है? बोलो, ठीक है ना? अरे, अब तो तुम्हें खांसी भी बिल्कुल नहीं है।
2: जी दादाजी।
5: चलो चलो, बिस्तर पर लेट जाओ वरना ठंड लग जाएगी। हाँ, मैं बस अभी आई। तुम्हें एक पुड़िया और देनी है। हाँ, और शाम तक
4: बिल्कुल ठीक हो जाओगे बेटा।
2: जी।
1: सोमेश जलन, गुस्से और कुड़न में पांव पटकता वापस बिस्तर पर आ गया। उसे पूरे दिन भूखे पेट ही रहना पड़ा था।
3: सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए उसने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया।
6: साथियों, इस कार्यक्रम में आपने एक वाक्य सुना, सारे विकार निकल जाएंगे। विकार का अर्थ है कोई शारीरिक या मानसिक समस्या या दोष। इस अवस्था में शरीर का कोई अंग या तंत्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है। अभी आपने सुना ये मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होना बीमार। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सिद्धो और कान्हू।
7: ऐसे नहीं मानेगा।
8: मत करो साहब।
7: चल सिपाही।
9: यस सर।
8: साहब,
7: इसको हंटर मारो।
8: साहब।
9: जी सर।
8: साहब,
6: अबुआ राज, अबुआ दिसुम। ये था नारा संथाल जनजाति के हुल आंदोलन यानी स्वतंत्रता संग्राम का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नायक सिद्धो और कान्हू।
10: ५८५७ के आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है। लेकिन इससे पहले भी देश भर में स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर विदेशी शासन के विरुद्ध अनेक छोटे बड़े आंदोलन हुए हैं। यदि कहें कि इन आंदोलन

0: आंदोलनों ने राष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
1: आज हम बात करेंगे आजादी की लड़ाई को बल देने वाले एक ऐसे आंदोलन की जिसका नेतृत्व सिदो और कान्हू नामक दो संथाल आदिवासी युवकों ने किया। ये आंदोलन होल आंदोलन या संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
0: जनसंख्या की दृष्टि से संथाल आज भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। सिदो मुर्मू और कान्हू मुर्मू का जन्म भोगनाडीह नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था, जो कि वर्तमान में झारखंड के साहेबगंज जिले में है। सिदो मुर्मू का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था और कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था।
1: इनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था।
0: जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। इस नीति के तहत वो बहुत से भारतीय जमींदारों, सामंतों, महाजनों और साहूकारों के सहयोग से भोले भाले आदिवासियों का शोषण करते थे। इस क्षेत्र में अंग्रेजों का आधिपत्य सन 1756 से ही हो चुका था। उन दिनों आदिवासियों की दशा बहुत दयनीय थी।
2: Amen. तुम्हारा नाम क्या है?
3: जी, मेरा नाम कोड़ा है।
2: ओके, तो तुम कोड़ा हो?
3: जी।
2: तुम यहाँ फसल कैसे काट रहे हो?
3: जी, ये मेरी जमीन है।
2: तुम्हारा जमीन थी, अब ये जमीन तुम्हारी नहीं है। तुमने माल गुजारी नहीं दिया है।
3: जी, मुझे थोड़ा और समय दीजिए। इस बार की उपज बेचकर पूरी माल गुजारी चुका दूंगा।
2: पिछले साल भी तुमने यही बोला था। सरकारी आदेश आया है कि तुम्हारी फसल जब्त कर ली जाए।
3: नहीं, नहीं, नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम क्या खाएंगे? हम बर्बाद हो जाएंगे साहब।
2: ये तो तुमको पहले सोचना चाहिए था। सिपाहियों,
4: जी सर,
2: आगे बढ़ो और कटी हुई फसल को बैलगाड़ी में डालो।
4: जी सर।
2: और खेत में रात का पैरा बिठा दो।
4: जी सर।
2: बाकी फसल कल काट लेंगे, कचहरी में जमा कराना है।
4: जी सर।
3: नहीं नहीं साहब, साहब ऐसा मत करो। साहब ऐसा मत करो।
2: चलो हटो।
3: साहब
2: आओ।
3: साहब
2: आओ। ऐसे नहीं मानेगा।
3: साहब मत करो। साहब
2: चल। सिपाही।
4: यस सर।
3: साहब
2: इसको हंटर मारो।
3: साहब
4: जी सर।
0: इस तरह की अनेक घटनाएं उन दिनों में आम थी। लगान नहीं देने पर बड़ी क्रूरता से पैसा वसूलना, कर्जा नहीं चुकाने पर किशोरों और बच्चों तक को बेगारी में लगाना, जमीन हड़प लेना, कर्जा देकर भारी सूद वसूल करना आदि ऐसी घटनाएं थीं जिनके कारण धीरे धीरे आदिवासी समुदाय में असंतोष पनपने लगा।
1: आदिवासी लोग अपने खेतों के उत्पाद जैसे अनाज, दूध, शहद, जंगली कंदमूल और साग सब्जियां इत्यादि बाजार में बेचने आते थे। महाजन और जमींदारों के कारिंदे कर्मचारी बाजारों में भी उनका भारी शोषण करते थे।
0: होता ये था कि वो बड़े बटखरे से इनके उत्पादन को खरीदते थे और छोटे हल्के बटखरे से उन्हें भारी कीमत पर उसी सामान को बेचते थे। असंतोष बढ़ता जा रहा था। कई बार आदिवासियों ने इन बातों का थोड़ा बहुत विरोध भी किया, लेकिन उन्हें बड़ी क्रूरता से कुचल दिया गया। कचहरी थी, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिलता था। विदेशी हुकूमत और स्वदेशी जमींदारों की साझेदारी के कारण उन पर दोहरी मार पड़ती थी।
1: सिदो और कान्हू अक्सर

0: बातों पर अपने परिवार में और गांव के लोगों के साथ चर्चा किया करते।
1: भाई कान्हू।
2: जी भैया।
1: अंग्रेज अफसरों और उनके लोगों का शोषण तो बढ़ता ही जा रहा है।
2: हाँ वो तो है, आज ही देखो ना क्या हुआ।
1: क्या हुआ?
2: सुबह जगत बेसरा के घर से उसके दो बेटों को जमींदार उठा ले गया।
1: क्या कान्हू, अब तो हमें कुछ करना ही होगा।
2: हाँ भैया।
1: ऐसा करते हैं, कल गांव वालों की एक बैठक बुलाते हैं, वहां विचार करेंगे कि हमें क्या करना है।
2: लेकिन भैया मुझे लगता है कि सिर्फ गांव के लोगों को बुलाना ठीक नहीं रहेगा।
1: तो फिर
2: कम से कम आसपास के 5-10 गांवों को बुलावा भेजना चाहिए।
1: हाँ ठीक कहा तुमने।
2: हाँ
1: ऐसा ही करेंगे।
2: जी भैया।
0: फिर क्या था, आसपास के 10 गांवों की सभा बुलाई गई और सर्वसम्मति से तय किया गया कि बड़े पैमाने पर अंग्रेजों और उनके सहयोगियों के द्वारा किए जा रहे शोषण का जबरदस्त विरोध किया जाएगा।
3: सबके मन में भयंकर आक्रोश पनपने लगा था। 10 गांवों के लोगों ने मिलकर तय किया कि मात्र 10 गांवों से काम नहीं चलेगा, 100 गांवों से भी अधिक गांवों को न्योता भेजा गया। सिद्धो कान्हू ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इस काम में उनके दो भाइयों चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू, साथ ही दो बहनों फुलो मुर्मू और झानो मुर्मू ने भी पूरा सहयोग दिया।
0: लोगों को एकत्रित और संगठित करने के लिए उन्होंने आदिवासियों की परंपरागत विधि अपनाई। गांवों में डुगडुगी बजा दी गई और साल वृक्ष की टहनी भेजी गई। साल वृक्ष संपन्नता, स्थायित्व, जीवन और क्रांति का प्रतीक है। तीर धनुष के साथ लोगों को सभा में आने का आह्वान किया गया। इस आंदोलन में आदिवासियों के अलावा समाज के दूसरे तबके के लोगों ने भी भाग लिया।
3: दिन था 30 जून 1855। स्थान सिद्धो कान्हू का गांव भगनाडीह। जंगलों पहाड़ों से निकलकर भारी संख्या में संथाल आदिवासी जमा होने लगे। पारंपरिक हथियारों के साथ लगभग 20,000 लोग सभा स्थल पर जमा हो गए। सिद्धो ने जोश भरा क्रांतिकारी भाषण दिया।
4: अंग्रेजों का अत्याचार तो अरे हमारी जमीन
5: मेरे संथाल भाई और बहन, आज हमारा जो हाल है वो किसी से भी छुपा नहीं है। हमारी जमीन हमसे छीन ली गई है।
6: हाँ सही कहा।
5: हमारे जवान बच्चों से बेगारी कराई जाती है। सूद की दर इतनी भारी है कि हम चुका नहीं सकते।
7: भैया सही बात कह
6: रहा है।
5: बाजार से हम अपना ही सामान नहीं बेच सकते। माल गुजारी नहीं देने पर हमारी फसलें जब्त कर ली जाती है।
6: हमारी भी फसलें जब्त कर ली गई।
5: लेकिन भाइयों भाइयों अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि हम इन बातों का विरोध करें। और हमारा नारा है, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
8: अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
5: अब करो या मर जाओ।
8: अब करो या मर जाओ।
5: अबुआ राज अबुआ किसुम।
8: अबुआ राज अबुआ किसुम।
5: अबुआ राज।
0: इस सभा में सिद्धो को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति घोषित कर दिया गया। भारी भीड़ तीर धनुष के साथ चल पड़ी और अंग्रेज अफसरों, स्थानीय साहूकारों और जमींदारों के कार्यालयों और घरों पर हमला कर दिया गया। उनकी विशाल कोठियों पर अधिकार कर लिया गया। लगभग 19 अंग्रेज अधिकारियों और उनके साथ काम करने वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
3: क्रांतिकारियों ने वीरभूमि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। रघुनाथपुर और संग्रामपुर की लड़ाई में संथालों की बड़ी जीत हुई। लेकिन तब तक ब्रिटिश सेना बुला ली गई।

0: सेना ने बंदूकों से क्रांतिकारियों पर आक्रमण कर दिया।
1: पकड़ो इनको, पकड़ो हमारा सिपाही को मराई से।
0: भला बंदूकों के आगे तीर कमान कब तक टिकते। युद्ध धीरे धीरे मंद पड़ने लगा था। सिदो कान्हू के दोनों भाई चांद और भैरव युद्ध में शहीद हो गए।
2: इसी बीच एक और दुखद घटना घटी। सिदो और कान्हू के कुछ साथी लालच में आकर अंग्रेजों से मिल गए और गद्दारों के सहयोग से उपरबंदा गांव के पास कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 अगस्त को बढ़ैत गांव में सिदो को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों भाइयों को खुलेआम फांसी दे दी गई।
0: इसके साथ ही सशक्त नेतृत्व के अभाव में आंदोलन कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे विद्रोह को कुचल दिया गया। बेशक आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन परिणाम स्वरूप 30 नवंबर 1856 को कानूनन संथाल परगना जिला की स्थापना हुई और इस आदिवासी क्षेत्र का विशेष कानून बना, जिसके कारण आदिवासियों को बहुत से अधिकार मिल गए।
2: संथाल विद्रोह या हूल आंदोलन का तो अंत हो गया, लेकिन इसने कुछ साल बाद 1857 की आजादी की लड़ाई की भूमिका बना दी थी, जो अखिल भारत की स्वतंत्रता का पहला आंदोलन माना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा था, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो और करो या मर जाओ। ये मात्र संयोग नहीं है कि आजादी की लड़ाई में यही नारे अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो के नाम से प्रसिद्ध हुए।
0: आज भारत का आदिवासी समुदाय और समस्त देश इन भाइयों पर गर्व करता है। 30 जून को संथाली हूल दिवस पूरे झारखंड में मनाया जाता है। संथाली गीतों में आज भी सिदो और कान्हू का शौर्य गाया जाता है।

0: और उनके शहीद स्थलों पर मेले लगते हैं।
1: भारत सरकार ने उन्हें सम्मान देते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया, उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया और उनके नाम पर संथाल परगना में सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें जनजातीय विषयों पर गहराई से शोध किया जाता है। इन शहीदों को हमारा शत शत नमन।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सिद्धू और कान्हू। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों जय हिंद। कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम और आज मैं हूं आपके साथ रीना। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं वीर जारा फिल्म के इस देशभक्ति गीत

हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में शब्बीर अहमद का लिखा गीत अब आपको सुनवा रहे हैं राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज में। फिल्म का नाम है बॉडीगार्ड।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। धड़कन फिल्म का खूबसूरत गीत अब आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक की आवाज में। संगीत नदीम श्रवण का है और गीतकार हैं समीर।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में इरशाद कामिल का लिखा गीत अब आपको सुनवा रहे हैं राहत फतेह अली खान की आवाज में। फिल्म का नाम है सुल्तान।

कार्यक्रम के आखिर में सैनिक साथियों आपको सुनवा रहे हैं गदर, एक प्रेम कथा फिल्म से ये गीत उदित नारायण की आवाज़ में।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम सैनिकों के लिए यहीं पर संपन्न होता है। सैनिक साथियों, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। 12:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुनो सखी।

स्वागत है आप सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम सुनो सखी में। जी हाँ, बातों और गीतों के इस मिले जुले सफ़र में हाजिर हैं हम। और बता दूं कि आज इस खूबसूरत सफ़र में मैं हूं आपके साथ, आप सबकी अपनी रेडियो सखी रीना। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसी हैं आप सब सखियों और क्या कुछ चल रहा है? जी हाँ, बात करें अगर मौसम की तो बरसात का मौसम चल रहा है, खूब बारिशें हो रही हैं और इस महीने बारिशें होती भी बहुत ही ज़्यादा हैं, जिनसे कई बार थोड़ा सा डर लगने लगता है। इस मौसम में हमें कहीं भी बाहर जाने से परहेज़ ही करना चाहिए सखियों, और जहाँ तक हो सके घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जगह जगह ऐसे मौसम में रास्ते टूटते हैं, पहाड़ दरकते हैं, नदी नालियां उफान पर होती हैं और पेड़ कई बार टूटते हैं और हर जगह पानी ही पानी होता है। इसलिए ऐसे मौसम में जितना हो सके घर पर रहें, बाहर जाने से परहेज़ करें, और अगर कहीं जाना भी है तो वहाँ के रास्तों का या वहाँ के मौसम का पहले से ही पता कर लें, ताकि वहाँ जाकर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और हाँ, छाता हमेशा ज़रूर अपने साथ रखें ताकि बारिश लगने पर ये आपके काम आ सके। खान पान का भी विशेष ध्यान रखा जाता है इस मौसम में, और जहाँ तक हो सके हमें बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए। ताज़ा खाना खाएं और हल्का खाना खाएं, ताकि इस मौसम में पचने में भी आसान होता है। और जब हम साफ पानी इस मौसम में नहीं पीते हैं तो पेट संबंधी भी बहुत सी दिक्कतें, बहुत सी परेशानियां हमें हो जाती हैं। तो वैसे तो आजकल बहुत से साधन हमारे किचन में हमारे पास उपलब्ध होते हैं साफ पानी के लिए, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप पीने वाले पानी को पहले अच्छे से उबाल लें, फिर ठंडा कर लें और फिर उसे पिएं, और खाना बनाने में भी उसी पानी का इस्तेमाल करें। जी हाँ, क्यों बरसात के मौसम में गंदा मठमैला सा पानी आता है जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए हमेशा उबाल कर पानी पिए ताकि हमारा स्वास्थ्य, हमारा पेट दुरुस्त रहे। और बाज़ार से भी अच्छी ताज़ी और थोड़ी सख्त और साफ़ सुथरी सब्ज़ियाँ या फल लेकर आएँ। कटी या ज़्यादा पकी सब्ज़ियाँ या फल ना लेकर आएँ इस मौसम में, क्योंकि बहुत ही जल्दी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं होती हैं। और जब हम देखते हैं कि अभी कल की ही सब्ज़ियाँ या फल हम जो लेकर आए हैं वो अभी ख़राब हो गई हैं, तो मन भी हमारा ख़राब हो जाता है। और कटे फल या सब्ज़ियाँ बाहर खुले में ना रखें और ना ही खाएँ। बारिश में अगर आप भीग जाते हैं तो तुरंत नहा लें और सूखे कपड़े पहनें। सर्दी जुखाम से बचने के लिए गर्म पानी या गर्मागर्म चाय का प्याला पिएं। फर्श पर या पानी ना जमा ना होने दें, या घर के आसपास भी पानी ना जमा होने दें, ताकि आप फिसले ना और मच्छर भी ना उसमें पनपे। बिजली की खुली तारों या पंखों खंभों से भी दूर रहें इस मौसम में। घर के आसपास की भी इस मौसम में साफ़ सफाई ज़रूर रखें, और मक्खी मच्छरों और कीड़ों से बचाव के लिए कॉयल या कीटनाशक दवाई का छिड़काव करें। जहाँ कहीं पानी भरा हो या खड्डे हों तब वहाँ से गुजरने से भी बचें, क्योंकि कई तरह के हादसे इस मौसम में होने का खतरा बना रहता है। सावधानियाँ इस मौसम में हमें ज़्यादा बरतने की आवश्यकता रहती है सखियों, और सावधानियों के साथ जब हम मौसम का मज़ा लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। तो जब बारिश होती है तो हमारी रसोई भी महकती है खूब सारे पकवानों के साथ, और बरसात के मौसम में तो हमारे जो पारंपरिक पकवान होते हैं वो भी खूब सारे बनाए जाते हैं। हाथ में गर्मा गर्म चाय का प्याला हो, प्लेट में गर्मा गर्म पकौड़े हों या कुछ मीठा, और एक मधुर सा गीत है ना भाई, मौसम की तो रौनक लग जाती है। तो इस रौनक को बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: राजू ये कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: राजू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: थैंक्स गप्पू, बचा लिया।
1: ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
5: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: खूबसूरत से गीत और विज्ञापन के बाद फिर से हाजिर हैं हम कार्यक्रम सुनो सखी में, और आज मैं हूँ आपके साथ रही।

सो कि बात करें अपने इस खूबसूरत से प्रदेश हिमाचल की, तो ये कितना सुंदर है कि इसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे देवदार के जंगल, कलकल बहती नदियाँ और शांत वादियाँ हर किसी का मन मोह लेती हैं। कितनी ही खूबसूरत जगह है यहाँ पर। बात करें शिमला और मनाली की, तो ये बर्फीली चोटियों, सुहाने मौसम और ऐतिहासिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध हैं। स्पीति वैली एडवेंचर प्रेमियों और पथरीले पहाड़ों के अनोखे नज़ारों के लिए खास है। खजियार, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। चितकुल, बसपा नदी के किनारे बसा शांत और आखिरी बसा हुआ गांव। बात करें धर्मशाला और मैक्लोडगंज की, जहां तिब्बती संस्कृति और आध्यात्मिक शांति का इसे केंद्र माना जाता है। सुंदरता और संस्कृति का अनूठा संगम है हमारा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश अपनी बर्फ से ढकी पहाड़ियों, हरे भरे जंगलों, कलकल बहती नदियों और सुंदर घाटियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण पर्यटकों का मन मोह लेता है। हिमाचल का पहनावा, खान पान, रहन सहन सब सबसे खास है और अलग है। बहुत ही रमणीक स्थल है, इसलिए इसे देवभूमि कहा जाता है, जहाँ सभी की अपनी अपनी मान्यताएं और संस्कृति हैं। यहाँ की संस्कृति इतनी समृद्ध है कि इसे दुनिया भर से लोग देखने आते हैं। बहुत सी जातियों प्रजातियों के लोग यहाँ रहते हैं, जो अपनी अपनी परंपराओं और संस्कृतियों को आगे ले जा रहे हैं। बात करें गद्दी समुदाय के पहनावे की, तो ये कितना सुंदर और अलौकिक लगता है कि हर कोई इसे पहनना चाहता है। हिमाचल प्रदेश के चंबा और भरमौर क्षेत्र की प्रसिद्ध गद्दी जनजाति का पारंपरिक पहनावा ठंड से बचाव और उनकी अनूठी संस्कृति का प्रतीक है। पुरुष पारंपरिक चोला डोरा और साफा पहनते हैं, जबकि महिलाओं के परिधान को लुआंचड़ी कहा जाता है। विशेष प्रकार के चांदी के ये आभूषण पहनती हैं और ऊन से बने होने के कारण ये वस्त्र गर्म और टिकाऊ होते हैं। चोला, जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है, ये भेड़ की ऊन से बना एक लंबा घुटने तक कोटनुमा वस्त्र होता है, जो ठंड से भी उनकी रक्षा करता है। डोरा की अगर हम बात करें, तो ये एक तरह का मोटा ऊनी धागा या रस्सी होती है, जो कमर पर बांधा जाता है। महिलाएं और पुरुष दोनों इसे पहनते हैं और इसका उपयोग किसी तरह का जरूरी सामान रखने के लिए भी किया जाता है। लुआंचड़ी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि महिलाओं द्वारा पहनी जाती है और रंग बिरंगी ये होती है, जो दिखने में घाघरा चोली जैसी लगती है। सिर और ऊपरी शरीर को ढकने के लिए एक विशेष दुपट्टा ओढ़ा जाता है, जो इनके पारंपरिक आभूषण होते हैं। उनमें सबसे पहले आता है चिड़ी। जी हाँ, विवाहित महिलाओं द्वारा माथे पर पहना जाने वाला मांग टीका ये होता है, चांदी से ये बना होता है और भारी आभूषण उनका ये होता है, जो उनके आधे आगे के माथे को ढकता है। नथ या बालू की अगर हम बात करें, तो नाक में पहनी जाने वाली ये पारंपरिक नथ होती है, बहुत ही सुंदर लगती है और सोने की ये बनाई जाती है। चंद्रहार व टोके, जी हाँ, गले और कानों में पहने जाने वाले ये पारंपरिक भारी चांदी के गहने होते हैं, जो इनके परिधान की शोभा को बढ़ाते हैं। साफा और पगड़ी, जैसा कि कहा, पुरुष इसे पहनते हैं सिर पर, और जिस पर मेलों और शादियों में फूल या कलगी जो है वो सजाई जाती हैं। महिलाएं सिर पर चौक या चक, जिसके पिछले हिस्से पर पहना जाता है सिर के वाला शंख या शंकु के आकार का चांदी का एक आभूषण होता है और ये बहुत ही सुंदर लगता है। लौंग की अगर हम बात करें, तो नाक में ये पहना जाने वाला छोटा सोने का गहना होता है। अगर आपने सोने की नथ नहीं पहनी होती है, तो लौंग पहना जाता है। चंद्रहार, जो गले में पहना जाता है महिलाओं द्वारा, एक भारी और लोकप्रिय चांदी का हार होता है। डोडमाला, ये भी चांदी के सिक्कों का घुंघरू नुमा दानों से बनी माला होती है, जो महिलाएं पहनती हैं। गोजरों की बात करें, जो कलाई पर जोड़े में पहने जाने वाले संकीर्ण व सुंदर चांदी के कंगन होते हैं, और टोके, ये भी चांदी के सपाट और मोटे होते हैं, और पैरों में मोटी चांदी की पायल होती है। तो ये थी जानकारी सखियों गद्दी पहनावे की, जो बहुत ही खूबसूरत होता है, और हम ज़रूर ये हर कहीं चाहते हैं।

कि हम भी इस ड्रेस में, इस पारंपरिक परिधान में फोटो लें या इसे एक बार अपनी ज़िंदगी में ज़रूर पहने, तो बहुत ही सुंदर ये होती है। और इस पर अभी हमने बात की, और फिर से वक्त है एक खूबसूरत से गीत का, चलिए साथ में सुनते हैं।

0: Step into the world of Nexa.
1: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
0: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
0: And now it's yours at an effective price of just 6.75 lakh rupees.
1: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 31st August.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
0: Nexa.
2: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूं एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में फिर से हाजिर हैं हम, और खानपान का ये पड़ाव है, रसोई घर से संबंधित बातें इसमें होती हैं। बरसात के मौसम में कभी पकौड़े तो कभी कुछ मीठा खाने का मन करता ही है, और सखियां भी कितना कुछ बनाकर खाती हैं और खिलाती हैं। बात करें गुड़पारे की तो ये बहुत ही स्वादिष्ट और कुरकुरे होते हैं, घर पर बने हो तो बात ही अलग होती है। तो क्यों ना आज हम बनाएं गुड़पारे की रेसिपी, जिसमें हमें मैदा, घी या तेल, गुनगुना पानी, गुड़ और तलने के लिए तेल की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले एक बर्तन में मैदा और घी डालें, दोनों को अच्छे से मिला लें। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डालकर थोड़ा सख्त आटा गूंथ लें। आटे को फिर 20 मिनट के लिए ढककर रख देना है। 20 मिनट के बाद आटे को थोड़ा सा मसल कर मोटा बेल लें और उसके बाद उसे चौकोर टुकड़ों में काट लें। सभी आटे को बेल कर उसके टुकड़ों में काट कर रख लें। फिर उसके बाद एक भारी तले वाली कढ़ाई लें, उसमें तेल डालकर तेल को पहले अच्छे से गर्म कर लेना है। जब आपको लगे कि तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो उसमें कटे हुए टुकड़ों को धीमी आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें। जी हाँ, धीमी आंच पर तलना है ताकि ये अंदर तक पक जाएं। फिर इन्हें बाहर निकालकर ठंडा कर लें। एक दूसरी कढ़ाई में गुड़ और पानी डालकर एक तार की चाशनी बनाकर पहले से ही रख लें। फिर सारे तले हुए पारे चाशनी में डालकर लगातार थोड़ी देर के लिए चलाते रहें। ठंडा होने पर पारे अलग अलग हो जाएंगे और गुड़ भी उनमें अच्छे से कोट हो जाएगा। तो तैयार हैं हमारे गुड़ पारे, आप भी इन्हें ज़रूर बना कर रखें। और बरसात के इस मौसम में चाय के साथ कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही है, तो बाहर के खाने की चीज़ें और बासी खाने की चीज़ों से अच्छा है कि आप ऐसी हेल्दी चीज़ें पहले से ही बना कर रख लें, जो कुछ दिन के लिए चल जाएं और चाय का मज़ा भी हो जाएगा और

मीठा खाने की जो एक क्रेविंग हमें होती है वो भी हमारी पूरी हो जाएगी। तो आप भी ज़रूर इन्हें बनाएं और मज़ा लें गुड़पारे का। और चलते चलते हम कार्यक्रम सुनो सखी में सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

लज्जा फिल्म के इसी खूबसूरत गीत के साथ सखियों हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंत में। अब मुझे यानी रीना को दें कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति इसी वादे के साथ कि फिर इसी कार्यक्रम में होगी आप सब सखियों से मुलाकात। तब तक स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, जुड़े रहिए हमारे साथ।

चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम को आपके घर तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग हमें मिला विपिन कुमार से। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं जितेंद्र पाल सिंह।

प्यारी सखियो नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। एक बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 के तहत कार्यक्रम की थीम है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग समन्वय के लिए जन केंद्रित और मनुष्यता प्रथम दृष्टिकोण से प्रेरित सामूहिक प्रयासों के केंद्र में आम लोगों को रखा है। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलीला ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में कहा कि भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद बताया कि ये समिति बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यनीति तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
2: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी NEC के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
1: उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय के

0: अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में और वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्र थी। भगदड़ अशोक धाम स्टेशन से मंदिर तक के रास्ते में बिजली के खंभे में करंट आने की अफवाह से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। पूर्वी इंडोनेशिया में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। बचाव दलों ने कल 6 और शव बरामद किए। 135 लोगों के घायल होने की सूचना है। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 119 रन बना लिए हैं। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The government will soon constitute a high-powered committee on banking in achieving the vision of a Vikasit Bharat. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said this after inaugurating the 2-day public sector bank conclave in New Delhi today. She added that the committee will decide the future course of banking reforms by taking up issues and recommendations. Ms. Sitharaman expressed hope that the outcomes of the discussions will provide valuable substantive inputs to the committee as it formulates its recommendations on the future role of banks. She noted that Indian banks are in a position of strength with non-performing assets at their lowest ever levels, providing a strong foundation for further reforms.
2: On the basis of a well-researched set of documents which have been shared with you in advance, will hopefully provide that substantive meat for the committee to also look at. So the committee would probably have that material before them, even as they deliberate. And even as they deliberate to give us their thoughts and also the recommendations which will help us to clearly understand where the committee wants India to go towards Vikasit Bharat and in that the role of banks.
1: The BJP has criticized senior Congress leader P. Chidambaram over his statement, expressing pride in being a Dimagi Naxal. Briefing the media in New Delhi today, BJP national spokesperson Dr. Sudhanshu Trivedi claimed that the Naxalism that Congress governments failed to eliminate was decisively brought under control under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. He also cited former Prime Minister Dr. Manmohan Singh's statement of April 13, 2006 that the Naxal threat was the biggest threat to India's internal security in its history. 12 people have been killed in 2 separate incidents of a stampede in Bihar and fire in West Bengal. In Bihar's Lakhisarai district, 7 women devotees died in a stampede at the Ashok Dham temple today. On the occasion of the third Monday of the holy month of Sawan, a large crowd of devotees had gathered for the ritual Jalabhishek of the deity when the incident occurred. More than 10 devotees have been seriously injured. Chief Minister Samrat Chaudhary has expressed grief over the incident and announced next gratia of 4 lakh rupees each to the next of kin of the deceased. Prime Minister Narendra Modi and Defence Minister Rajnath Singh expressed grief at the loss of lives in the incident. In West Bengal, at least 5 people died and several others have fallen ill after a fire broke out at a hotel near Tarapit police station in Birbhum district this morning.

0: और गरिमा की रक्षा करते करते स्वाभिमान रखना यानी खुद को विनम्र और आत्मानंद के लिए मजबूत बनाना भी उतना ही जरूरी है। तो ये भी बात है कि क्या हम दूसरों की मर्जी के अनुसार ही सारे काम करते हैं। तो ये भी आप हमें बताइए कि अगर एक दिन आपको ऐसा पता चले कि आज आपको किसी भी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं जाएगा, किसी भी चीज़ के लिए कोई जजमेंट पास नहीं होगा, या ये नहीं कहा जाएगा कि इस उम्र में आप ये काम नहीं कर सकते, या आप इस ख़ास जगह पर हैं तो आपको ये नहीं करना चाहिए, अगर इस तरह की बंदिशें एक दिन के लिए भी आपसे हट जाएं, या आपके मन की जो ये दुनियादारी है वो आपसे हट जाए, तो कौन सा काम आप करेंगे ये हमें बताइए। और तब तक सुनाते हैं आपको एक ऐसा ही गीत जो आपको काम इस तरह का अपने मन का काम करने के लिए प्रेरित करेगा। और ये गीत किस फिल्म का है हमें बताइए, किस पर फिल्माया गया है ये भी बताइए।
1: कहे कहने दो जी कहता रहे हम क्या

0: कोई मुझे जंग भी कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: जंगली फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे। शमी कपूर इसमें नज़र आते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जो बिल्कुल अपने मन से आपने किया हो। साथ ही ये भी बताइए कि आज ज़िंदगी में कोई ऐसा काम किया जिसके लिए सब रूठ गए हों, सबसे बगावत करके कोई काम आपने किया हो तो भी हमें बताइए। और हमारे साथी ने लिखा है कि मैंने अपना जीवन यापन करने का एक हुनर अपने लिए किया है और मेरा जीवन अच्छे से मैं चलाता हूँ उससे। और हमारे साथी कहती हैं कि 4 दिन की ज़िंदगी में सबको खुश रखते चलो ये कहते हैं सभी, लेकिन ये नहीं कोई पूछता कि इस कोशिश में खुद को कितना खो दिया। इस छोटी सी ज़िंदगी में दूसरों को रिझाने के लिए नकली मुस्कान ओढ़ने से बेहतर कि हम वो करें जो हमारे दिल को सुकून दे। झुकना वहाँ ठीक है जहाँ रिश्ते मायने रखते हों, पर अपने आत्मसम्मान का सौदा करके किसी के सामने गिरना खुद के साथ अन्याय है। ईश्वर ने हमें किसी के सांचे में ढलने के लिए नहीं बल्कि अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए भेजा है, इसलिए झूठे मुखौटों को उतारिए, खुद पर विश्वास रखिए और अपने स्वाभिमान के साथ अपनी चुनी हुई राह पर आगे बढ़िए। हमारी कौर साथी ने कविता लिख भेजी कि वक्त मुट्ठी में रखी रेत सा फिसलता रहता है और हम हैं कि उसे रिश्तों ख्वाहिशों और फर्जों में बांधते रहते हैं। मन की सुन लेना भी जरूरी है मगर किसी अपने की खामोशी पढ़ लेना भी। अपने रास्ते पर चलना आज़ादी है और चलते हुए किसी का हाथ न छूटे शायद यही इंसानियत है। इसलिए इन चंद दिनों को न मुखौटा बनाइए न शिकायत, बस इतना कीजिए कि जो बनना चाहते थे थोड़ा सा बन जाएं, जो अपने थे उन्हें थोड़ा सा अपना कह जाएं। फिर जब शाम उतरेगी जिंदगी की तो अफसोस कम होंगे और यादें शायद थोड़ी ज्यादा। हमारे एक साथी का कहना है कि चल अकेला ये गीत भी सुन सकते हैं क्या आज। हालांकि आज की थीम पर ये गीत तो बिल्कुल भी नहीं जमता क्योंकि अकेले चलने की बात नहीं हो रही है, बात आप सबके साथ रहकर भी अपने मन की कुछ कर सकते हैं इसकी हो रही है। और साथ ही ये शब्द भी इसमें कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि स्वाभिमान अपने आप को दूसरों से बड़ा समझना नहीं बल्कि अपने अस्तित्व और अपनी भावनाओं का सम्मान करना है। जीवन में हर किसी को खुश रखना संभव नहीं होता। स्वाभिमान वो ताकत है जो कहती है मैं किसी से कम नहीं और किसी को छोटा करके बड़ा बनने की ज़रूरत भी नहीं। किसी के स्वाभिमान की लकीर खींची गई हो उस लकीर से अपनी लकीर को बड़ा करना होता है, किसी की लकीर को मिटाना नहीं होता। तो बस ये बात तो हो रही है, साथ ही साथ फिल्मों की बातें भी हो रही हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्होंने कि क्षणभंगुर जीवन की यथार्थता परिभाषित करता सुंदर गीत आह फिल्म के गीत के बारे में ये कह रहे हैं। और भी बहुत से गीतों के बारे में हमारे साथियों ने कहा है कि ये गीत शामिल हो सकते हैं। देखते हैं कि आज के जो गीत शामिल हो रहे हैं उनमें आपके लिस्ट के, हालांकि बहुत से गीत तो हैं आपकी लिस्ट से उसमें से, लेकिन फिर भी आप हमें बताते चलिए कि कौन से गीत आपके लिस्ट में से आज शामिल होते जा रहे हैं इस कार्यक्रम में। और ये भी बताइए कि कौन कौन सी बातें जो आपके जीवन में रही हैं वो आज के इस कार्यक्रम से संबंधित है, कि आप अपने जीवन को किस तरह से बांधते हैं, किस तरह से देखते हैं, किसके लिए आप करते हैं अपने मन को थोड़ा सा नरम

और कब कब अपने मन के काम करने के लिए, मनमर्जी करने के लिए मचल उठते हैं आप? हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा किस्सा भेजा है, बताएंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं। बताइए कि कौन सी फिल्म से ये गीत हमने लिया और इसे लिखा किसने?

आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में सच्चाई फिल्म का गीत आपने सुना, जिसे लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत पढ़ते ही दिल गहरी सांस लेकर बुदबुदाया कि होना तो ऐसा ही चाहिए पर होता कहाँ है। रिटायरमेंट के दिन सहकर्मी भी यही कहते हैं कि अब आपकी दूसरी पारी शुरू हो रही है, अभी तक आप दूसरों के लीजिए, अब अपने लीजिए और सभी इच्छाओं को पूरा करें। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है, हम जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों का मन रखने और लिहाज करने में व्यतीत कर देते हैं और इसकी ऐसी आदत हो जाती है कि जब होश आता है तब तक इच्छाएं मर चुकी होती हैं और शरीर अक्षम हो चुका होता है। संक्षेप

में एक शेर आज की इबारत का माकूल जवाब हो सकता है। उम्रे दराज मांग के लाई थी चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। भाई क्या बात आपने कही, बिल्कुल मर्म को समझा आपने आज की इबारत की। और कुछ यही बातें की जा रही हैं कि एक वक्त के बाद एहसास होता है कि बहुत सा काम हमें करना था अपने मन का जो हमने बिल्कुल नहीं किया। हम दूसरों के बारे में सोचते रहे, कभी कभी कुछ जो बंदिशें या सीमाएँ थीं वो हमारी अपनी ही बनाई हुई थी, जो हमें बाद में समझ में आता है। हमारे एक साथी कहने कि लता जी की आवाज़ का एक गीत है, दो दिन की जिंदगी कैसी है जिंदगी। जब जब इस गीत को सुनती हूँ तो लगता है जिंदगी चाहे दो दिन की हो या चाहे चार दिन की, हम जो भी पल जिए उसमें किसी तरह का अपराध बोध ना हो। हम अक्सर ये सुनते हैं कि दूसरों का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, पर अपने दिल के सुनते हैं अपने दिल को कितना दुखाते हैं। हर समय पूर्ण बनने की कोशिश में दिन गुजर जाते हैं और हम हाथ मलते रह जाते हैं। सो अपने दिल के सुने, न किसी को दुखी करें न खुद दुखी हों। ये जो जितने दिल मिले हैं इन्हें भरपूर जी लें। वाकई बहुत ही अच्छी बात हमारे एक साथी ने दी है। नागपंचम की बधाई, तो हम भी देते हैं उन्हें बधाई और साथ ही साथ उन्हें देते हैं ये संदेश कि अपने मन की जीना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी मन नहीं होता कि हम मुस्कुराएं, या कभी कभी मन उदास होता है फिर भी हम कहते हैं कि हम ठीक हैं। तो इस तरह की बातों से भी हमें बचना चाहिए। तो क्या वाकई हम अपने मन के सुनते हैं? आप हमें बताइए और सुनिए ये गीत जिसमें बात है कुछ ऐसी ही। और आपको ये बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है। आवाज़ तो आप पहचान ही जाएंगे, संगीतकार का नाम पहचानिए।

सच्चा झूठा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। इसमें आपने सुना किशोर कुमार की आवाज, और हमने नहीं पूछा था फिर भी आपने बताया कि राजेश खन्ना नजर आते हैं इस फिल्म में, इस गीत में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सही जवाब दिया। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन से ही उनका सपना था कि वो एक आरजे बने रेडियो में, लेकिन समय के साथ बैंकिंग जॉब करना पड़ा, फिर 36 साल के बाद रिटायरमेंट हुआ और आरजे बनने की इच्छा हुई तो ऑडिशन क्लियर किया, और अब अपना सेकंड फेस यानी लाइफ की जो दूसरी पारी है वो एक आरजे के रूप में कम्युनिटी रेडियो में बिता रहे हैं। और ये उनकी एक चॉइस थी, उनका एक शौक था और इसे उन्होंने चुना और आज वो बड़े खुश हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आपने अपने इस शौक को, अपने मन की बात को बिल्कुल ध्यान रखा कि आपका मन क्या चाहता था। भले ही आपको कुछ और करना पड़ा, लेकिन जैसे ही मौका मिला आपने ये नहीं सोचा कि उम्र है आप क्या करें, और आप आगे बढ़े। इसके लिए बहुत बहुत आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे एक साथी कहते हैं, अगर आप किसी की मदद चाहकर भी ना कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, पर उसकी राह में रुकावट ना डालें। अगर ये बात हर आदमी मानने लगे तो दुनिया की आधी समस्याएं अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं खूब खेलूंगा क्रिकेट, अगर उन्हें जज ना किया जाए तो वो क्रिकेट खेलना चाहेंगे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अगर उन्हें कोई रोके टोके नहीं तो मैं छोटे छोटे निके निके से बच्चों के साथ खेलना चाहूंगी। हम तो कहेंगे कि कोई रोकता टोकता भी है तो रहने दीजिए, आप अपना जो ये खेलने का मन है वो कर लीजिए। भाई इतना अच्छा सा शौक आपने सोचा, इतना अच्छा आपका मन में ये छोटी सा एक ख्याल है, इसके लिए भी इतना सोचेंगे तो क्या होगा, है ना। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कुछ सच कहें तो अपने लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं किया, बस दूसरों की खुशी कैसे मिले इन्हीं बातों का ध्यान रखा। पहले मायके में सबका ध्यान रखना, सबके काम करना, सबको खिला के खाना, फिर ससुराल में भी बच्चों और सबका ख्याल सदा रखा, लेकिन अब जीना है खुद के लिए और हम करते हैं कुछ ऐसे काम जिससे हमें खुशी मिले। मिलते हैं अपने दोस्तों से, ढूंढते हैं छोटी छोटी खुशियाँ, कभी कभी खुद की पसंद का खाना भी बनाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि आज हम यही बनाएंगे। भाई ये हुई ना बात, क्योंकि ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोज़ाना दूसरों की पसंद का ही ख्याल रखते रहेंगे तो आपकी पसंद का ख्याल कौन रखेगा। हमारे एक और साथी कहते हैं कि क्या कहने इस गाने के, बहुत साल हो गए इस फिल्म को देखे हुए लेकिन इतने सालों बाद भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब कल की बात हो। शम्मी कपूर और सायरा बानो की बहुत सुंदर अदाकारी इस फिल्म में, और देखकर

पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। जंगली फिल्म के गीत के लिए इन्होंने कहा, हमारे एक और साथी ने कहा कि अगर उत्तरदायित्व का बोझ हट जाए तो जरूरतमंद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा, शिक्षण मेरा शौक है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ रिश्तों को समर्पित है ये कहावत। तो अलग अलग बातें हमारे साथी कह रहे हैं, और जो बाकी और साथी भी हैं वो भी बता सकते हैं कि अगर उन्हें एक दिन के लिए ये मौका मिले कि वो सिर्फ अपने मन का कोई भी काम कर सकते हैं, भले ही आज उन्हें इस चीज़ की पाबंदी हो स्वास्थ्य के कारणों से या किसी और कारण से, मान लीजिए कि वो सब कुछ हट जाए तो क्या करेंगे आप उस एक दिन? क्या होगा आपके मन का वो काम जो आप करना चाहते हैं और कभी नहीं कर पाए, वक्त नहीं मिला या

बिल्कुल सही जवाब दिया है इस गीत के बारे में। हमारे साथी कह रहे हैं कि ये गीत समझ में आया था आज के भारत के बारे में, पर काम का लोड होने के कारण मैं लिख नहीं पाया। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरा तो मन है कि एक दिन ऐसा आए मैं आप सबके साथ स्टूडियो आकर मिल सकूं, आप सभी के साथ एक फ़ोटो खिंचवाऊँ। हमें तो पूरी उम्मीद है कि ये दिन ज़रूर आएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि इस गीत की प्रतीक्षा कर रहे थे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन से स्कूल टीचर बनना चाहती थी, अब रिटायरमेंट के बाद ज़रूरतमंद बच्चों को स्कूल में जाकर फ्री में पढ़ा।

शमी कपूर साहब की जो जंगली फिल्म का गीत उन्होंने सुना, उसके लिए वो कह रहे हैं कि कुछ लोग को इसी तरह की ज़िंदगी पसंद आती है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन दूसरों की नज़र में खटकते रहते हैं, पर कोई बात नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अनेक विवादों का कारण बहुत छोटी सी बात होती है जो बड़ा विकराल रूप धर लेती है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिनके साथ नहीं बनती उनसे एकदम दूर हो जाते हैं। हम तो ज़बरदस्ती नहीं निभाते किसी के साथ बात, ये नहीं कि सारे विचार सबसे मिलें, पर कुछ लोग अपनी ही बात मनवाने में लगे रहते हैं। हमारे एक और साथी कहने कि अपने

दिल चाहता है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हमारे कई साथियों ने सही नाम बताया फिल्म का, और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैं तो सोच भी नहीं पा रही कि एक दिन मैं क्या करूं, मैं फिर से बचपन में जाकर उन सब दोस्तों से मिलकर वही मस्ती भरा पल एक बार और जीना चाहती हूं, जहां हर पल बस खुशियां ही खुशियां हो। तो हम आपको एक आइडिया देते हैं कि आप ये कर सकती हैं कि बचपन में जो चीज़ें आप किया करती थी अपनी सहेलियों से, अब भी आप मिलने की कोशिश कीजिए, तो आपको वो खुशी थोड़ी बहुत तो ज़रूर मिल जाएगी। क्योंकि अपने मन के करने के लिए हम आपको काल्पनिक तौर पर नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ सोचिए, नहीं, करके देखिए, बड़ा मजा आएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चाहे कोई हमें बुरा कहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग हमसे 36 का आंकड़ा रखते हैं, पर हम जीते अपनी ही इच्छा से हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वो गार्डनिंग उन्हें बहुत पसंद है और वो ये काम करती हैं, वॉलंटियर करती हैं वो अपनी सोसाइटी के लिए। 15 साल हो गए और वो ग्रीनरी अवार्ड भी उन्होंने 2 बार जीता है, कैश भी मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, और ये अवार्ड उन्होंने खुद दिल्ली में ये कलेक्ट किया अपने आप ही। 200 पॉटेड प्लांट उन्होंने खुद लगाए और उनकी रखवाली करती हैं, और किसी की सहायता नहीं लेती, खुद उनकी रखवाली करती हैं। तो बहुत ही अच्छी बात आपने की, और अपने मन की आप ये कर रही हैं, और उससे लोगों का भी फायदा हो रहा है। तो ये भी होता है, जब हमारा मन हम खुद खुश रखते हैं तो उससे ही हम दूसरे लोगों को अपने आप ही खुशियां बांटते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। वैसे ही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिल चाहता है पुरानी फिल्मों के गीत सुने, मगर अब नई फिल्म का दिल आ गया है तो दिल इसको भी सुन लेगा, कान भी सुन लेंगे। भाई, नई और पुरानी दोनों फिल्मों का दौर है, और अच्छे अच्छे गीत हैं, हमारी थीम के साथ मैच कर रहे हैं, तो क्यों ना सुना जाए। हमारे एक और साथी कह रही, हम तो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, जिससे हमें बहुत खुशी मिलती है। ऐसा लगता है हम कहीं जाकर कुछ गीत गाएं, भले ही उसमें सुर ना हो, बस अपनी खुशी के लिए। एक बात और, जब कहीं हम देखते हैं कोई गीत गा रहे हैं तो हम माइक लेकर एक लाइन ही सही गा लेते हैं, फिर बच्चे कहेंगे कि क्या मम्मी आप ये क्या करती रहती हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है, कहते हैं ना परवाह के लोग क्या कहेंगे, शायद इसलिए ही अपने लिए हम कभी जिए नहीं। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं, दिल तो नहीं करता कि उनकी बातों की परवाह करें, पर आप नहीं करेंगे तो लोग ज़बरदस्ती आपसे परवाह करवा कर ही रहेंगे। भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आप ठान लें कि आप किसी की परवाह नहीं करेंगे तो देखिए, फिर धीरे धीरे बेपरवाह होने का भी एक मौका मिलने लगेगा आपको। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि मन की तुलना चंद्रमा से की गई, जिस प्रकार चंद्रमा घटता बढ़ता है उसी प्रकार मनुष्य के मन की मनोदशा कही गई है। कभी इच्छाओं से अभिभूत होकर श्रृंक हो जाता है, कभी निराशा से बोझिल थकासा, कभी आशा की किरण से चमकता हुआ, हर दर्द से बेपरवाह। सच, कितनी असीम शक्तियां छुपी हैं इस मन में। मन के हारे हार है मन के जीते जीत। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि उनका मन था कि आकाशवाणी में प्रोग्राम करूं, एक दो बार गई भी, लेकिन कुछ हालात की वजह से रेगुलर नहीं हो पाया। अब आप लोगों से मिलने का भी मन करता है, मुंबई स्टूडियो जाऊं और आप सबसे मिलूं। तो आपका ये मन ज़रूर, आप मन का काम पूरा कर सकती हैं ऐसा हमें लगता है, और भविष्य में ज़रूर ये होगा ऐसा भी हमें लगता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि तबला बजाने की इच्छा थी जो नहीं पूरी हो सकी, लेकिन अब मैंने तबला क्लास लगाया है और सीख रहा हूँ। भाई, क्या कहने, क्योंकि जब आपका मन किसी चीज़ को करने का हो और आप उसकी ओर कदम बढ़ाने की कोशिश करते रहें तो यकीन मानिए वो काम तो होकर ही रहेगा। जैसा कि हमारा मन कर रहा है कि आपके मन की बात सुनते हुए गीत आपको सुनवा दें, तो देखिए ये काम पूरा हो रहा है। बताइए कौन से फिल्म का गीत है।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और आज हम बात कर रहे हैं कि अपने मन के कब करेंगे हम, अपने मन की बात नहीं कब सुनेंगे हम, क्योंकि बचपन से हमने तो ये सीखा है कि खुद को तो बाद में रखिए, दूसरों को पहले रखिए, खुद की खुशी के बारे में हम ना सोचें, ऐसा कई बार हमें सिखाया जाता है। लेकिन एक बात जो हमें नहीं सिखाई जाती वो ये कि हमारी जिम्मेदारी अपने प्रति है, हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई और हमारा ख्याल कैसे रखेगा। और बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं जो उम्र को देखकर कही जाती हैं कि आपकी उम्र इतनी हो गई है, अब आप ऐसा ना करें, वैसा ना करें। तो हमारे एक साथी कह भी रहे हैं कि इस जीवन के रंगमंच में अनेक किरदार निभाते निभाते हम अपने को ही खो बैठते हैं, सबके सुख और खुशी में हम भी सुख और खुशी पा जाते हैं, अपने निज सुख और आनंद की ओर ध्यान नहीं जाता और कर्तव्य करते करते अपने को हम ना भूलें, ऐसा ये कह रहे हैं। और कई बार हमें देखना चाहिए कि अपनी खुशी भी आगे रखनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात आपने कही और लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यही गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। राजेश खन्ना नजर आते हैं पर्दे पर, ये बात किसे समझा रहे हैं पर्दे पर ये बताइए और फिल्म का नाम भी बताइए।

अमर प्रेम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसमें शर्मिला टैगोर को समझाते दिखते हैं पर्दे पर राजेश खन्ना ये बात, और हमारे साथियों ने तो लिखा है कि पुष्पा को समझाते हैं ये बात, जो कि उस फिल्म में उनका किरदार का नाम था। हमारे एक और साथी कहते हैं कि लोगों का क्या है, वो तो इधर से भी बोलते हैं उधर से भी बोलते हैं, जो मन में आए कहते रहते हैं और उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि, और एक साथी का कहना है कि हम तो इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अपने हिसाब से हम चलते हैं, लोग भी अपने हिसाब से चलते हैं, तो हमसे अपेक्षा क्यों करते हैं कि हम उनके अनुसार जिए। और एक और साथी का भी कहना है कि वो लोगों की परवाह नहीं करती, क्योंकि लोग तो कुछ कहेंगे ही, कुछ उनका काम कहना है। मैं सबका अच्छा करती हूँ, परवाह नहीं करती लोगों की, अपना काम है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो। और हमारे एक और साथी कहने कि अगर एक दिन के लिए स्वतंत्रता ईश्वर दे दें तो मैं असीम सच्चिदानंद को भर दूं। और हमारे और साथी कह रहे हैं कि पहली कक्षा की सहेलियों से भी वो मिलती हैं, और एक साथी हैं वो जो वो बना रही हैं अपनी दूसरी श्रोता साथी के साथ प्लान विविध भारती स्टूडियो आने की। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अगर परवाह न करें, सपने न देखें, तो हर शख्स आपसे कोई भी नाराज ना हो, यानी एक सपना है ये कि कोई नाराज ना हो। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि यदि ऐसा एक दिन हो जाए तो अपनी फेवरेट स्कूल टीचर, स्कूल की बेस्ट फ्रेंड के साथ पूरा दिन बिताना चाहेंगे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सच और झूठ में यही खेल है, सौ सुनार की एक लोहार की। और एक और साथी अपने दोस्त को याद कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो हमारा पल अपनी बातों से, चुटकुलों से खुशहाल कर दें। हमारा दोस्त था जो अपनी बातों से इतना हंसाता था कि सांसें फूल जाती थी, उसके आने का इंतजार करते थे। तो बस जीवन में अपने मन की भी कीजिए, अपने मन की बातों के लिए भी ध्यान रखिए। और आज के इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

नमस्कार। आज की त्रिवेणी मोड़ शब्द पर आधारित है। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां से जाकर लौटना मुनासिब नहीं होता। बड़े ही अजीब हैं ये जिंदगी के रास्ते। उस मोड़ पर आकर ठहर सी जाती है जिंदगी। इन्हीं

अने मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं, वहीं कुछ अपने होकर अनजान बन जाते हैं। इसमें कभी खुशी भी मिलती है तो कभी गम में बिखर जाते हैं। हर मोड़ पर एक नया शख्स मिलता है, नया चेहरा होता है, उसके साथ एक अनुभव जुड़ता है। यही मोड़ हमें मजबूत भी बनाता है।

जिंदगी में मोड़ों से भरी एक लंबी सड़क होती है। यही मोड़ हमें सिखाते हैं कि जिस रास्ते को तुमने चुना है, मंजिल उसके बहुत दूर है। कुछ पाना है तो कुछ मोड़ पर आकर लौटना हारने जैसा है। जैसे जब हम शहर में जीविका की तलाश में आते हैं तो समस्याएं, परेशानियां मुंह फैलाए आती हैं। ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं कि उन स्थितियों में अपने आप को संभालना ही पड़ता है। कई दोस्त साथी बनते हैं, कुछ दूर तक साथ चलते हैं, लेकिन मुश्किलों के मोड़ पर कुछ हाथ छोड़ भी देते हैं। तब भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन भरोसा खुद पर गर हो तो ये मोड़ भी सीधे हो जाते हैं।

कई बार हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि अगर वो एक मोड़ ना आया होता तो शायद हम इतने समझदार, इतने मजबूत ना होते। दर्द देने वाले मोड़ ही अक्सर इंसान को अपनी असली पहचान से मिलवाते हैं। इसीलिए जब भी जिंदगी किसी नए मोड़ पर लाकर खड़ा करे तो डरिए मत, हो सकता है वही मोड़ आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय बन जाए, क्योंकि रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, हर मोड़ के बाद एक नई सुबह इंतजार करती है, एक नए मोड़ का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोकधाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के 30 दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 184 रन बनाए। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। भारत के MR अर्जुन, हरिहरन अम सकरून पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि यह समिति विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्य दिशा तय करेगी।
1: On the basis of a well researched
2: पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगे। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी।
1: And in that, the role of banks.
0: वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में हैं। डूबे कर्ज की स्थिति निम्नतम स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें मिलने के बाद सरकार और बैंकिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम होंगे। भारत ने अपने ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की है। नई दिल्ली में आज जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य तथा संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है।
2: श्री तन्मय कुमार ने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि सतत विकास, जलवायु समायोजन, संसाधन क्षमता और चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरणीय निगरानी के संदर्भ में भागीदारी मजबूत हुई है। बैठक के दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स 2026 की गतिविधियां वैश्विक सहयोग को मनुष्यता प्रथम के आधार पर जन केंद्रित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान पर्यावरणीय कार्य समूह और संपर्क समूह ने 4 प्राथमिकता क्षेत्रों सतत जीवन शैली, वनीकरण, जंगल की आग और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और समायोजन

0: जन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। उन्होंने कहा कि इससे ब्रिक्स संगठन के तीन आधार स्तंभ राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, वित्तीय सहयोग और जनभागीदारी के बीच समन्वय मजबूत हुआ है। पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां एकत्र थी।
2: लखीसराय के अशोक धाम मंदिर पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार में भगदड़ से ये हादसा हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के अनुसार आज सुबह श्रद्धालुओं के अशोक धाम स्टेशन हॉल्ट से मंदिर जाने वाले रास्ते में बिजली के गिरे खम्भे में करंट दौड़ने की अफवाह के बीच भगदड़ मचने से ये हादसा हुआ।
3: मंदिर का क्यू वो पहुंचा हुआ था अशोक धाम हॉल्ट तक, तो जो उसका क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है।
2: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। रक्षा मंत्री ने इस दर्दनाक हादसे के पीड़ित हर व्यक्ति के लिए कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत तक फैल गई। आग लगने के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए डिजिटल स्वगणना प्रक्रिया आज आधी रात से शुरू हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जनगणना 2027 के अंतर्गत ये प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी।
4: जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर के 16 जिलों में की जा रही है। इसमें जम्मू, श्रीनगर, सांबा और राजौरी जिलों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को इस अभियान के अंतर्गत पूरी तरह कवर किया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि स्वगणना प्रक्रिया जियो रेफरेंस्ड है, अपने निर्धारित क्षेत्रों में मौजूद निवासी ही इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। निवासी आज से डिजिटल स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इस बार जाति संबंधी जानकारी भी देनी होगी। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
5: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में

0: तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था, यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी से भी कहा कि वे श्री गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ तथा ने श्री गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और सीबीआई, ईडी तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस विग्नेश शेषिर को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर यह पीठ सुनवाई कर रही थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बदलती तकनीक के इस दौर में स्नातक डिग्री शिक्षा का अंत नहीं बल्कि निरंतर बदलाव के साथ सीखते रहने की शुरुआत है। आज तमिलनाडु के तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने वर्ष 2014 के बाद देश में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई। सैन्य अभ्यास कल से इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना है। इससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगलों और अर्धशहरी क्षेत्रों में उग्रवाद तथा आतंकवाद का सामना करने की संयुक्त क्षमता बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भी कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारिककाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन के दौरान गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। दिल्ली के कुछ भागों में आज हल्की बारिश हो सकती है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। आज ही पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल के साथ खेलेंगी। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के अम्स्टरफेंड में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शनिवार को वेल्स पर 3-1 की विजय के साथ की, जबकि इंग्लैंड ने प्रतियोगिता के पहले दिन पाकिस्तान को 4-1 से हराया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 कर्मियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार से सम्मानित किया। इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने कानून निरस्त किए जाने और नए कानून बनाने तथा

0: शासन और लेखांकन में प्रौद्योगिकी अपनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331081, व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 148 अंक की गिरावट से 77,861 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 189 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नक्मे।

हेमंत कुमार की आवाज में घर हाउस नंबर 44 फिल्म का ये गीत आपने सुना। साहिल लुधियानवी की बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सदाबहार नकमे कार्यक्रम। आइए सुनते हैं भाभी फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त का संगीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज में भाभी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त का संगीत।
1: बैठ जा, खड़ी हो जा।
2: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
3: अब कहां जाए हम?
4: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
4: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
2: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सेहतनामा।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे थे गीता दत्त को भाई भाई फिल्म के इस गीत में, जिसे लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज तुम सा नहीं देखा फिल्म के इस गीत में।

0: का मुझ पे एहसान किया, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है।
1: तुम सा नहीं देखा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल उपिन नैयर की तर्ज आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं सचिन देव बर्मन का संगीतबद्ध किया ये गीत, फिल्म पेइंग गेस्ट, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें।

0: सिताना।
1: किशोर कुमार और आशा भोसले को आप सुन रहे थे पेंगे इस फिल्म के गीत में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नकमे में अब सुनिए मदर इंडिया फिल्म से ये गीत।

शकील बदायूनी की रचना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मदर इंडिया फिल्म के इस गीत में संगीत नौशाद का। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं चलती का नाम गाड़ी फिल्म से। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। गाने का आनंद लीजिए और मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: बन सकते।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर 3 बजने को है। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
2: 447 पर कॉल करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों की संख्या को कम करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अधिकारियों की संख्या में प्रस्तावित इस कटौती से प्रदेश को हर साल लगभग 200 करोड़ रुपए की बचत होगी।
1: अधिकारियों की ज्यादा फौज नहीं चाहिए, अधिकारियों की फौज चाहिए हमें, जो हमारे अनुसार जो लगता है कि जो योजनाएं हैं, योजनाओं को इंप्लीमेंट करने के लिए अधिकारी चाहिए होते, योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए, उसके स्वरूप को बदलने के लिए अधिकारी चाहिए होते। तो
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 18 अगस्त को मंडी में एक स्कूल का उद्घाटन करेंगी। ये उनका निजी दौरा है और वे इस दौरान बच्चों से भी संवाद करेंगी।
1: उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये कहा है कि मैं सिर्फ बच्चों से ही बात करना चाहती हूँ, कोई राजनीतिक रैली नहीं करना चाहती हूँ, जनसभा कोई नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि प्रियंका जी जब आपदा आई थी, आपदा के समय व्यक्तिगत तौर से वहाँ गई थी और उन्होंने कहा था कि इस स्कूल को मैं बनाऊंगी। आज वो स्कूल बन के तैयार हो गया, तो कल वो उसका उद्घाटन करेंगे।
0: कर्मचारियों को लेकर विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने एक भी दिन कर्मचारियों की सैलरी व पेंशन नहीं रुकने दी। यही आत्मनिर्भर हिमाचल है जिसकी सरकार बात करती है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में राज्य पथ परिवहन निगम को आत्मनिर्भर बनाने का है। उन्होंने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से मंडी जिले के लिए 25 नई इलेक्ट्रिक बसें रवाना करने के मौके पर कहा कि निगम में अधिकारियों की गाड़ियों की संख्या भी घटाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के निगम के बेड़े में शामिल होने से निगम और लोगों दोनों को फायदा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को 1000 नई बसें खरीदने को मंजूरी दे दी है।
1: बहुत अच्छी माइलेज आ रही है, बहुत अच्छी कवरेज आ रही है और हमारे यहाँ चंडीगढ़ के रूट जो पर किलोमीटर के हिसाब से थोड़े कई बार नुकसान हो जाता था, वो हमारे एवरेज में ठीक आ जाएगी। तो निश्चित रूप से नई व्यवस्था के अनुरूप ये आगे बढ़ेंगे और HRTC को हम सस्टेन करना चाहते हैं, उसको हम अच्छा बनाना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ज़्यादा समय नहीं है, 5 साल में HRTC प्रॉफिट भी कमाने लगेगा।
0: प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि पार्टी का प्रत्येक प्रकोष्ठ संगठन और समाज के बीच मजबूत सेतु का काम करता है। राजीव बिंदल आज शिमला में पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल चुनाव के समय सक्रिय होने वाला दल नहीं है, बल्कि साल के 365 दिन समाज के बीच रहकर कार्य करने वाला संगठन है। राजीव बिंदल ने बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सुक्खू सरकार ने कोई पेपर ही नहीं करवाए, ऐसे में पेपर लीक होने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस नेता वंदे मातरम का अपमान कर सकते हैं, उनसे भलाई की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। राजधानी शिमला के खलीनी क्षेत्र में एक कार और टैंकर की

0: ये घटना उस समय हुई जब जेल में कैदियों का मेडिकल चेकअप चल रहा था। उन्होंने कहा कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बाद स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। इस संबंध में दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
1: जिला कारागार धर्मशाला में विचाराधीन कैदी और जेल वार्डर के बीच में मेडिकल चेकअप को लेकर कुछ कहासुनी और बहसबाजी हो गई थी, जो बहसबाजी बाद में एक स्कफल और लड़ाई झगड़े के तौर पर परिवर्तित होगी। इसमें एक कैदी द्वारा खिड़की तोड़कर कांच के द्वारा अपने आप को भी कुछ इंजरीज इन्फ्लिक्ट किए हैं और एक जेल वार्डर को भी पेट में कांच घोंपने पर उससे गंभीर चोटें आई हैं। इस स्कफल में टोटल 11 जेल वार्डर को चोटें आई हैं, जिसमें 2 गंभीर रूप से घायल हुए थे और जो भी लड़ाई झगड़ा और इस तरह का स्कफल हुआ उसमें प्रिजनर एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत मामला सदर थाना धर्मशाला में दर्ज किया गया है और दोनों तरफ से क्रॉस एफआईआर हुई है।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
2: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। अब सुनिए सामयिक चर्चा। विषय है भारत की आंतरिक्ष संप्रभुता को सुदृढ़ करना। वाचक स्वर प्रभा शर्मा का है।
0: भारत की अंतरिक्ष यात्रा बुनियादी क्षमताओं के निर्माण से लेकर उन्नत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रदान करने तक विकसित हुई है। पिछले एक दशक में सुधारों ने इस क्षेत्र को निजी उद्यम, स्टार्टअप और वैश्विक साझेदारी के लिए खोल दिया है। भारत अब प्रक्षेपण प्रणाली, उपग्रहों, अंतरिक्ष उपप्रयोगों और मानव अंतरिक्ष उड़ान में अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। भारत ने अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, ऐसे में इसकी अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएं अंतरिक्ष के भविष्य को आकार देने वाले एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर राष्ट्र को दर्शाती हैं। भारत के अंतरिक्ष परितंत्र का तेजी से विस्तार हुआ है। 2014 में पंजीकृत अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या सिर्फ एक थी, जो बढ़कर 2026 में लगभग 440 हो गई। ये विस्तारित परितंत्र भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, जिसका मूल्य अगस्त 2026 तक 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अगले एक दशक में इसके 40 से 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी निवेश लगभग 6 गुना बढ़ गया, जो 2021-22 में 100.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 31 मार्च 2026 तक 618.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इसमें अकेले 2026 के दौरान 187 मिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किए गए। 2026 के मध्य तक 52 गैर सरकारी संस्थाओं को 113 प्राधिकरण प्रदान किए गए थे, जिनमें से 18 उपग्रह संचालन, पेलोड स्थापना और प्रक्षेपण सेवाओं के लिए स्टार्टअप हैं। भारत की बढ़ती प्रक्षेपण क्षमताएं वैश्विक मांग को आकर्षित कर रही हैं। विदेशी उपग्रह प्रक्षेपण 2014 से पहले 35 से बढ़कर जनवरी 2026 तक 399 हो गए हैं। भारत की वैश्विक साझेदारी 61 देशों और 5 बहुपक्षीय संगठनों में 300 अंतरिक्ष सहयोग समझौतों के साथ अपने बढ़ते अंतरिक्ष नेतृत्व को मजबूत करती है, जिसमें अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, संयुक्त मिशन और क्षमता निर्माण शामिल है। भारत में अंतरिक्ष सुधारों से निजी भागीदारी, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी आधारित विकास के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार हुआ है। इन उपायों ने पारंपरिक सरकार के नेतृत्व वाली अंतरिक्ष गतिविधियों से परे इस क्षेत्र को व्यापक बना दिया है। भारत ने 2020 में अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया, जिससे उपग्रहों, प्रक्षेपण प्रणाली और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में उद्योग और स्टार्टअप को सक्षम बनाया गया। इससे एक व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष परितंत्र की ओर एक बड़ा बदलाव देखा गया। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने अंतरिक्ष मूल्य श्रृंखला में निजी भागीदारी का और विस्तार किया है। इसने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को भी परिभाषित किया। इसरो की वाणिज्यिक शाखा NSIL प्रक्षेपण उपग्रह और अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करती हैं और भारतीय उद्योग को इसरो प्रौद्योगिकी मुहैया कराती है। इसका राजस्व वित्त वर्ष 2021-22 में 321 करोड़ 70 लाख रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 3000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के बढ़ते वाणिज्यीकरण को दर्शाता है। अब तक एनएस

0: आईएल ने इसरो अंतरिक्ष विभाग में विकसित 83 प्रौद्योगिकी को भारतीय उद्योग को हस्तांतरित करने के लिए 118 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन स्पेस एकल खिड़की तंत्र के माध्यम से निजी अंतरिक्ष गतिविधियों को सक्षम बनाता है। इसने 31 जनवरी 2026 तक उद्योग और स्टार्टअप को इसरो के 71 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की। फरवरी 2024 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों को अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए उदार बनाया गया था। उपग्रह निर्माण और संचालन के लिए स्वचालित रूप से 74% तक FDI की अनुमति है। प्रक्षेपण वाहनों और स्पेस स्पोर्ट के लिए 49% और उपग्रह तथा ग्राउंड सेगमेंट घटकों के लिए 100% की अनुमति है। सामयिक चर्चा समाप्त हुई। नमस्कार।
1: आज विषय था भारत की अंतरिक्ष संप्रभुता को सुदृढ़ करना। वाचक स्वर प्रभा शर्मा का था।
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
3: चिट्टा रंग तो देखो, लंबी सी नाक, कलमुही नहलाते समय रोई भी नहीं, ठुकुर ठुकुर ताकती रही। ये सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़े ही है। हाँ,
4: इस बेचारी का मेरे घर जन्म लेने में क्या दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर जो कुछ भी पड़े उसमें इसका क्या अपराध? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं। कुछ भावी अनिष्ट की आशंका के कारण उसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। माना कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या उसके भय से इसके प्राण ले लिए जाएंगे? अगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? आ जाओ गुड़िया, आ जाओ।
5: उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वो हाथ पैर उछालकर गुंगुं करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई।

0: बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा,
1: सिद्धू सिद्धू जरा उस बकरी को पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ला ला ला ला ला, लाओ तेरी बहन को दूध पिलाएंगे, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्नी सी बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो।
0: सिद्धू को दिल लगी हाथ आई, उसका छोटा भाई भी दौड़ा, दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़े हुए सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुबलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा, आज शायद पहली बार उसकी शुधा तृप्त हुई थी। वो पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया।

0: पिता का प्यार, भाइयों का दुलार मिलने से नन्ही बच्ची दिन ब दिन निखरती जा रही है। आगे क्या होता है, इसके लिए सुनिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
1: उस दिन से सिद्धू को मनोरंजन का एक नया विषय मिल गया। बालकों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है। अगर किसी घोंसले में चिड़िया का बच्चा देख पाए तो बार बार वहां जाएंगे, देखेंगे कि माता बच्चे को कैसे दाना चुगाती है, बच्चा कैसे चोंच खोलता है, कैसे दाना लेते समय परों को फड़फड़ाकर चेंचें करता है। आपस में बड़े गंभीर भाव से उसकी चर्चा करेंगे, अपने अन्य साथियों को ले जाकर उसे दिखाएंगे। सिद्धू ताक में लगा रहता। जो ही माता भोजन बनाने या स्नान करने जाती, तुरंत

0: बच्ची को लेकर आता और बकरी को पकड़कर उसके थन में शिशु का मुंह लगा देता। कभी दिन में दो दो तीन तीन बार पिलाता। बकरी को भूसी चोकर खिलाकर ऐसा परचा लिया कि वो स्वयं चोकर के लोभ से चली आती और दूध देकर चली जाती। इस भांति कोई एक महीना गुजर गया। लड़की हृष्ट पुष्ट हो गई, आंखें जग उठी, शिशुकाल की सरल आभा मन को हरने लगी। माता उसे देख देख कर चकित होती थी। किसी से कुछ कह तो न सकती, पर दिल में उसे आशंका होती कि अब वो मरने को नहीं, हम ही लोगों के सिर जाएगी। कदाचित ईश्वर इसकी रक्षा कर रहे हैं, जभी तो दिन दिन निखरती आती है, नहीं तो अब तक ईश्वर के घर पहुंच गई होती। मगर दादी माता से कहीं ज्यादा चिंतित थी।
1: मुझे तो लगता है दूध पिलाती है ये बिटिया को। अरे दूध क्या पिला रही है, सांप पाल रही है सांप। क्यों लड़की का बड़ा छो करती हो हा? हाँ भाई, माँ हो कि नहीं, अब तुम न छो करोगी तो कौन करेगा भला। हा
2: अम्मा जी, ईश्वर जानते हैं जो मैं इसे दूध पिलाती हूँ।
1: अरे तो मैं मना थोड़े ही करती हूँ। अरे मुझे क्या गरज पड़ी है कि मुफ्त में अपने ऊपर पाप लूं है। अरे कुछ मेरे सिर तो जाएगी नहीं। हाँ
2: अरे अम्मा जी, अब आपको विश्वास ही ना आए तो कोई क्या करे।
1: हाँ तो क्या मुझे पागल समझती है तू है? पागल समझती हो? वो हवा पी पी कर ऐसी हो रही है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता क्या?
2: सही कह रही हैं। भगवान जाने अम्मा जी, मुझे तो आप ही अचरज होता है कि इसका चेहरा कैसे खिलता ही जा रहा है।
0: बहू ने बहुत निर्दोषिता जताई। दादी को लगा ये मेरी शंका को निर्मूल समझती है, मानो मुझे इस बच्ची से कोई बैर है। उनके मन में ये भाव अंकुरित होने लगा कि इसे कुछ हो जाए तब ये समझे कि मैं झूठ नहीं कहती थी। वो जिन प्राणियों को अपने प्राणों से भी प्रिय समझती थी, उन्हीं लोगों की अमंगल कामना करने लगी, केवल इसलिए कि मेरी शंकाएं सत्य हो जाएं। वो ये तो नहीं चाहती थी कि कोई मर जाए, पर इतना अवश्य चाहती थी कि किसी बहाने से मैं चेता दूं कि देखा तुमने, मेरा कहा ना माना ये उसी का फल है। उधर सास की ओर से ज्यों ज्यों ये द्वेष भाव प्रकट होता था, बहू का कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता था। ईश्वर से मनाती रहती थी कि किसी भांति एक साल कुशल से कट जाता तो इनसे पूछती। कुछ लड़की का भोला भाला चेहरा, कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल्य देखकर भी उसे प्रोत्साहन मिलता था। विचित्र दशा हो रही थी, न दिल खोलकर प्यार ही कर सकती थी, न संपूर्ण रीति से निर्दय होते ही बनता था, न हंसते बनता था न रोते। इस भांति दो महीने गुजर गए और कोई अनिष्ट ना हुआ। तब तो वृद्धा सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे।
1: बहू को दो चार दिन ज्वर भी नहीं आ जाता कि मेरी शंका की मर्यादा रह जाती। कुछ समझ में नहीं आता, पुत्र भी किसी दिन पैरगाड़ी पर से नहीं गिर पड़ता, न बहू के मैके से ही किसी के स्वर्गवास की सुनावनी आती है।
0: एक दिन दामोदर दत्त ने खुले तौर पर कह भी दिया,
3: अम्मा ये सब ढकोसला है, तेतर लड़कियां क्या दुनिया में होती नहीं, तो सबके सब माँ बाप क्या मर जाते हैं।
0: अंत में उसने अपनी शंकाओं को यथार्थ सिद्ध करने की एक तरकीब सोच निकाली। एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से आए तो देखा कि अम्मा जी खाट पर अचेत पड़ी हुई है, स्त्री अंगीठी में आग रखे उनकी छाती सेक रही है और कोठरी के द्वार और खिड़कियां बंद हैं।
3: अरे अम्मा क्या हुआ,
1: अरे
3: कैसी तबीयत है, अरे हो क्या गया?
2: अरे आ गए आप, देखिए ना अम्मा जी को दोपहर से ही कलेजे में शूल सा उठ रहा है, बेचारी बहुत तड़प रही हैं।
1: अरे क्या बताऊं बेटा, तुम आ गए दामोदर, आओ अब ना बचूंगी, हाय भगवान अब ना बचोगे।

0: जैसे कोई कलेजे में बर्छी चुभा रहा हो। ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई थी, इतनी उम्र बीत गई बेटा, ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई, तो लेकर ही बीतेगी मेरी जान। हाय हाय,
1: ये सब ना इसी के कारण हो रहा है। ये कलमुही छोकरी ना जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई है।
2: मैं जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाऊं ना, देर करने से शायद रोग बढ़ जाए। अम्मा अम्मा, कैसी है तबीयत?
0: हाय अरे बेटा, भगवान साफ करते हैं। हाँ अरे बड़ा दर्द हो रहा है। अब ये बेचारी क्या जाने, तो बच्चा है। देखो हाँ, मैं मर जाऊं तो उसे कष्ट मत देना। आए, आए, उसे कष्ट मत देना।
2: जाकर डॉक्टर बुला लाऊं? अभी लौटा आता हूं।
0: अरे नहीं बेटा, रहने दो सब। अब अच्छा हुआ मेरे सिर आई है। हाँ तू बैठ बेटा बैठ, अब किसी के सिर जाती ही। हाँ तो मेरे ही सिर सही। हाँ बेटा अब ना बचूंगी। हाय राम हाय भगवान, अब ना बचूंगी दामोदर। समझ लो कि बस सब सब खत्म। हाँ कह देती हूँ, अच्छा हुआ अच्छा हुआ मेरे सिर आई। हाँ बड़ा दर्द हो रहा है दामोदर। हाय कहीं कोई मत जाओ।
2: अम्मा अम्मा, अभी अभी जाकर डॉक्टर बुला लाऊं, अभी लौटा आता हूं, ठीक हो जाओगी तुम।
0: अरे कहाँ जाते हो? अरे नहीं नहीं बेटा, डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे? अरे अरे अरे वो कोई ईश्वर है क्या? है डॉक्टर कोई अमृत पिला देगा, है 10-20 वो भी ले जाएगा हमारा। डॉक्टर पैसे कुछ ना होगा, कुछ ना होगा बेटा। बस अब तो बस आखिरी समय आ गया है बेटा। तुम बस मेरे पास बैठ जाओ, बैठ जा बेटा, अब बैठ कर भागवत पढ़ो। हाँ अंतिम समय है, अब ना बचूंगी। हाय राम अब ना बचूंगी। पढ़ो पढ़ो बचो, भागवत पढ़ो बेटा, अंतिम समय है। बस तो जान लेकर ही जाएगी। हाँ कह देती हूँ।
2: तेतर तेतर बुरी चीज है। मैं समझता था कि ढकोसला ही ढकोसला है।
1: मुझे पता था, इसी से मैं उसे कभी मुंह नहीं लगाती थी।
0: अरे नहीं नहीं बेटा ऐसा मत कहो बेटा। नहीं, बच्चों को सब आराम से रखना। भगवान करे तुम सब सुखी रहो, तुम लोगों को भगवान सुखी रखे, बस यही आशीर्वाद देती हूँ। अच्छा हुआ मेरे ही सिर गई, तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा, बस यही अच्छा है। राम करे कहीं किसी दूसरे के सिर जाती तो क्या होता। राम राम अरे बस अंतिम समय है, भगवान ने मेरी विनती सुन ली, बस यही विनती है तुम सब खुश रहो। हाय हाय अब न बचूंगी, बस मैं तो चली दामोदर। खुश रहो तुम सब, बच्चों को ठीक से रखना। हाँ कह देती हूँ, कष्ट ना हो किसी को। हाँ
3: दामोदर दत्त को निश्चय हो गया कि अब अम्मा न बचेंगी। बड़ा दुख हुआ। उनके मन की बात होती तो वो मां के बदले तेतर को ना स्वीकार करते। जिस जननी ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेलकर उनका पालन पोषण किया, अकाल वैधव्य को प्राप्त करके भी उनकी शिक्षा का प्रबंध किया, उसके सामने एक दुधमुही बच्ची का क्या मूल्य था, जिसके हाथ का एक गिलास पानी भी वो न जानते थे। शोकातुर हो मां के सिरहाने बैठकर भागवत की कथा सुनाने लगी। रात को बहू भोजन बनाने चली तो सास से बोली,
1: अब कैसा लग रहा है अम्मा जी? आप कहें तो आपके लिए थोड़ा सा साबूदाना बना दूं?
0: अरे बड़ा दर्द होता है। अरे बेटी अन्न के बिना ना मारो है? भला साबूदाना मुझसे खाया जाएगा है?

0: जाओ जाओ, थोड़ी सी पुड़िया छान लो। हाँ, अब पड़े पड़े जो इच्छा होगी खा लूंगी। और हाँ सुनो बहू, कचौरियां भी बना लेना। अब मरती हूं तो भोजन को तरस तरस के क्यों मरूं भला। हाय बड़ा दर्द होता। सुन, अब बेटी थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना। हाँ वो भी चौक से। हाँ अब फिर थोड़े ही खाने आऊंगी। अब गई तो गई, हम तो समझो कि अब बेटी अब ना बचूंगी। बेटा थोड़े से केले मंगवा लेना, कलेजे में दर्द में केले खाने से आराम होता है। हाँ है बड़ा दर्द है भैया।
1: भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर जोर से होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। एक सप्ताह तक उनकी यही दशा रही। दिन भर पड़ी कराहा करती, बस भोजन के समय जरा वेदना कम हो जाती। दामोदर दत्त सिरहाने बैठे पंखा झलते और मातृवियोग के आगत शोक से रोते। घर की महरी ने महल्ले भर में यह खबर फैला दी। पड़ोसी ने देखने आई तो सारा इल्जाम बालिका के सिर गया। एक ने कहा,
2: ये तो कहो भैया कि बड़ी कुशल हुई जो बुढ़िया के सर गई, नहीं तो तैतर माँ बाप दो में से किसी एक को लेकर जाए तो ही शांत होती है। देव ना करे कि किसी के घर तैतर का जन्म हो।
3: हाँ सही कहती हो, तेतर का नाम सुनते ही मेरे भी रोए खड़े हो जाते हैं। भगवान भले ही औलाद ना दे पर तेतर ना दे।
1: एक सप्ताह बाद वृद्धा का कष्ट निवारण हुआ। मरने में कोई कसर ना थी, वो तो कहो पुरखों का पुण्य प्रताप था। ब्राह्मणों को गोदान दिया गया, दुर्गा पाठ हुआ, तब कहीं जाके संकट टला।
4: कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। आज आपने सुना इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। कहानी में भूमिका सहित पात्रों का परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार जी श्याम, वृद्ध दादी रेणु चतुर्वेदी, दामोदर दीपक केसावलेकर, दामोदर की स्त्री स्वप्निल श्रीवास्तव, लक्ष्मी चंचल वर्मा, पड़ोसन मंजरी वर्मा, बाल कलाकार प्रज्वल सिंह, वेदांत सिंह और रुद्र सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, संकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
5: तो आपने सुनी कहानी तेतर, और हम तो बहुत मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। आशा है आप सभी को भी बहुत अच्छी लगी होगी ये कहानी।
6: और आज घर में क्या चल रहा है? आज घर में हो रहा है नाग पंचमी का त्यौहार मन रहा है।
5: बिल्कुल।
6: तो ये जो है ना, ये जो त्यौहार होता है ना, ये हमारा देश त्यौहारों और परंपराओं की विविधता वाला देश है। यहाँ मनाए जाने वाला प्रत्येक पर्व अपने साथ धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक संदेश भी लेकर आता है। नाग पंचमी हमारा एक महत्वपूर्ण पर्व है जो नाग देवताओं की पूजा और उनके प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है। ये पर्व सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है।
5: बिल्कुल। और सुना ली, नागपंचमी के दिन श्रद्धालु सर्प की पूजा करते हैं। भगवान शिव के गले में नाग का स्थान होने के कारण नागों का संबंध भगवान शिव से भी माना गया है। और नागपंचमी का महत्व ये केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा अधिक है। और सर्प हमारे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो खेतों में चूहे और दूसरे हानिकारक जीवों की संख्या नियंत्रित करते हैं जिससे फसलों की रक्षा होती है। इसलिए नागों और अन्य जीव जंतुओं का संरक्षण प्रकृति के संतुलन के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है।
6: और इस दिन कई स्थानों पर जो है ना नाग देवता के चित्र और प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये पर्व विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना करती है। अनेक स्थानों पर पूजा व्रत और धार्मिक कथाओं का आयोजन भी किया जाता है।
5: और आज जब हम ये पर्व मना रहे हैं तो इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए सोनाली कि सांपों को पकड़कर उन्हें परेशान करना या जबरदस्त ती उनको दूध उन्हें पिलाना ये सब उचित नहीं है। वन्य जीवों के

0: प्रेम और सम्मान ही हमारी सच्ची पूजा और श्रद्धा मानी जानी चाहिए। यदि घर या आसपास कहीं सांप दिखाई दे तो उन्हें परेशान करने के बजाय प्रशिक्षित वन्य जीव बचाव दल की हमें सहायता लेनी चाहिए।
1: और ये दिन हमें एक संदेश भी देता है कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नाग देवता के प्रति श्रद्धा तभी सार्थक है जब हम उनके सहित सभी जीव जंतुओं की रक्षा करें और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखें। इस प्रकार नागपंचमी हमारी धार्मिक आस्था और संस्कृति और प्रकृति प्रेम का एक सुंदर संगम है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश भी आया है इसी के लिए कि ये जो पर्व है ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारे देश में और बहुत ही सुंदर और धार्मिक मान्यता से जुड़ा हुआ ये पर्व है। इन दिनों नागों की पूजा की जाती है और कहीं कहीं नाग देवता को दूध पिलाने की भी विधि रखी गई है, देखा जाता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने गले में सर्प को धारण किया था।
1: ये हमारे साथी ने कहा और वक्त हो चुका है अंतराल का, तो हम हाजिर होते हैं अंतराल के बाद
0: जी।

0: दीपा, हमारी एक सखी ने एक मैसेज लिखा है कि हमारे घर भी आज नागपंचमी की पूजा हुई है। नाग देवता को गोबर और मिट्टी से बनी हुई मूर्ति को धान का लावा, लैया, गुड़ और दूध चढ़ाया जाता है। वहीं सब साथ खाना खाते हैं और बहुत जगह पर, खासकर बिहार के कुछ प्रांत में आज बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी के घरों में दाल की पूरी, खीर, आम, पका कटहल, भोग लगाया जाता है और प्रसाद बांटा जाता है। नीम की पत्तियों से घर के दरवाजे को सजाया जाता है। ये पूजा भी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। सावन के महीने में खेतों में धान की फसलें लगाई जाती है और उन बारिश के दिनों में बहुत सारे कीड़े सांप रहते हैं, जो उन्हें भी देवता स्वरूप मान के साथ उनका भी पूजन किया जाता है और हर्ष और उल्लास के साथ इस दिन को मनाया जाता है।
1: और एक और संदेश आया, ये कहते हैं कि हमारे घर में कहा जाता है कि आप कहीं भी किसी भी देश में रहिए, वहां के परिवेश में अपने को ढाल लिए, पर अपना अपना कुल परंपरा का जो है परंपरा के निभा होनी चाहिए। तो कहती है कि बहू हमारी पुणे में रहती है, वो भी आज नागपंचमी की पूजा वहां करती है। यानी आप तो अपने गांव देश में रहते हैं लेकिन बहू दूर रह रही है, लेकिन सारी परंपराओं को वो अपनाकर उसका पालन कर रही है।
0: तो ऐसे ही होता है ना दीपा, की जो परंपराएं होती है या फिर पारंपरिक व्यंजन होते हैं, अगर वो बनेंगे घर में तभी तो उसका स्वाद बच्चों को पता चलेगा।
1: बिल्कुल,
0: अगर वो बनेंगे ही नहीं तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा।
1: और उसका जो महत्व है, क्यों बनाया जाता है, हर एक चीज का महत्व है और हर एक चीज का कारण है, वो समझेंगे ही नहीं अगर उन्हें ना वो चखेंगे ना वो बनते हुए देखेंगे। वो सौंधी खुशबू जब घर में फैलती है उसका आनंद नहीं लेंगे तब तक उसका महत्व उन्हें समझ नहीं आएगा।
0: और जब हम बताते हैं कि कितना पौष्टिक है, इसमें इतना सारा प्रोटीन है, इसमें विटामिन है और इसमें यानी ये जो जो व्यंजन है स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। जब ये बात बच्चों को बताई जाती है ना तो बच्चे जंक फूड के लिए जिद नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन देखो ना आज का ये जो जमाना है, तेज रफ्तार भागती भागती से जिंदगी हमारी हो गई है और इस बदलते परिवेश का सबसे ज्यादा जो प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है वो खान पान पर हम देख ही रहे हैं। एक समय था सोनाली जब बच्चों में घर का बना ये दाल चावल सब्जी रोटी या यूं कहें खिचड़ी पोहा उपमा कोई किसी भी प्रकार के पराठे फल सब कुछ उनको बड़े चाव से खा लेते थे वो लोग, है ना।
0: पर आजकल बच्चे जो है ना कलर और जो है ना रंगों के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और उन्हें ना ये जो उसमें बहुत जो चटपटा बनाया जाता है जंक फूड, जैसे फिर पिज्जा है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज है, नूडल्स, पास्ता, चिप्स, चॉकलेट, केक, कोल्ड ड्रिंक और पैकेट बंद खाद्य पदार्थों ने ये जो जगह ले ली है बच्चों के जीवन में और यही कारण है कि जंक फूड बच्चों के जीवन का हिस्सा बनता चला जा रहा है।
1: और उन्हें इस तरीके से रंग बिरंगी पैकेजिंग में परोसा जाता है ना और बड़े लुभावने फिर विज्ञापन भी बना दिए जाते हैं। जब विज्ञापन बच्चे टीवी मोबाइल पर या अपने किसी सोशल मीडिया हैंडल पर देख लेते हैं या कार्टून प्रोग्रामों के दौरान बीच में अगर देख लेते हैं तो बस फिर उनका मन उस पर तो आ ही जाता है, उसका बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, वहां से शुरू हो जाती है जिद।
0: और छोटे बच्चे तो क्या बड़ों का भी मन आ जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: बच्चे हैं और जब उनके पसंदीदा अभिनेता है या खिलाड़ी है या कार्टून पात्र किसी खाद्य पदार्थ का प्रचार करते हैं ना तो बच्चे भी उसे खाने की जिद करने लगते हैं। इसके अलावा फिर जन्मदिन है भाई, पार्टियां हैं मॉल में, मल्टीप्लेक्स में, स्कूल के आसपास की दुकानें, ऑनलाइन फूड डिलीवरी ने भी जंक फूड को बच्चों के पहुंच में बहुत ही आसान बना दिया है कि इतना इजीली उन्हें सब मिलता है तो वो तो उन्हें इजी है और चटपटा स्वादिष्ट है।
1: चटपटा स्वाद है और चलिए स्वाद भी अगर किसी को पसंद ना आए तो एक बच्चा तो खा रहा है, शायद दो तीन खा रहे हैं, तो वो जो एक नहीं खा रहा है उसका भी मन करेगा या उसको बोला जाएगा कि देखो तुम ये खाकर देखो
0: कितना
1: अच्छा है।
0: और फिर वो अपनी मम्मी से कहेगा कि सबकी मम्मियां तो लेकर देती है, आप ही हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो।
1: बिल्कुल सही कहा। और जंक फूड स्वाद में भले ही लाजवाब लगे सोनाली, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है, यानी हानिकारक है। और इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में तेल होता है, सफेद चीनी, नमक, मैदा, फिर ये प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, कई प्रकार के फ्लेवर उसमें मिलाए जाते हैं और आर्टिफिशियल कलर्स उसके अंदर होते हैं। और ये वहीं पे देखो आप विटामिन, प्रोटीन, फाइबर और कई तरह के खनिज जैसे पोषक तत्व की तो बहुत कमी होती है
0: या फिर नाक के बराबर होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। अच्छा बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे ये सारी बातें, हमें उनको बताना पड़ता है। अगर उनको बताएं कंपोजिशन में क्या लिखा है, देखो ये सब चीजें इतनी ज्यादा है और तुम्हारे शरीर में इतनी ज्यादा ये चली जाएंगी, ये मात्रा हमारे शरीर में जरूरत नहीं है इतनी जितना

0: एक पैकेज के
1: द्वारा
0: जा रहा
1: है
0: तो वो बच्चे समझेंगे, उनको बिठा के बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, समझते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त उन्हें देना होता है।
1: और परिणाम हमारे सामने है ना दीपा, कि जब हम छोटे थे या फिर हमारे साथी मोटे नहीं थे, है ना,
0: बिल्कुल
1: आजकल के बच्चे देखिए ना कितने मोटे होते जा रहे हैं, जंक फूड खाने से बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, मधुमेह है छोटे छोटे बच्चों को, डायबिटीज हमें मालूम ही नहीं था, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर मालूम नहीं था, दांतों की समस्या है, हम हार्डली बहुत कम डेंटिस्ट के पास जाते थे, पर आजकल तो हर बच्चा डेंटिस्ट के पास जाते हैं।
0: सुनाली, पहले तो डेंटिस्ट इतने होते ही नहीं थे, अब तो पेडियाट्रिक डेंटिस्ट भी होने लगे हैं जहाँ छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर डेंटिस्ट है, क्योंकि छोटेपन से ही उनको दांतों की समस्या है, यानी उनके दूध के दांत भी अभी गिरे नहीं है, उसके पहले ही उन्हें बहुत ज्यादा बिल्कुल एक सीरियस दांतों की प्रॉब्लम होने लग जाती है।
1: साथ ही उनकी ना रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आने लग गई है, और कम उम्र में उन्हें अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए ना, हम यही चाहेंगे ना कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, खुश रहे, अगर ये चाहते हैं तो हमें जंक फूड से बच्चों को दूर रखना चाहिए, और अभी हमें एक गाना सुनना चाहिए।
0: उसके तो पास रहना चाहिए, है ना।

सोनाली, हमारे सभी साथियों ने, सहेलियों ने अलग अलग संदेशों से के द्वारा बताया है कि जंक फूड के बारे में उनके क्या विचार हैं। बहुत सी बातें तो बताइए, हम ये चाहते हैं कि आप कोई सखी या किसी भी हमारे सुनने वाले, इस वक्त सुनने वाले श्रोता बताएं, उनके घर में छोटे बच्चे हैं, अगर हैं तो क्या वो बाहर के खाने के लिए जिद करते हैं तो आप उन्हें कैसे समझा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, दोनों ही बातें

0: इस विषय पर भी हमें लिखकर बताएं, क्योंकि जब है ना श्रोता अपने कमेंट्स लिखते हैं ना तो वो ज्यादा दिल के करीब होते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और उससे एक ना बहुत अच्छा संदेश भी जाता
1: और
0: है,
1: समझ में भी आता है कि क्या चल रहा है सबके घरों में, क्या एक सा चल रहा है, एक सा सही हो रहा है या एक सा गलत हो रहा है।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं कि मेरी प्रोविजन की शॉप है और मेरी शॉप में 5-10 रुपए वाले पैकेट वाला नाश्ता मैं बेचता हूँ। आजकल स्कूल के बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चे पैकेट लेना पसंद करते हैं, लंच बॉक्स में घर का हेल्दी फूड देने के बजाय घर से पेरेंट्स भी यही खरीद कर नाश्ता में दे देते हैं। इसमें ज्यादा शुगर और नमक होने के कारण बच्चे छोटी उम्र में मोटापे के शिकार हो जाते हैं, और घर पर भी पिज्जा जैसे जंक फूड आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं, जो हेल्थ के लिए अनुकूल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है।
1: बिल्कुल, वही एक और संदेश आया है कि आज के समय में खाने में जंक फूड बच्चों की पहली पसंद है, पिज्जा बर्गर नूडल्स चिप्स ये तरह तरह के पैकेट स्नैक्स, खुशबू और आकर्षक पैकिंग की वजह से बच्चों को ये बहुत लुभाते हैं। इसके अलावा माता पिता की व्यस्त दिनचर्या और आसानी से ये सब अवेलेबल हैं उसके कारण भी ऐसे खाद्य पदार्थ बच्चों के आदत का हिस्सा बन गए हैं जो उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए स्वाद के साथ बच्चों को संतुलित आहार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए जंक फूड को पूरी तरह खाने पर पाबंदी लगाने के बजाय उन्हें एक संतुलित भोजन का महत्व समझाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है कि घर में जो भी आप हेल्दी फूड जो भी स्वस्थ खाना बना रहे हैं पौष्टिक, वो बनाए भी और खाएं, खुद भी खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, क्योंकि जब आप खुद करेंगे वो उस चीजों को, उन आदतों को अपनाएंगे तो बच्चे बिल्कुल उन आदतों का अनुसरण करेंगे।
0: अब देखिए ना, अब जैसे पिज्जा जैसे ही हम अगर मोटी मोटी रोटी बना के उस पे सारी सब्जियां डाल के उसको अच्छे से उसके ऊपर पनीर कद्दूकस करके उसमें चाट मसाला डाल के दिया ना, तो बच्चों को बताएं कि देखिए होममेड पिज्जा है, ये खाएंगे ना तो ये ज्यादा हेल्दी है। इस तरह से बच्चों को अगर डोसा का बैटर है उससे आपने ABCD बना के दिया बच्चों को, तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। फिर पराठे को कट करके ABCD का शेप बना दिया तो बच्चे शौक से खाएंगे,
1: और इसी तरह से पराठे में जैसे किसी दिन पालक की प्यूरी डाल के आप हरे कलर के पराठे दीजिए, कभी बीट रूट का पराठा जो कि बिल्कुल लाल कलर का हो जाता है, या एक दिन जिस दिन आपके पास थोड़ा समय हो ये सब अलग अलग कलर के पराठे बना के दीजिए, तो उनको बहुत सुंदर लगता है और बहुत खुशी से और बहुत स्वाद लेकर के चाव से खाते हैं बच्चे।
0: और एक हमारे साथी ने लिखा है कि जंक फूड हमने भी बहुत खाया है, हमारी मजबूरी होती थी क्योंकि कॉलेज इतना दूर था, वहाँ आसपास कॉलेज कैंटीन के सिवा कुछ भी नहीं होता था, भूख लगने पर मजबूरी में जो कैंटीन में मिलता था वही खाना पड़ता था, लेकिन आज मैं कोई जंक फूड नहीं खाता हूँ। ये बहुत अच्छी बात
1: ये
0: है,
1: बहुत अच्छी
0: मजबूरी में हम खा सकते हैं, पर जहाँ पर हम कोशिश कि ना खाए वहां पे हम कोशिश कर सकते हैं।
1: अच्छा, एक संदेश ये कहता है कि भाई ये आकर्षक नहीं बल्कि घर में समय पर भोजन नहीं बना पाने का परिणाम है। अच्छा, इन्हें ऐसा लगता है, और वो भी वहां पर विशेष जहां दंपत्ति भी ऑनलाइन ऑर्डर करके मनपसंद भोजन मंगवा लेते हैं। अरे बच्चे तो अनुसरण करते हैं और जब कर लिए तो उसका दुष्प्रभाव से मोटे होने पर उन्हें रोकते भी हैं, मगर वे भी तो तभी रुकेंगे जब आप रुकेंगे। ऐसे में तो यही कहना होगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भाई यही बात हम पहले भी कर रहे थे कि हमें पहले अपने आप में सुधार लाना होगा, सुधार भी लाना होगा और पहल भी करनी होगी।
0: एक साथी कहते हैं कि सिर्फ बच्चों में नहीं बड़ों को भी जंक फूड खाने की आदत होती है, चिप्स पिज्जा और वो भी कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ, इन सभी का आकर्षण विज्ञापनों के साथ बड़ा प्रचार किया जाता है, रंग बिरंगी पैकिंग और इंस्टेंट डिलीवरी सुविधा के कारण गृहणियों को भी आराम मिल जाता है।
1: जी बिल्कुल, और एक और संदेश ये कह रहा है कि जो बच्चे देखते हैं जंक फूड बस उसे देखते ही मचल जाते हैं, और ये है कि इनके लिए बहुत नुकसानदायक है सेहत के लिए, इनमें जो मसाले केमिकल का प्रयोग करते हैं बनाने वाले वो स्वास्थ्य का कतई ख्याल नहीं रखते, उनका उद्देश्य अधिक से अधिक बिक्री पर जोर देना होता है। चटपटी मसालेदार चीजें बड़े आदमियों की तरह बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनका पाचन तंत्र इतना मजबूत नहीं होता, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इन्हें अपने बच्चों को इनसे दूर रखें।
0: वहीं एक साथी कहते हैं कि आजकल ये बहुत स्वाभाविक हो गया है, रंग बिरंगी पैकिंग, स्वाद और विज्ञापन उन्हें जल्दी आकर्षण करते हैं, कभी कभार पसंद की चीज खाना गलत नहीं है, लेकिन अगर यही रोज की आदत बन जाए तो पौष्टिक भोजन से दूरी बढ़ सकती है। अब तो जंक फूड 10 मिनट में घर पर आ जाता है, वही सुविधा हो गई है, इसलिए उस सुविधा का हमें दुरुपयोग नहीं करना है कि हाँ भाई कभी बीमार है या कभी जन्मदिन है या फिर कभी कोई खास अवसर है, 2-3 महीने में 4 महीने में एक आध बार ठीक है, पर अगर रोज रोज वही हम खाने लग गए तो उसकी आदत भी बन जाएगी
1: और हाँ
0: और बीमारियां भी करीब आ जाएगी।
1: बिल्कुल।

0: सही कहा। और एक हम गर्मियों की छुट्टियों में जब सारी बहनें मिलती हैं, तो एक हमारी सिस्टर ने बताया, कजिन सिस्टर ने, कि हम अपने बच्चों को बिठा लेते हैं और उनको बोलते हैं कि पूरे हफ्ते भर के में आप क्या खाना चाहते हो बताओ, एक दिन सिर्फ आपको मिलेगा, वो भी क्योंकि छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, एक दिन बाजार का, बाकी सब चीजें घर में बनेंगी और आप भी हमारे साथ मदद करेंगे। तब उन बच्चों को बहुत मजा आने लगा और अब वो बच्चे कहते हैं कि मम्मी आप हमें घर पर ही हर चीज बना के खिलाइए।
1: कितना सुंदर उदाहरण है। चलिए अब गीत सुन लेते हैं।
0: चलिए।

0: भाई दिल किसी पे भी आए, ये हानिकारक पदार्थों पे ना आए बस, है ना।
1: मिष्टी दोई पे आ जाए तो बात होगी।
0: हाँ ये बिल्कुल सही है।
1: एक हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, सामग्री है 1 लीटर। गाढ़ा कर ले एक अलग पैन में, चीनी को पिघलाकर कैरेमल बना ले। कैरेमल को गुनगुने दूध में अच्छी तरह मिला ले। दूध के मिश्रण को हल्का ठंडा होने दे। अब इसमें गाढ़ा दही मिलाकर अच्छी तरह से फेंट ले। इस मिश्रण को मिट्टी के बर्तन कूलर में डाले और बर्तन को ढककर 7 से 8 घंटे तक रात भर के लिए किसी गर्म जगह पर जमने के लिए रख दे। जमने के बाद इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा कर ले और फिर सर्व करे मिष्टी दोई।
0: तो भाई देखियो सखियो, हमारे सोनाली ने तो मीठा आपको पहले बता दिया, लेकिन साथ में क्या खास व्यंजन बनेगा, तो वो बनेगा आलू और दम, यानी कि दम आलू फेमसली उसे कहते हैं। छोटे छोटे आलू लेने होते हैं इसमें, जो दम आलू के लिए जाते हैं। आप ले लीजिए आधा किलो यानी 500 ग्राम। प्याज ले लीजिए 2 बारीक कटे हुए, टमाटर 2 बारीक कटे हुए, दही आधा कप, लहसुन अदरक का पेस्ट आपके हिसाब से ले लीजिए, तेल 3 बड़े चम्मच, जीरा आधा चम्मच, हल्दी छोटी आधी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आपके हिसाब से, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, गरम मसाला जैसे आपके घर में चलता है वैसे लीजिए, नमक भी आप अब जैसे आपके घर में डाला जाता है वैसा, और हरा धनिया सजाने के लिए। तो अब आलू उबाल करके छील लें, उनमें हल्के छेद छेद छोटे छोटे से कर दीजिए। कढ़ाई में तेल गर्म करके आलू को हल्का सुनहरा होने तक तल लें और निकाल लें। उसी कढ़ाई में जीरा डालें, फिर प्याज डालकर सुनहरा भुने, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ और सेकेंड के लिए भुने, फिर अब टमाटर हल्दी लाल मिर्च धनिया पाउडर डालकर मसाले को तब तक भुने जब तक तेल मसालों से अलग ना हो जाए। गैस धीमी करके फेटा हुआ दही डालें और लगातार चलाते हुए पकाते रहिए। अब तेल तले हुए जो आलू आपने रखे थे अलग से, नमक और लगभग 1 कप पानी उसमें डालना है। ढककर इसको आप धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकाएं ताकि आलू में मसाले खूब अच्छी तरह से घुल जाए और मिक्स हो जाए। आखिर में आप गरम मसाला डालिए।

0: हरा धनिया डालकर थोड़ा सा और पकाइए।
1: और इसके साथ में लूची यानी बंगाल की बेहद लोकप्रिय पूरी है, जो सामान्य पूरियों से थोड़ी अलग होती है। आटे के बजाय मैदे से बनाई जाती है। इसमें मोयन के लिए थोड़ा सा घी या तेल और हल्की सी चीनी मिलाई जाती है और इसका रंग सफ़ेद और बनावट बाहर से हल्की खस्ता और अंदर से बेहद नरम होती है। और आलू और दम और ये लूची और साथ में मिष्टी दोई हो तो क्या कहने।

0: हमारे बहुत सारे साथियों ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं दीपा. एक साथी कहते हैं कि भाई है अपना दिल तो आवारा, बिल्कुल पहले अपने दिल पर मुंह पर कंट्रोल होगा जंक फूड के प्रति, तभी बच्चों को भी इसके लिए मना कर सकते हैं.
1: बिल्कुल सही कहा. और एक संदेश आया है कि बंगाल के व्यंजन में पूरी और दम आलू की बात ये हो रही है आज, लेकिन ये बिहार का भी लोकप्रिय व्यंजन है. जी हाँ बिल्कुल है. और जब भी कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है ना तो खीर पूरी तो बनती ही है, साथ में दम आलू भी बनता है, लेकिन आजकल कहीं कहीं जगह पर इस पनीर की सब्जी ने जगह ले ली है.
0: और एक साथी ने लिखा है, एक सखी ने, कि लूची व्यंजन पहली बार सुन रही हूँ, तो इनके घर में अब लूची बनने वाली है और हमारे घर में भी बनेगी. और हम श्रोताओं को दिल से धन्यवाद कहेंगे कि आपके कमेंट्स के कारण, आपके इतने सुंदर सुंदर संदेश के कारण कार्यक्रम में चार चांद लग गए.
1: बिल्कुल सही.
0: और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है. आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार.
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक.

0: दोस्तों नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षदा राज्याध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षदा राज्याध्यक्ष, जो एक जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में
2: और मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू।
1: डॉक्टर, ये जो फिजियोथेरेपिस्ट है, इसकी जरूरत आजकल लोगों को बहुत पड़ती है। जब किसी को टेनिस एल्बो हो जाती है, किसी की गर्दन टेढ़ी हो जाती है, शोल्डर में प्रॉब्लम हो जाती है, पर फिजियोथेरेपिस्ट का काम कितना गंभीर है, सबसे पहले तो ये बताइए।
2: सो फिजियोथेरेपिस्ट का काम गंभीर नहीं बोलूंगी मैं, बट जरूरी है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसे बन गई है कि इसकी ज़रूरत पड़ती है।
1: जी जी।
2: अगर हम सोचें कि हम कितना टाइम बैठे रहते हैं एक जगह पे, काम भी ऐसे हो गए हैं कि लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम करना
1: सारा सारा दिन बैठे,
2: सारा दिन 8 घंटा, समटाइम्स 4 या 5 घंटा एक साथ बैठे हैं लगातार, तो हमारा बॉडी का टेंडेंसी है कि शोल्डर्स क्रंच हो जाते हैं, हेड फॉरवर्ड आ जाता है, तो गर्दन की प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी ये जो लोग हैं उनको एक्चुअली लाइफस्टाइल डे टू डे में कोई एक्सरसाइज मिलती ही नहीं है, तो एक्सरसाइज एक्चुअली ये आर्टिफिशियल हो जाती है, मतलब करनी पड़ती है। तो जब भी हम करते हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज के लिए, तो कभी कभी चॉइस भी गलत करते हैं या बहुत ज्यादा टाइम करते हैं। अगर टेनिस एल्बो टेनिस से रिलेटेड नहीं है, कोई भी चीज़ अगर हम बहुत ज़्यादा करें या बहुत हैवी कुछ उठाएं और हमको आदत नहीं है उस चीज़ की और वो हम बार बार करें, या तो समझो अगर टेनिस ही खेल रहे हैं तो शॉट परफेक्ट करने के लिए बार बार वही शॉट मारते रहें, तो तभी होता है ये। तो अभी बिकॉज साइंस हैज गॉन अहेड एंड रिसर्च ने दिखाया है कि क्या करना चाहिए, तो इसके लिए ये सब चीज़ों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट आर इसेंशियल।
1: बिल्कुल।
2: जब भी लाइफस्टाइल ही ऐसी थी जहाँ बहुत सारी एक्टिविटी ज़रूरी थी लाइफस्टाइल के लिए, तभी ये आर्टिफिशियल एक्सरसाइज या कुछ ऐसा नहीं था। और अभी स्पोर्ट्स में भी इतना पावर के साथ लोग खेलते हैं कि उनके लिए एक्सरसाइज करना, वो चीज़ मेंटेन करने के लिए, पावर बिल्ड करने के लिए जो एक्सरसाइज ज़रूरी है, उससे भी कभी कभी पेन बढ़ता है। तो इस चीज़ों के लिए हमारी ज़रूरत पड़ती है।
1: बिल्कुल। और एक और एरिया है जहाँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और वो है स्पोर्ट्स, जिसकी दिशा में आपका बहुत सारा काम है।
2: हाँ,
1: इस बारे में बताइए।
2: स्पोर्ट्स मतलब कि फिज़िकल होता है और स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनिंग भी ज़रूरी होती है। स्पोर्ट्स में एक्टिविटी ऐसी होती है कि वो बहुत अपने, मतलब यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट। इसके लिए ज़रूरी है कि उसका प्रेपरेशन भी ऐसा हो कि यू आर एट योर फिज़िकल बेस्ट। फिज़िकल ट्रेनिंग भी सख्त होती है, प्रैक्टिस ट्रेनिंग भी सख्त होती है, और फिर जब भी मैच में जाते हैं तो यू आर कॉम्पीटिंग विथ योर राइवल हु इज़ ऑल्सो बेस्ट।

0: है या रोटेटर कफ जो शोल्डर की है या कुछ भी, अगर टेनिस एल्बो की भी हो, उसका रिकवरी पीरियड बिटवीन 3 months टू 9 to 12 months बाय द टाइम यू कम बैक.
1: ये तो
0: वो
1: पूरा साल हो गया. TL मतलब क्या होता है?
0: इट इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. ये नी वाली लिगामेंट है, बहुत फेमस है, बहुत एथलीट्स को होती है,
2: अखबारों में हम पढ़ते हैं.
0: हाँ, स्पेशली फुटबॉल या ऐसे जो है जहां बैलेंस और रोटेशन होता है को ये होती है इंजरी. 9 महीने लगते हैं, इट्स लाइक गिविंग बर्थ, जेस्टेशन पीरियड उतना तो लगता है. तो वो पूरा 9 महीना हमारे अंडर होता है ट्रीटमेंट, और एंड वी कॉल इट ग्रेडेड. तो वो स्टार्ट होता है जैसे हम ABCD लिखते हैं वैसे, बहुत बेसिक से चालू होता है और फिर हर 3-3 हफ्ते के बाद या 6 हफ्ते के बाद इंक्रीमेंट होता है. और इस तरह से पूरा 9 महीना चला जाता है. बाय द 7th month दे कैन गो बैक टू फील्ड एंड दे कैन स्टार्ट विथ फील्ड प्रैक्टिस एंड ऑल दैट, बट फिर भी टीम में आने के लिए 9 महीना लगता है.
2: बताइए ये कितनी महत्वपूर्ण
0: तो स्पोर्ट्समैन को बहुत ही जरूरत है फिजियोथेरेपिस्ट विद देम अगर अफोर्ड होता है वो टीम के लिए. अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में सब लेवल पे ये नहीं होता है क्योंकि टीम्स के पास उतने पैसे ही नहीं होते हैं. या मेनी थेरेपिस्ट डू गो फ्री ऑफ चार्ज बट फिर वो क्वालिटी नहीं मिलती है.
2: बिल्कुल आपने सही कहा. आम जीवन में जब फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है तभी हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं. आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं तो एक आपको हो सकता है कि अजीब सा सवाल लगे, पर क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो सावधानियां बरतें तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े?
0: जरूर है, जरूर है, पर हम ऐसे हैं सब, आई मीन इवन मी, कि जब तक एकदम जरूरत नहीं हो हम उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते कि कुछ प्रॉब्लम है.
2: यानी जब आग लगती है तभी हम,
0: तभी हाँ, जब ही थोड़ा सा कुछ पता लगता है तभी कोई नहीं उस पे केयर करता है. मतलब फर्स्ट साइन इज पेन.
2: जी,
0: पेन ऐसी एक इंडिकेशन है बॉडी की, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कि वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है. कभी कभी पेन थोड़े टाइम के लिए आता है, मतलब एक जब भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तभी पेन आता है और इमीडिएटली जाता है. उसको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वो पेन कहाँ है, क्या वो जॉइंट में है, कितना है, एक्टिविटी के बाद चला जा रहा है. पर आप अगर वो एक्टिविटी वापस करो, समझो आप स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं, तो अगर एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, एक 10 steps आप चले ऊपर, घुटने में पेन हो तो वो नॉर्मल नहीं है. अगर इमीडिएटली जाए तो ठीक है, एक दिन आप इग्नोर कर सकते हो. अगर 2-3 दिन लगातार आपको घुटने में पेन होता है 10 सीढ़ियां चलने में, तो आपको समझना चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है, मे बी इट इज़ रॉन्ग. मैं एक स्टोरी बताती हूँ आपको. एक आदमी आया था शोल्डर इंजरी के साथ, तो मैंने पूछा क्या हुआ आपको, तो बोलता है कि एक हफ्ते पहले मैं मेट्रो में जा रहा था तो ऊपर पकड़ा हुआ था हाथ, तो थोड़ा जर्क लग गया, उसी टाइम समझा कि कुछ गलत है, पेन हो रहा है, तो मैंने एक हफ्ते के लिए नहीं किया, वो ऊपर नहीं लेके गया हाथ और सब ठीक हो गया, मेरा पेन चला गया. तो मैंने बोला तो फिर आप इधर क्यों हो, पेन तो चला गया. तो बोलता है नहीं, कल मैंने फिर से वही किया, मुझे लगा कि अगर मैंने नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने वही किया और फिर से पेन हो गया, तो मैं आपके पास आया हूँ. तो ऐसा है कि हम सोचते हैं कि अगर हमने एक एक्टिविटी छोड़ दी तो वो पेन आएगा वापस या कुछ ठीक नहीं रहेगा. तो ये जो है बार बार पेन आना जाना, हम उसको टाइम देते हैं, जब तक हमें नहीं लगता ये सीरियस है तो नहीं करते. देखो जो ओपन इंजरी होती है, अगर आपके हाथ में कोई कट आ जाए तो आप उसकी केयर लोगे, उसको ढक के रखोगे, ये देखोगे कि वो टच ना हो किधर, या आप उसको स्क्रैच नहीं करोगे, उसको केयर लोगे जब तक कि उसका कवरिंग ना आ जाए, वो भी गिर जाए, बहुत 15 दिन उसकी केयर लोगे. पर जो इनविजिबल इंजरीज होती है, जो अंदर होती है, उनको हम इग्नोर करते, हमें लगता है कि हमने अगर वो एक्टिविटी नहीं की तो ये अच्छा नहीं होगा. तो हम करते रहते हैं और उस वजह से वो बढ़ती है. वो एक है कि आपको रेस्ट उसी टाइम लेना चाहिए जब भी है, और अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग हैं जो केयर जो हम ले सकते हैं उसे बचाने के लिए. अगर आप बहुत स्पेसिफिक पूछोगे तो मैं बोलूंगी कि एक कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी.
2: जी,
0: अगर उस बारे में बात करनी है तो वो मैं बता सकती हूँ.

0: उसका केयर कैसा लेना है।
1: डॉक्टर साहब यहाँ ये बात करेंगे लेकिन इस गाने की बात करेंगे तो यहाँ इस प्रोग्राम का पहला गाना मुझे लगता है कि बजाते हैं और वो गाना है राही तू रुक नहीं जाना, मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छांव में। ये गाना इसलिए सुनते हैं क्योंकि जब भी कोई इंजरी होती है तो व्यक्ति रुक जाता है, अटक जाता है, उसके काम रुक जाते हैं, तो ये गाना सुनते हैं फिर आगे की बातें करते हैं।

0: क्योंकि ये गाना सुना है हेमंत कुमार की बड़ी मीठी सी आवाज में, और ये गाना ये कहता है कि रुक मत जाना। लेकिन जब समस्याएं होती हैं, शारीरिक समस्याएं, तो इंसान को रुकना ही पड़ता है। आप कुछ बताने वाली थी।
1: मुझे बोलना है कि ये अभी सब दुनिया के 50-60% लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी
0: जी
1: ये होता है, और फिर उसके लिए नी रिप्लेसमेंट भी होता है, बहुत कॉमन हो गया है।
0: महिलाओं में ज्यादा होता है?
1: महिलाओं में थोड़ा ज्यादा होता है, यस, उसके भी कारण हैं। बट ये एक्चुअली मैं प्रिवेंटेबल टोटली नहीं बोलूँगी, बट डिले तो ज़रूर हो सकता है, और अगर अर्ली केयर ले तो इसको शायद प्रिवेंट भी हो सकता है। मेनली ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो इधर डिसयूज़ के वजह से होता है, मतलब हम जॉइंट ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बहुत आराम की लाइफस्टाइल है, कुछ ज़्यादा करना ही नहीं पड़ता है, वो एक है। दूसरा ये है कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या तो बहुत सालों के लिए कुछ नहीं करके फिर इमीडिएटली एक्सरसाइज या कुछ बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। अभी देखो, मैराथन भी अगर करना है तो फुल मैराथन करना है या हाफ मैराथन करना है, उसके लिए ट्रेनिंग ज़्यादा करनी है, ये सब होता है, इसलिए नी पेन सेटल ही नहीं होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड बोला जाता है, बट उसका डाइट से बहुत ज़्यादा संबंध है। ब्लड शुगर अगर बढ़े और बढ़ी रहे, सो डायबिटीज़ बेसिकली विल गिव यू अ कॉन्स्टेंट इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी विच विल अलाउ द जॉइंट टू डीजेनरेट, मतलब वो उसकी वेयर एंड टेयर हो सकता है। अर्ली साइंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली ये जो वाटी होती है जो घुटने के आगे होती है,
0: कटोरी जैसा,
1: कटोरी, वो सबसे पहले उधर पेन होता है यूजुअली लोगों को। हमारे फ्रंट ऑफ द लेग बड़ा मसल है क्वाड्रिसेप्स करके, तो वो क्वाड्रिसेप्स नॉर्मल फंक्शन के लिए, मतलब ये जो कटोरी है सामने, पटेला जो हम बोलते हैं उसको, वो उसका स्मूथ फंक्शनिंग या स्मूथ मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम उसको थोड़ा सा मसाज करें या क्वाड्रिसेप्स को रिलैक्स करें, उसको स्ट्रेच करें, काफ मसल जो पीछे होता है लोअर लेग के पीछे, काफ मसल, उसको अगर हम स्ट्रेच करें रोज, तो सो क्वाड्रिसेप्स एंड पीछे का काफ मसल, ये दोनों अगर हम अच्छे से स्ट्रेच करें और उनको अगर हम लेंथ में अच्छा रखें, अगर आपको फ्लैट फुट है तो उसके लिए जब भी आप एक्सरसाइज करते हो या लॉन्ग वॉक्स करते हो, तो उसके लिए अगर आप अच्छे आर्च सपोर्ट वाले शूज वेयर करें, और वॉकिंग अगर आपको करना है तो आप थोड़ा उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। अभी ऐसा बोला जाता है कि वजन ज्यादा होने के वजह से घुटने पे दबाव आता है, पर वो ही एक कॉज नहीं है। फैट जो है बॉडी में वो भी अभी एक मेटाबॉलिक एंडोक्राइन ऑर्गन के जैसा फंक्शन करता है, तो उसके वजह से कोई ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव हार्मोन्स होते हैं,
0: जो हड्डियों को तबाह करना शुरू करते हैं।
1: तो ये जो फैट बिल्डअप होता है वो भी कम रखना पड़ता है। सो शुगर, सॉल्ट, फैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशनल फैट, बट जो बॉडी में फैट बढ़ता है वो अगर कम रखें, सब मसल्स लेग के स्ट्रेच रखें, एक्सरसाइज रोज का रोज सही मात्रा में करें, नॉट टू मच नॉट टू लेस, और कायम करें, मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे आपका वॉकिंग, जो हमारी बॉडी एक्चुअली एक्सरसाइज के लिए ही बनी है, मूवमेंट के लिए बनी है, हम उसको मूवमेंट बंद कर देते हैं और फिर सडनली जब भी चालू करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अगर ये सब आप करो तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन बी प्रिवेंटेड और इट कैन बी डिलेड। अनफॉर्चुनेटली ये बात है कि जब तक हमें ये सब समझता है तभी ऑलरेडी लेट हो चुका होता है
0: जी।
1: ऑल प्रिवेंशन हैज टू बी स्टार्टेड इन चाइल्डहुड,
0: बिल्कुल
1: बचपन से ही आदतें डालनी चाहिए।
0: आपने ये जो पूरा ब्यौरा बताया, इससे एक बात ये समझ में आई कि रेगुलर सही एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब आप इन तमाम चीजों से बच सकते हैं। ये जो सही एक्सरसाइज वाला मुद्दा है, ये कितना
1: हिप्पोक्रेटस ने बोला था, जो हिप्पोक्रेटस इज द फादर ऑफ मेडिसिन, उन्होंने 400 BC में बोला है कि इफ वी कुड गिव एवरी इंडिविजुअल द करेक्ट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज एंड द करेक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, That would be the safest way to ensure health.
0: कितनी बड़ी बात
1: और ये कितनी पुरानी बात है, और हमारे भी संस्कृति में यही बात है
0: जी।
1: योगा में यही बात है,
0: संपूर्ण स्वास्थ्य की बात है। और उन्होंने क्या कहा कि सही मात्रा में एक्सरसाइज,
1: सही मात्रा
0: है ना, और
1: वही कैच फ्रेज है, नॉट टू लेस नॉट टू मच।
0: जी, और आज आपने जब इस कार्यक्रम में बताया तो मुझे ये उम्मीद है कि लोग जो हैं वो अवेयर होंगे इस बात के लिए कि एक्सरसाइज
1: लाइफ में कभी बंद ही नहीं करनी चाहिए।
0: जी,
1: जो हम चाइल्डहुड में जो थोड़ा रनिंग करते हैं या खेलते हैं वो कायम रखना चाहिए।
0: जी, आपने एक बात कही थी कि महिलाओं में ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये ज्यादा,
1: ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला था, बट पोरोसिस भी,
0: हाँ दोनों चीजें
1: दो अलग हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज वेयर एंड टेयर, जो घिस जाती है जॉइंट्स, और पोरोसिस है जो
0: हड्डियां
1: कमजोर होती हैं, पोरस हो जाती हैं।
0: तो महिलाओं पर अगर फोकस किया जाए तो आपकी क्या राय और सलाह होगी, क्योंकि अमूमन महिलाएं सारे परिवार का ख्याल रखने के चक्कर में खुद पर फोकस सबसे कम रखती आई हैं।
1: ऑस्टियोपोरोसिस एक्चुअली ज्यादा डेंजरस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का तो है आंसर, कर सकते हैं सर्जरी, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत डेंजरस है क्योंकि वो रिवर्स होता है कभी कभी, अभी तो बहुत अच्छे इंजेक्शंस और सब आए हैं जो होता है रिवर्स, बट उसको टाइम लगता है, किसी में होता है किसी में नहीं। मेनली विमेन में क्या होता है, ईस्ट्रोजन जब भी कम हो जाता है मेनोपॉज के टाइम, तो उस वजह से कैल्शियम का
0: डेफिशिएंसी
1: होती है। विटामिन D3 एंड सम अदर मिनरल्स आर देयर, वो अगर नहीं हो तो फिर एब्जॉर्प्शन, बोन में एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का कम हो जाता है। हमारे नॉर्मल फूड में अगर हम केयरफुल नहीं हो तो एक्चुअली उतना कैल्शियम नहीं जाता है।

0: बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होती है. मतलब पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन दे शुड हैव 1500 mg ऑफ कैल्शियम अ डे, वो नहीं होता है. एक्चुअली अगर दही खाएं या ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं ये सब, पर इतना हमारा बैलेंस न्यूट्रिशन अभी नहीं रहा है और इस वजह से भी होता है. दूसरा है कि बोन को ग्रो करने के लिए वो एक तो है ना ये ऑस्टियोपोरोसिस, अगेन आई कॉल इट अ चाइल्डहुड प्रॉब्लम नॉट एडल्टहुड प्रॉब्लम,
1: उसका पता बड़े होने पर लगता है.
0: बट उसका अक्यूमुलेशन पहले 18 साल में ही होता है कैल्शियम, और वो बैंक के जैसा है, जितना भरो उतना बाद में घटा सकते हो आप. पहले भरना चाहिए, तो 18 तक भरना चाहिए, फिर उसको मेंटेन करना चाहिए 30-32 तक, और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा खर्चा कर सकते हैं पर उसको थोड़ा सा रिप्लेनिश भी करना चाहिए. तो अगर मेनोपॉज हो तो अभी हार्मोनल रिप्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है. बोन स्ट्रांग रहने के लिए मसल की बहुत ज़रूरत है. मसल अगर बोन पे पुल नहीं करेगा तो बोन को स्टिमुलेट ही नहीं होगा वो कैल्शियम उठाने के लिए. तो एक्सरसाइज न्यूट्रिशन मतलब कैल्शियम डाइट में, और फिर जो कमतरता है वो सप्लीमेंट से, मेंटेनिंग ऑल अदर मिनरल्स ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट एब्जॉर्प्शन के लिए, और एक्सरसाइज सो मसल्स का पुल रहे बोन्स पे, यही सब है. अगेन वेट मैटर्स, वेट ऑल्सो शुड बी अंडर कंट्रोल, बट मेनली एक्सरसाइज एंड फूड हैबिट्स एंड हार्मोन रिप्लेसमेंट व्हेनेवर रिक्वायर्ड. और अगर अर्ली डायग्नोसिस भी अभी बहुत है, मतलब आप BMD बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट रेगुलरली करो, 2-3 साल में जरूर करो, मेनोपॉज के बाद तो हमेशा करो 2-3 साल में. अगर अर्ली ऑस्टियोपीनिया मतलब एकदम थोड़ी सी पहली वाली कमजोरी अगर दिखे तो फिर बहुत अच्छे मेडिसिन हैं अभी रिवर्स करने के लिए, क्योंकि बेसिकली हमें ये चाहिए कि हम जब एज में बढ़ जाए तो गिर के फ्रैक्चर ना हो. या कभी कभी स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर्स भी होते हैं, अपने आप से ही फ्रैक्चर हो जाता है.
1: शरीर इतना मजबूत रहना चाहिए
0: क्योंकि अभी एज एक्सपेक्टेंसी बहुत है. मोस्ट पीपल आर लिविंग, लंबा जीना चाहिए और स्वस्थ भी जीना चाहिए. सिर्फ लंबा नहीं, अच्छा जीवन चाहिए.
1: बिल्कुल सही है. आगे की बातें करते हैं, यहाँ एक गाना सुनते हैं, तो बताइए कि किस गाने की गुजारिश करना चाहती हैं आप?
0: गुजारिश की गुजारिश करूंगी.
1: क्या बात है, तो चलिए ये गाना सुना जाए. यहाँ पर तेरा जिक्र है,
0: तेरा जिक्र है, करेक्ट.
1: क्या गाना है,
0: बहुत ही सुंदर.

0: देखिए, गाना हमने सुना और ये गाना सुन के मन थोड़ा रिलैक्स हो गया। ये जो जीवन की भागदौड़ है, इस भागदौड़ में हम सामान्य इंसान और स्पोर्ट्समैन अपने शरीर को कितना ज़्यादा ओवरलोड करते हैं, कितना ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं कि उनको फिजियोथेरेपिस्ट की शरण में जाना पड़ता है।
1: बाकी फिर सेम हो गया कि हम बहुत बॉडी को अब्यूज ही करते हैं,
0: जी
1: एक तरफ से उसे बहुत आराम देते हैं, जैसे कि बॉडी हमारा बना है एक्टिविटी के लिए, मूवमेंट इज द नेसेसिटी फॉर लाइफ। एक्चुअली ऐसा है कि हमारा ये जो फिजिकल बॉडी है वो समझो हार्डवेयर है अपना, और उसके पीछे एक फिजियोलॉजी है, मतलब जो यू कैन से ब्यूरोक्रेसी है कि उसको चलाना कैसे है, और उसके ऊपर बैठा है सॉफ्टवेयर विच इज़ आर ब्रेन। तो ये तीनों मिलके बॉडी चलती है पूरे लाइफ, और उसको चलाने के लिए एक तरीका है जो इनबिल्ट है। ये सब बोलते हैं कि बॉडी इज़ अ मशीन, आई मीन ये मशीन से भी बेहतर है, बट ये है ऑल सेड एंड डन समथिंग लाइक अ मशीन। उसको चलाने का एक तरीका है, और उस तरीके का अंडरलाइंग करंट पूरा एक्टिविटी है।
0: बिल्कुल,
1: अगर
0: जिस पर आप सबसे ज्यादा जोर दे रही
1: वो
0: हैं।
1: ही है जो सब चलाता है,
0: जी
1: अगर एक्टिविटी नहीं है तो सब जो हार्मोन सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है या मस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी सब सिस्टम्स, इवन कार्डियक, सब कुछ अलग तरह से चलता है, और उसमें थोड़ी सी खराबियां आती है धीरे धीरे। देयर इज अनदर प्रिंसिपल कि जो बॉडी है अपनी वो एक इक्विलिब्रियम रखती है हमेशा, और जब भी हम एक्स्ट्रा कुछ करते हैं, अगर एक्सरसाइज करते हैं, आपको मालूम है हार्ट रेट बढ़ेगी, थोड़ा स्वेटिंग होगा, बॉडी हीट बढ़ेगी, दैट मीन्स वो इक्विलिब्रियम बिगड़ गया। फिर उसको वापस लाना है, वो होम्योस्टेसिस होता है, मतलब जो नॉर्मल स्टेट है उस पे वापस लाना उसको, वो बॉडी के इनबिल्ट ही है, वो
0: इसीलिए
1: मैकेनिज्म
0: एक्सरसाइज के
1: भी,
0: बाद रिलैक्सेशन।
1: रिलैक्सेशन की जरूरत है, तभी सब चलता है।
0: जी
1: एक ये करना है, एक वो करना है, उसके लिए हॉर्मोन्स की जरूरत होती है। थोड़े हॉर्मोन्स ऐसे हैं जो एक्सरसाइज को अलाउ करते हैं, और थोड़े हॉर्मोन्स ऐसे हैं जो रिजुविनेशन को अलाउ करते हैं, वो वापस लाने का। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है कि आप सही तरह से एक्टिव रहो, सही तरह से रिलैक्स करो, इनफ आराम करो, स्लीप। एंड ये भी हमें याद रखना है कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वो होम्योस्टेसिस एक जगह से हिलते रहता है दूसरी जगह पे।
0: ओके
1: मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा आप वही स्थिति पे वापस आओगे। अगर आप 5 साल एज में बढ़ गए तो आपका होम्योस्टेसिस अलग जगह पे रहेगा।
0: तो वो एक्टिविटी
1: हम
0: चेंज हो
1: हाँ
0: जाएंगी।
1: अभी हम ऐसे हो गया है कि सब सोचते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, एक्चुअली है नहीं, फिजियोलॉजिकली एज इज समथिंग,
0: हाँ
1: उसको थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए, और हमारी एक्टिविटी थोड़ी चेंज करनी चाहिए। एक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट, बट हाउ मच यू डू इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो अगर ये हम सब मेंटेन करें तो हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी फिजियोथेरेपिस्ट की।
0: ये तो
1: अगर
0: बड़ा
1: हम
0: मुश्किल
1: नियम से
0: लगता है।
1: चलें कि क्या खाना है, कितना एक्टिव रहना है और कितना आराम करना है, ये
0: ये बड़ा
1: तीनों
0: मुश्किल लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट की
1: मुश्किल ही
0: जरूरत
1: है।
0: ना पड़े।
1: नहीं मुश्किल ही है, इसीलिए हमारी जरूरत पड़ती है। और
0: जी
1: कोई पूछेगा अगर ये इतना सिंपल है तो फिर आपकी जरूरत क्यों है, तो
0: जी
1: ये बताने के लिए हमारी जरूरत है।
0: क्या बात है,
1: क्योंकि
0: क्या बात है।
1: अदरवाइज ये समझाने के लिए, मुझे तो कंसल्टेशन में आधा टाइम मैं आई थिंक काउंसलिंग ही करती हूँ,
0: जी जी बिल्कुल।
1: बाकी के सेशन में हम लोग जो करना है ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज वो करते हैं, स्पेशली जो कंसल्टेशन सेशन है फर्स्ट वाला,
0: हाँ
1: उसमें तो ऑलमोस्ट फुल सेशन, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन ही होता है।
0: लोग बहुत सारे सवाल लेकर आते
1: तो
0: हैं,
1: एक्चुअली
0: इसीलिए तो हमने
1: जरूरत
0: आपको
1: इसलिए
0: यहाँ
1: है
0: बुलाया।
1: क्योंकि हम नहीं देखभाल कर रहे हैं बॉडी की,
0: जी
1: या तो रेस्ट ही करते रहते हैं, कभी फिर डॉक्टर बोलता है कि ब्लड शुगर बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, अभी एक्सरसाइज करो, तो सीधा जाके मैराथन के लिए एनरोल करते हैं या टेनिस क्लास चालू करते हैं,
0: जो दोनों एक्सट्रीम है।
1: एक्सट्रीम है
0: एज ए
1: ना।
0: फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या क्या करती हैं, लोगों को समझाने के बाद वाली जो प्रोसेस है उसमें कितनी एक्सरसाइज है, कितनी मशीनों की मदद है?
1: मेरा थोड़ा अलग से सिस्टम है मेरे क्लिनिक में, मतलब जो अभी आई थिंक मेनी पीपल आर डूइंग, बट मेरा ग्रेजुएशन ही बहुत पहले, लाइक आई हैव ग्रेजुएट 1989, और तभी तो, लेट मी टेक यू टू हिस्ट्री ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी इंडिया में आई है 100 साल अभी हुए नहीं है, इट इज़ अबाउट 75-76 ईयर्स। सो व्हेन आई ज्वाइंड 84 में मैंने ज्वाइन किया, 89 में मेरा ख़त्म हुआ, तभी फिजियोथेरेपी बहुत नई थी, और ये जो अभी सर्जरीज हैं वो भी तभी नहीं थे। मतलब जो अभी आर्थ्रोस्कोपिक, जैसे मैंने ACL बोला, रोटेटर क्रफ, जो छोटी इंसिजन से सर्जरी होती है, वो 1985 या कुछ से चालू हुई है। मतलब मैं तभी थी कॉलेज में, सर्जरीज उतने तभी नहीं थे। रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, ये भी 1980s में आई है, वो भी एकदम नई नई थी तभी। अभी जो जितनी सर्जरीज होते हैं और जितने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन होता है, मतलब जब भी मैं कॉलेज में थी तभी अगर कोई साइक्लिस्ट रास्ते पे दिखा, मतलब दिखते थे तभी बहुत, तो वो एक्सरसाइज के लिए साइकिलिंग नहीं कर रहा था,
0: वो एक्चुअली
1: जरूरत के लिए कर रहा था। जो अभी बढ़ गया है ये सब, इसके लिए ये सब आए हैं। तो बट मेरा थॉट प्रोसेस तभी से ऐसे ही था कि जो इंजरी और पेन और सब है, और दूसरी साइड है एक्सरसाइज और सब, तो उसके बीच वाला ब्रिज हम लोग बन सकते हैं। तो उसी तरह से मेरा क्लिनिक चलता है। पहले पेन मैनेजमेंट होता है। अगर आप आए, समझो आपको पीठ में पेन है, तो फर्स्ट स्टार्ट होता है पेन मैनेजमेंट से। मेरे ख्याल से पेन बहुत जल्दी मैनेज हो जाना चाहिए
0: जी।
1: अगर वो अक्यूट पेन है, अभी आया है, तो उसको मैनेज कर सकते हैं बहुत जल्दी से। अगर पेन मैनेज जब भी होता है, तो पहले 2-3 दिनों के अंदर ही हम थोड़े एक्सरसाइज चालू करते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। और जैसे समझो 1 घंटे का सेशन है, तो पहले मे बी 45 मिनट्स उसमें से पेन मैनेजमेंट में जाएंगे, फिर धीरे धीरे वो कम होके पेन का, समझो लास्ट 10 मिनट ही पेन मैनेजमेंट करेंगे, ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि एक्सरसाइज, वी कॉल इट रिहैबिलिटेशन, मतलब मेकिंग दैट पर्सन फंक्शनल अगेन, जो भी फंक्शन
0: जी।
1: और वो जो हमारे एक्सरसाइज है वो ऐसे डिज़ाइन होते हैं, एज अप्रोप्रिएट, फंक्शन अप्रोप्रिएट, मतलब आप कुर्सी में बैठ के कंप्यूटर का काम करने वाले हो, या आप कोई मेडिकल रेप, या आप कोई सेल्स के डिपार्टमेंट हो जहां आपको ज़्यादा चलना पड़ता है, या आप हाउसवाइफ हो जहां आप क्लीनिंग करोगे या कुछ भी करोगे, या आप स्पोर्ट्समैन हो, या इवन वीकेंड स्पोर्ट्समैन हो, अगर आप ऑफिस में काम करते हो बट वीकेंड में आप स्पोर्ट्स खेलते हो, तो आपको उस तरह से एक्सरसाइज कराना चाहिए जो एज अप्रोप्रिएट, फंक्शन अप्रोप्रिएट एंड सूटिंग टू योर नीड्स, सो इंडिविजुअलाइज्ड होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये प्रोसेस होती है। अगर सर्जिकल है, पोस्ट सर्जिकल है, तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, फिर वो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है
0: जी। तो मरीजों को ये बताइए कि कितना ज़्यादा मायने रखती है फिजियोथेरेपी, क्योंकि एक चलन जो अमूमन हमारे आसपास देखा जाता है कि जब तक आराम मिला, तकलीफ थोड़ी कम हुई, तो छुट्टी मारो, कौन जाएगा फिजियोथेरेपिस्ट के पास।
1: बट अगर मैंने देखा है कि आप जितना बात करते हो ना, जितना समझाते हो यार, एक्सप्लेन करते हो पेशेंट को, उतना उनका इंटरेस्ट बढ़ता है
0: जी।
1: ज़रूरी तो है, जैसे मैं बोलती हूँ पेन मैनेज हो जाता है, पेन के लिए इतनी तकलीफ नहीं करनी पड़ती है, एंड लाइक यू करेक्टली सेड, थोड़े दिनों में पेन चला जाता है, फिजियोथेरेपी का वर्क इज़ ओवर एक्चुअली। बट जो प्रिवेंटिव है कि नेक्स्ट एपिसोड नहीं होना चाहिए, या ये बार बार नहीं होना चाहिए, या आपको समझना चाहिए कि आपकी बॉडी क्या कर सकती है, क्या नहीं करना चाहिए, एंड अगेन लाइक आई सेड, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज करो फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग, जो बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है वो मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट। तो वो कैसे करना है वो सीखने के लिए हम ज़्यादा काम करते हैं, सिखाने के लिए, एंड टू क्रिएट इंटरेस्ट इन यू फॉर एक्सरसाइज, उसके लिए बात करना बहुत ज़रूरी है। उसका जितना आप इम्पोर्टेंस समझाओगे,

0: पेशेंट का इंटरेस्ट उतना ही बढ़ेगा और उनके लैंग्वेज में उन्हें जैसे समझे वैसे एक्सप्लेन करना चाहिए।
1: जी
0: जैसे मैंने बोला इंजरी कहाँ है, आपको कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, क्यों करना है प्रोटेक्ट। सो आई कॉल इट एम्पावरिंग द पेशेंट। अगर आप एम्पावर करोगे तो वो खुद से जान जाएंगे। और मेरा अदर थिंग इज कि उनको एम्पावर इस तरह से करो कि वो अपने आप से एक्सरसाइज कर सके। हमारे पास आने की जरूरत नहीं है ज्यादा,
1: जी जी,
0: बट ऑफ कोर्स लर्निंग प्रोसेस के लिए 1 महीना या 2 महीना जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज ऐसी चीज है कि आपने अगर थोड़े अलग तरह से की तो वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है। सो वो सिखाने में थोड़ा टाइम जाता है, पर उसके बाद बार बार आने की जरूरत नहीं है।
1: इसका मतलब ये है कि अगर आपको जरूरत है फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की तो पूरी शिद्दत के साथ जाएं और जो कुछ सिखाया जा रहा है उसको सीख के प्रिस्क्राइब टाइम तक पूरा करें
0: और करते रहे उसके बाद। ये लाइफ लॉन्ग है। जैसे मैं बोलती हूँ डाइट एंड एक्सरसाइज, उसको टाइम मत रखो। ऐसा मत बोलो कि मैं 2 महीने डाइट पे हूँ, मैं 2 महीने एक्सरसाइज के लिए फिजियोथेरेपी के लिए जाती हूँ या जाता हूँ। लाइफ लॉन्ग है, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, बट एक्सरसाइज लाइफ लॉन्ग है।
1: जी, अब हम उन बातों पर आते हैं जहां आपने कुछ बहुत ही मशहूर हस्तियों का इलाज किया है बीमारियों से, चोटों से, तो उससे जुड़े कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए।
0: मैंने फिजियोथेरेपी क्यों ज्वाइन किया, तभी तो कुछ उसका यही नहीं था, मतलब नोबडी न्यू कि फिजियोथेरेपी क्या है।
1: जी,
0: मुझे मेडिसिन करना था MBBS और उसके बाद MD या MS नहीं मिला, 1-2 मार्क्स से छूट गया।
1: अरे रे,
0: तो फिर मैं फिजियोथेरेपी में आई और मुझे तभी कुछ मालूम नहीं था क्या है ये। जैसे मैंने बोला मैंने ज्वाइन किया KEM हॉस्पिटल, दैट वाज द फर्स्ट हॉस्पिटल इन मुंबई विच ऑफर्ड, एंड इन 84 जैसे मैंने अभी बोला मैंने ये डिसाइड किया 1-2 साल के बाद समझने के बाद कि ये क्या है, मैंने ये डिसाइड किया कि ये जो गैप है, तभी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी करके कुछ नहीं था, स्पोर्ट्स साइंस ही नहीं था 84-85 में, कुछ नहीं था। फिर भी मैंने ऐसे सोचा कि ये जो सब्जेक्ट्स है वो इतने अलाइंड हैं इस चीज़ के लिए कि जो लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं या स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं तो उन्हें हम ब्रिज बन सकते हैं उनके पेन और इंजरी और परफॉर्मेंस के बीच में। तो उस तरह से मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, क्योंकि था नहीं एक कोर्स, तो मैंने योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया, टेपिंग, स्पोर्ट्स टेपिंग, बहुत सारे कोर्सेज किए मैंने, एक्चुअली एक्सरसाइज के बहुत सारे किए, एडवांस्ड वेट ट्रेनिंग, कोर स्टेबिलिटी ऑन रीबॉक बॉल, एंड बहुत सारे किए। तो मैं प्रिपेयर्ड थी कि कभी ऐसी ज़रूरत पड़े, और मैंने मेरा क्लिनिक भी वैसे ही डिज़ाइन किया कि ज़्यादा एक्सरसाइज बेस्ड एंड लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन। और आई डोंट नो हाउ लक के वजह से मेरे आसपास के लोगों के और ऑफ कोर्स मेरे काम के वजह से भी थोड़े लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली एक्टर्स जिनको ऐसे बॉडी बनानी है किसी रोल के लिए और जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो अचीव करने के लिए, वो लोग और स्पोर्ट्समैन थोड़े थोड़े मेरे पास आने लगे। मैं ये बोलना चाहूँगी कि रेसलर्स जो बहुत पुअर रेसलर्स हैं उनके साथ मैंने बहुत पहले से काम किया है।
1: अरे गजब।
0: दंगल बहुत बाद में आई, उसके मच बिफोर दैट मैं 2002 से लोकल महाराष्ट्र के और नेशनल लेवल रेसलर्स के साथ मैंने फ्री में काम किया है, मेरे क्लिनिक में आते थे। एक्चुअली नाम आपने पूछा है, मैं नाम थोड़े बड़े वाले बोल सकती हूँ, बट ये लोग जो हैं उनके साथ मैंने इतना काम किया है। और इवन क्रिकेटर्स जो लोअर लेवल के अभी भी आते हैं, अभी भी एक था जो रोटेटर कफ इंजरी था उसको, ही इज़ ओनली 20-21, अभी कोई टीम में नहीं है, जिसे एक ज़रूरत है उनको मैं देती हूँ ट्रीटमेंट। तो बड़े नाम बोलो तो एक तो सचिन तेंदुलकर,
1: बाप रे,
0: हाँ, आई हैव बीन ट्रीटिंग हिम फ्रॉम 2002 to 2012, मतलब क्वाइट अ लॉट, 10 इयर्स। जब भी बिकॉज स्पोर्ट्समैन का ये है कि वो टीम के साथ ट्रैवल करते हैं तो उनका थेरेपिस्ट उधर होता है,
1: जी
0: मैं कभी उसमें नहीं थी, बट जब भी इंजोर होते हैं तो घर पे होते हैं तो फिर उन्हें कोई और लगता है, और अगर एक पे भरोसा आ जाए तो फिर वही होता है। तो अनऑफिशियली आई वॉज नॉट विद BCCI, बट BCCI ऑलवेज पेड मी फॉर सचिन्स ट्रीटमेंट्स। आई हैव ट्रीटेड सचिन फ्रॉम बैक इंजुरीज, मेनली द टेनिस एल्बो,
1: जो बहुत ही मशहूर
0: टेनिस एल्बो एंड शोल्डर, या सो या ही इज बीन अ प्लेजर। और इतना हम्बल कोई वो लेवल पे हो ही नहीं सकता है,
1: क्या
0: हो ही नहीं सकता है, कोई भी नहीं। मतलब एक बार जब भी मैं बहुत, मतलब आई थिंक नाउ आई एम प्रिटी एडवांस्ड इन माई फील्ड, बट एट दैट टाइम आई वॉज अ नोबडी, एंड ही वॉज एट द

0: तभी भी एक बार मुझे याद है, मैं उसके घर में रुकी हुई थी, कोई अपॉइंटमेंट था उसके साथ, और उसका मुझे मैसेज आया कि मैं 5 मिनट लेट होने वाला हूँ, आई एम वेरी सॉरी, और एक्चुअली इट वुडन्ट हैव मैटर्ड टू मी, बट वो इतना टाइम का पंक्चुअल दैट इवन ही थॉट कि आई शुड मैसेज.
1: वाह,
0: बहुत ही हम्बल आदमी है, एंड प्रूफ इज दैट ही प्लेड फॉर दोज 10 ईयर्स दैट आई वाज ट्रेनिंग, ही प्लेड वेरी वेल.
1: क्या बात है.
0: नो, मुझे ये बोलना था कि ये प्रोफेशन मैंने चुना नॉट बाय चॉइस बट बाय चांस, बट इसमें से प्लेजर मुझे बहुत मिला है.
1: जी
0: ऋतिक रोशन, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, शिल्पा शेट्टी, बहुत बहुत नाम है, बड़े वाले भी और छोटे विक्ट्रीज भी बहुत हैं
1: क्या बात है. तो
0: जिनको.
1: जब बड़े स्टार्स को ट्रीट करती हैं तो कैसा, वो क्या
0: मुझे
1: फीलिंग होती
0: कुछ
1: है.
0: अलग नहीं लगता है, नहीं सच नहीं लगता है,
1: जी जी
0: इट्स अ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स अ सीन दैट आई रियली डोंट फील, बट इट फील्स गुड. कभी शिल्पा शेट्टी डांस करके बताएं कि मुझे ये मूव करना है, इधर दुख रहा है. कभी सचिन तेंदुलकर 10 स्ट्रोक मार के दिखाएं कि ये बैटिंग में इधर दुखता है, ये ऐसा दुखता है. कभी ऋतिक रोशन पुशअप्स करके दिखाएं.
1: कि ये प्रॉब्लम हो रही है.
0: तो अच्छा लगता
1: वाह
0: है.
1: वाह, क्या बात
0: दीज आर
1: है.
0: द पर्क्स,
1: बिल्कुल
0: साइड
1: बिल्कुल,
0: पर्क्स,
1: ऑफ कोर्स ऑफ
0: बट
1: कोर्स.
0: नो, इन रियलिटी नथिंग इज डिफरेंट,
1: जी,
0: एवरीबॉडी
1: बातें
0: इज.
1: चूंकि इन तमाम लोगों की हो रही हैं जो मशहूर लोग हैं जिन्होंने आपसे सलाह ली
0: पर
1: है,
0: मशहूर लोगों से बहुत ज्यादा मैंने रेगुलर
1: नॉर्मल लोगों
0: लोगों से, और मुझे तो
1: की.
0: प्लेजर उधर से ही मिलता है, बिकॉज
1: बिल्कुल,
0: वो
1: मैं समझ
0: उनके
1: सकता
0: प्रॉब्लम्स कोई सॉल्व नहीं कर सकता है, यू नो,
1: जी.
0: लाइक दीज पीपल आई नो, मैंने नहीं किया तो कोई और करता था. मुझे, आई एम एक्चुअली लक्की दैट आई केम इन कॉन्टेक्ट विद देम, बट ऑल दी अदर्स, सो मेनी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ओवर 37-38 ईयर्स, वो ही प्लेजर देता है.
1: क्या बात है. क्योंकि जिक्र हुआ है ऋतिक रोशन और आमिर खान का, तो इन दोनों में से किसका गाना सुनवाया जाए.
0: अभी आमिर खान का सुनाइए.
1: ठीक है, क्योंकि बात दंगल की हो रही है तो
0: दंगल का,
1: दंगल का
0: यस
1: गाना सुनवाते हैं,
0: यस.
1: नैना.

0: डॉक्टर साहब, इतनी सारी बातें स्पोर्ट्स इंजरी की और नॉर्मल इंजरी की हुई, और आपने एक बात पर बहुत जोर दिया कि एक बहुत लंबा समय ऐसा था जब फिजियोथेरेपी पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। आज ऐसा समय है जब फिजियोथेरेपी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गई है, पर फिर भी क्या आपको लगता है कि एक आम इंसान फिजियोथेरेपी को लेके थोड़ा कम सीरियस है? इस तरह की चीजें आपने देखी?
1: मैं ये कहूंगी कि बहुत लोगों को ये एक्सपेंसिव हॉबी लगती है।
0: एक्सपेंसिव हॉबी?
1: क्योंकि पेन इज अ रियल थिंग
0: जी,
1: बट उसके बाद मुंबई जैसे शहर में रह के कम्यूटिंग इज सो डिफिकल्ट, टाइमिंग्स आर डिफिकल्ट, उसमें आना है, रोज आना है या हफ्ते में 3 दिन आना है, फीस भरनी है, ये सब थोड़ा मुश्किल लगता है आम आदमी के लिए, इसलिए बोलूंगी मैं। अदरवाइज मुझे तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जो हमारे पास आते हैं वो क्वाइट अ फ्यू टाइम्स आते ही रहते हैं
0: जी।
1: उनको अगर हाँ महत्व अगर ठीक से समझे तो वो आते हैं, बट फिर भी ये मैं बड़े शहर की बात कर रही हूँ
0: जी,
1: मुंबई की बात कर रही हूँ, मे बी मुंबई, बैंगलोर, कैलकटा, पुणे, ये सब, और इवन मिड लेवल सिटीज, ये सब आई थिंक फिजियोथेरेपी, आई थिंक पीपल डू अंडरस्टैंड, आते हैं, करते हैं, पर छोटे गांवों में और अभी तक नहीं है उतना, आई थिंक उसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं मालूम है लोगों को
0: जी।
1: फिजियोथेरेपिस्ट का पॉपुलेशन भी वो जगहों पे कम होगा
0: जी, तो
1: सब इधर ही बड़े शहरों में भरे पड़े हैं।
0: ऐसे शहरों में जहां लोग हमें सुन रहे हैं, छोटे छोटे शहर, लोगों को छोटी छोटी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो जिनको फिजियोथेरेपी कहा जाता है और जो इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं, एज एन एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या सलाह देना चाहेंगी जो बहुत ही कॉमन लोग हैं, छोटे शहरों के लोग हैं और बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, डॉक्टर ने कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, ये प्रोटोकॉल आपको करना है।
1: मैं उसको सलाह दे कि अगर उनके पास कोई हो उधर तो ही तो फायदा है, बिकॉज नहीं तो, और आप बोल रहे हैं छोटे छोटी चीजें, वो है एक छोटी चीजों की थोड़ी बातें करी अभी, बट बड़ी चीजें भी होती है, लाइक पैरालिसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स
0: जी,
1: हेमिप्लीजिया,
0: बल्कि सर्जरी के बाद भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है।
1: हाँ, बहुत
0: सीरियस मैटर है,
1: बहुत है, अगर टाइमली फिजियोथेरेपी नहीं किया तो फिर वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिफॉर्मिटीज आती हैं पैरों में या हाथों में, तो फिजियोथेरेपी एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और मैं लोगों को कुछ सलाह दे नहीं सकती अगर उनके पास नहीं है फिजियोथेरेपिस्ट, बट अगर है तो सच में लाइफ बदल जाती है, बिकॉज ये जो सर्जरीज हैं वो काफ़ी नहीं है, सर्जरी इज इम्पॉर्टेंट समटाइम्स, बट उसके बाद वाला फिजियोथेरेपी नहीं किया तो फंक्शन नहीं आता है, मतलब जो हमें चाहिए वो एंड रिजल्ट फंक्शन वो ही नहीं आता,
0: इसीलिए इसको रिहैबिलिटेशन कहते हैं।
1: यस, इट इज रिहैबिलिटेशन एंड इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, इट शुड बी ट्राइड कि हर छोटी जगह पे भी फिजियोथेरेपिस्ट हो, और क्योंकि कई चीज़ें छोटी है समझो चल भी जाएंगी नहीं करेंगे तो, बट कई चीज़ें ऐसी हैं कि आपका लाइफ ही बदल जाएगा, अगर नहीं किया तो खराब हो जाएगा, किया तो मच बेटर हो जाएगा
0: जी। बुजुर्गों में फिजियोथेरेपी कितनी डिफिकल्ट होती है?
1: बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत बहुत ज़रूरी है, एज के वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं मेजॉरिटी ऑफ देम आर बिकॉज ऑफ मसल वीकनेस
0: जी।
1: मसल इज प्रोग्राम्ड, जैसे मैंने बोला ब्रेन हॉर्मोन्स ये सब डिसाइड करते हैं कि बॉडी फंक्शनिंग कैसे करेगी, अप टू 30 ईयर्स बॉडी इज ग्रोइंग, मतलब आई विल से टिल 20 इट इज ग्रोइंग, 20 to 40 थोड़ा मेंटेन होता है स्टेटस को, और 40 के पास थोड़ा सा डिटेरियरेशन चालू होता है, ये हमारा सेट प्रोग्राम्ड है, बॉडी प्रोग्राम्ड है इस चीज़ के लिए। मसल लॉस बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब अगर हम इनएक्टिव है तो 30 के बाद ही मसल लॉस चालू हो जाता है, पहले 5-5% पर डेकेड, देन 10-15-20%, 70 or 80 एज के बीच में तो ड्रास्टिकली कम हो जाता है, 20-30% का लॉस होता है, तो वीकनेस बढ़ जाता है, उसके बाद स्टेयर्स अगर आपको चढ़ने हैं तो डिफ़िकल्टी होती है ऊपर चढ़ने में, कुर्सी से कभी उठने में तकलीफ होती है, तो सोशल एक्टिविटी कम हो जाती है, बोन लॉस उसके वजह से होता है, एज रिलेटेड अदर बीमारियां आती है बिकॉज एक्टिविटी कम हो जाती है हार्ट के, तो मसल मेंटेन करने के लिए एक प्रिवेंटिव प्रोग्राम जीरियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है
0: जी।
1: पेन तो होता ही है, पेन मैनेजमेंट के लिए भी लगता है, बट मेनली मसल लॉस

0: द बिगिनिंग ऑफ एवरी प्रॉब्लम ओल्ड पीपल हैव इंक्लूडिंग फॉलिंग एंड हैविंग फ्रैक्चर्स.
1: वो तो बहुत फ्रैक्चर
0: की डेंजर्स ये हैं कि गिर के आपका हेड इंजरी और हिप इंजरी, दीज आर द टू डेंजरस थिंग्स विच कैन हैपन टू ओल्डर पीपल दैट विल मेक देम बेड रिडन और ऑल्सो कैन बी फेटल. सो वो सब मसल पे डिपेंडेंट है क्योंकि बैलेंस और हम जो भी बोलते हैं वो सब मसल से चालू होता है.
1: जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया और मुझे ये लगता है कि बुजुर्गों की इंजरी और उनके पेन मैनेजमेंट और जो आपने कहा कि प्रिवेंटिव जो उपाय हैं वो बहुत ही जरूरी है
0: और वो प्रिवेंशन जल्दी ही चालू होना चाहिए, बट इट्स नेवर टू लेट.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: मैं बोल रही थी हमारे पास बहुत सारे बुजुर्ग आते हैं और हम होम विजिट्स भी उनको प्रोवाइड करते हैं. एक तो 95 ईयर ओल्ड थे जो 80 के एज से हमारे पास एक्सरसाइज कर रहे थे regularly 2 or 3 times a week, used to come to clinic, and 95 he passed away. One day before that also he had requested home visit for exercise.
1: क्या बात है, इतना
0: some people are really. और पंडित जसराज जी आते थे हमारे पास.
1: वाह वाह.
0: हाँ, और हमारे क्लिनिक में गाना गाते थे.
1: क्या बात.
0: ट्रेडमिल पे चलते चलते.
1: क्या क्या बात है, क्या बात है. जिस स्टूडियो में यहाँ हम बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ भी
0: वो भी 10 साल आए हमारे पास जस्ट एक्सरसाइज के लिए. कार्डियक रिहैब, बट ही वेंट ऑन टू एक्सरसाइज.
1: गजब, क्या बात है. चलते चलते एक गाना सुन लिया जाए, उसके बाद आगे की बात करते हैं. आपने चूंकि पंडित जसराज का जिक्र किया है तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार गाना गाया था 1920 नाम की एक फिल्म है, उसमें वादा तुमसे है वादा, वो गाना सुनते हैं थोड़ा सा.
0: यस.

0: डॉक्टर, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें आपने की हैं, चलते चलते एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आम आदमी से आप वो कौन सी बात कहना चाहेंगी जो इस पल सबसे ज्यादा जरूरी है?
1: एक्सरसाइज करते रहो
0: जी,
1: एब्सोल्युटली करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो। जब भी पेन हो
0: जी
1: तो किसी को कंसल्ट करो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली सॉल्विंग द प्रॉब्लम, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और अगर फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत लगे तो ज़रूर जाना चाहिए, बिकॉज एट अ वेरी सिंपल लेवल मैनी मैनी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व।
0: बहुत ज़रूरी सूत्र आपने दिए हैं कि ये तमाम चीज़ें माने तो बहुत सारी
1: एक्सरसाइज एंड डाइट इज, एंड आई ऑलवेज टेल पीपल दैट एक्सरसाइज एक्चुअली मेडिसिन से भी डिफिकल्ट है प्रिस्क्राइब करना, हर एक के लिए इंडिविजुअलाइज होना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन में ना एक आता है, उसके पीछे पर्ची आती है जहाँ पे लिखा रहता है डोसेज, एज रिलेटेड, वेट रिलेटेड, ये वो। एक्सरसाइज में बहुत सारा, हर दिन भी बदलना पड़े तो बदलना चाहिए। अगर आप टायर्ड हो तो नहीं करना चाहिए ज्यादा, थोड़ा हल्का वॉक करो, जिस दिन एनर्जेटिक लगता है उस दिन ज्यादा करो, क्योंकि उसका रिकवरी उस तरह से अच्छा होगा।
0: बिल्कुल,
1: सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडवाइस लेके एक्सरसाइज करो।
0: एडवाइस लेके एक्सरसाइज करो, ये आज के इस प्रोग्राम की बॉटम लाइन है। डॉक्टर हर्षदा, बहुत बहुत शुक्रिया कि विविध भारती के स्टूडियो में आके आपने इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई। आगे फिर आइएगा और फिर हमारे श्रोताओं से मुखातिब होकर जरूरी बातें बताइएगा।
1: I enjoyed, thank you.
0: शुक्रिया।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षदा राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग काजल भदरगे, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।

0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और विप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति के सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को और मजबूत करने के भी निर्देश दिए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उनके हमलों की साजिश को नाकाम किया। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की, जो आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर जिले में रामगढ़ वन क्षेत्र में 2 अज्ञात व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद एक व्यापक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। क्षेत्र में कई स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। यह अभियान संदिग्ध गतिविधियों के क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा उपायों के अंतर्गत ठोस खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम GAASI के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस अनुबंध के अंतर्गत भारतीय नौसेना के लिए 2 MQ-9BC गार्जियन विमान 30 महीने की लीज पर लिए जाएंगे। ये विमान अत्यधिक ऊंचाई पर लंबी अवधि तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। इनका उपयोग खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी के लिए किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसार तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में एक इस्पात निर्माण इकाई में हुए विस्फोट में 3 मजदूर घायल हो गए। ये विस्फोट आज सुबह एक निजी विनिर्माण कंपनी में उत्पादन के दौरान हुआ। विस्फोट के कारण का अभी पता चल नहीं पाया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कल रात एक भीषण सड़क दुर्घटना में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। तूतू खालिनी रोड के पास एक टैंकर और कार की टक्कर में हेड कांस्टेबल प्रवीण मेहता और कांस्टेबल हेमंत कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है और टैंकर चालक से पूछताछ जारी है। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका अभी भारत से 178 रन पीछे है। हॉकी विश्वकप में भारतीय पुरुष टीम आज अपने दूसरे पूल डी मुकाबले में इंग्लैंड का सामना करेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज नई दिल्ली में शुरू हो गई। MR अर्जुन और हरिहरन अमसाकर्णन की भारतीय जोड़ी ने पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा।

अभी आप सुन रहे थे भजन, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:25 हुए हैं। दीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा मंच।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना कार्यक्रम युवा मंच और मैं हूं आपका होस्ट गौरव राय, जिसमें हम नई उड़ान कार्यक्रम लेकर आए हैं और हम मिलवाते हैं आपको ऐसे युवाओं से जो अपने हुनर, सोच और मेहनत से समाज में एक अलग पहचान बना रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे युवा लेखक जो खूबसूरत कविताएं लिखते हैं और साथ ही इतिहास विषय में PhD भी कर रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान शिवा पंचकरण जी का।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद यहाँ आकर। सबसे पहले अपने बारे में श्रोताओं को थोड़ा बताइए।
1: बताने के लिए ऐसा तो कुछ खास है नहीं। विद्यार्थी हूँ, अपने इतिहास, संस्कृति और कविताएं, साहित्य, इन सब के साथ एक गहरा जुड़ाव है, लगाव है, इनसे प्रेम है और इन्हीं के ऊपर जानने की इच्छा रहती है, सीखने की इच्छा रहती है और उससे कुछ निकल कर आता है तो उसको कविता कह देते हैं या कई कई बार उसे कहानी कह देते हैं। बाकी
0: जी
1: कुछ खास ऐसा बताने लायक मुझे लगता है नहीं, क्योंकि अगर कुछ खास बताने लायक होता तो शायद बताना नहीं पड़ता।
0: जी बहुत ही बढ़िया बात है। और आपसे एक ये है कि कविता लिखने की शुरुआत आखिर कब और कैसे हुई?
1: कविता लिखने की शुरुआत कोई ऐसी बहुत प्यारी सी कोई कहानी हो या कोई बड़ी घटना हो जिससे जीवन बदल गया। मुझे लगता है ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं महापुरुषों के जीवन में ही होती हैं। जैसे गांधी जी के जीवन में उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया गया था और फिर वो गांधी जी बने। मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं है, बहुत सरल सा जीवन है। जो मुझे बहुत हल्का सा ध्यान है कि लिखने का शौक शायद बचपन से ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा जब मैं धर्मशाला आया था तो उस और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना, आप कह सकते हैं कि उस और थोड़ा ध्यान देना मैंने ज्यादा शुरू किया था। तो ऐसी कोई एज सच कहानी नहीं है, बस किसी दिन किसी रोज माँ सरस्वती की कृपा हुई होगी और कलम उठी होगी, उससे मैंने कुछ लिखा होगा। पहले कुछ अच्छा लिखा होगा, थोड़ा और उसको निखारने का प्रयास किया होगा, फिर बाद में उसको कविता कहना शुरू कर दिया तो वो कविता हो गई होगी।
0: जी, इतिहास और कविता की बात करें तो दोनों अलग अलग क्षेत्र माने जाते हैं, फिर भी आपने इसे साथ ऐसे रखा, कविता और इतिहास।
1: ये क्षेत्र अलग अलग माने जाते हैं पर ये अलग अलग क्षेत्र हैं नहीं। आज जितना भी इतिहास हम जानते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो किसी समय जो है वो साहित्य, और उसी साहित्य से निकाल कर इतिहास जो है वो बनता है। मैं ऐसा मानता हूं कि इतिहास में भावना जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, क्योंकि आपको न्यूट्रल रहना है। हालांकि इतिहास कभी न्यूट्रल हो नहीं पाता है, लेकिन न्यूट्रल रहने की आप एक कोशिश करते हैं और उस कोशिश में भाव शून्यता जो है इतिहास देखने को मिलती है। और साहित्य जो है वो भावनात्मक प्रक्रिया है, भावनात्मक संसार है, उसमें भावना होती है, प्रेम है, विरह, ये सब कुछ इतिहास में भी होगा लेकिन उसमें भावना कम होगी। लेकिन कविता में ये सारे के सारे भाव जो है उमड़ उमड़ कर बाहर आएंगे। तो ये दोनों अलग ना होकर एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा साहित्य अच्छे इतिहास को जन्म देता है, अच्छे इतिहास को शेप देता है। जितने अच्छे से किसी साहित्यकार ने, किसी लेखक ने उस समाज का विवरण दिया होगा, उस बहुत अच्छे से समाज को समझाया होगा, उतने ही अच्छे से आपको बाद में इतिहास जो है वो देखने को मिलेगा। तो आज जो कवि हैं, कहानीकार हैं, वो कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, जितने अच्छे से आज के समय को वो लिखेंगे, अपनी कलम से जितना अच्छा समाज का चित्रण करेंगे। अब जब समाज का अच्छा चित्रण कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल समाज की अच्छी अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे, लेकिन बुराई को लिखना, समाज की बुराई को लिखना, समाज में जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनको भी बड़ी सुंदरता से लिखना। जितनी सुंदरता से एक साहित्यकार लिखेगा उतना ही अच्छा जो है आगे चलकर इतिहास बनेगा। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करती हैं। तो साहित्य और इतिहास अलग नहीं है, एक है, और शायद इसीलिए मेरी रुचि जो है दोनों में रही है। दूसरा, इतिहास के साथ भी और लिटरेचर के साथ भी संस्कृति का एक बड़ा गहरा जुड़ाव होता है। कवि जो होता है वो आप कह सकते हैं कि कहते हैं समाज का दर्पण होता है, तो वो समाज के बारे में, उस समाज की जानकारी, अपने आसपास की संस्कृति और जो उसका सामाजिक परिवेश है, उस परिवेश से ही उसको लिखने की प्रेरणा आती है, उसको लिखने के लिए आइडियाज आते हैं। तो वो इसीलिए, और सेम इतिहास में भी संस्कृति का बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत इम्पैक्ट करता है इतिहास को। तो ये दोनों चीज़ें जुड़ी होती हैं, तो इस जुड़ाव के कारण मैं दोनों के साथ जुड़ा रहा हूँ और यही आप कह सकते हैं कि इसीलिए साहित्य और इतिहास दोनों में मुझे आनंद आता है। वो
0: जी
1: कहानियाँ ही साहित्य और इतिहास लिखने के लिए प्रेरित करती हैं।
0: जी जी तो शिवाजी, आपकी कविताओं की बात करें तो आपकी कविताओं में सबसे ज्यादा कौन से विषय, किस प्रकार के विषय होते हैं?
1: देखिए, जब हम कहानी लिखते हैं उसमें थोड़ा सा लिखने वाले के पास स्वतंत्रता ये होती है कि वो बैठकर सोच पाता है कि किस विषय पर ज्यादा फोकस करेगा। उसमें पर्यावरण ज्यादा आने वाला है, सामाजिक कुरीति को वो ज्यादा बताने वाला है, बाद में विद्वान उसे से बहुत कुछ निकालते हैं, बाल की खाल उतारते हैं, लेकिन जब लिखने वाला जो व्यक्ति है, और ये मेरा व्यक्तिगत कहना है, हो सकता है जो वरिष्ठ लोग हैं, विद्वत जन हैं, वो इससे इत्तेफाक ना रखे हो, लेकिन जो मेरा मानना है वो ये है कि कहानी में आपको एक स्वतंत्रता रहती है, आप विषय का चयन करते हैं, लेकिन कविता जो है वो स्वतः आती है। आप कहानी के लिए प्रयास करते हैं, एक लंबा समय सोचते हैं, विचार करते हैं, विचार करने के बाद कहानी निकलती है, लेकिन कविता जो है वो स्वतः आती है आपके अंदर से। हो सकता है आपने बहुत लंबा सोचा हो, उसमें विज्ञान के जो लोग हैं वो अच्छे से बता पाएंगे कि किस प्रकार से ये मनुष्य का जो दिमाग है किस प्रकार से काम करता है, लेकिन भावनात्मक मंच पर उस पर देखा जाए तो कविता स्वतः आती है, स्वतः एक विचार आता है और उस विचार को आप कह सकते हैं जैसे ऊन के धागों को आप पिरोते हैं, वो जो ताना बाना बनता है, तो वो ताना बाना कविता है। तो आप ऐसा किसी विषय में बंद कर यही विषय मैं लिखता हूँ, वैसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी प्रेम पर, विरह पर, पर्यावरण पर, सामाजिक स्थितियों पर, कई बार राजनीतिक जो गतिविधियां होती हैं उन पर लिखने में आनंद आता है। तो जब जो मन में आता है तो स्वतः ही कविता एक रूप जो है वो ले लेती है।
0: तो आपसे एक सवाल और है कि आपको क्या याद है कि आपकी जो पहली कविता कौन सी थी?
1: पहली कविता मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा हल्का सा याद है कि मैं चौथी पांचवी में पढ़ता था तो एक कहानी लिखने की कोशिश की थी, और उसमें मुझे बड़ा हल्का सा याद है कि खजाना लेकर जो कहानी के पात्र हैं वो लेकर जा रहे हैं और वो नाव जो है वो डूब जाती है और खजाना जो है वो उसी में डूब जाता है। ऐसी एक कहानी रचने का प्रयास जो था वो मैंने किया था। ये चौथी पांचवी की बात होगी, तो वो ना कहानी मेरे पास आज जीवित बची है, ना ही उसकी स्मृति कोई उस प्रकार से शेष है। जो कविता पहली बार लिखी होगी या जिसे मैं कविता कहूँ कि वो कविता है, तो वो एक कविता है आवारा। हाँ तू भी निकल आधी रात को, पर तू क्यों चांद बन बैठा और मैं आवारा। तो ये कविता का उसका कुछ पंक्तियाँ थी, ये पहली कविता मैंने लिखी थी, शायद 2012-13 के करीब ये कविता लिखी होगी।
0: जी जी, और पिछले दिनों आपकी जो सोशल मीडिया में एक कविता थी बहुत ही वायरल हुई थी
1: जी,
0: तो उस विषय में वो कौन सी कविता थी?
1: जी वो कविता थी, मैं ताजमहल बोल रहा हूँ, मैं ताजमहल बोल रहा हूँ और ये झूठ है कि मुझे किसी शासक ने बनाया है अपनी बेगम के लिए। मैं ताजमहल बोल रहा हूँ और ये झूठ है कि मुझे किसी बादशाह ने बनाया है अपनी बेगम के लिए। मुझे तो बनाया है अपने हाथ खोकर मजदूरों ने अपने परिवार को चंद निवाले खिलाने के लिए। तो ये कविता थी, एक पॉडकास्ट था, उस पॉडकास्ट में
0: जी,
1: कहना तो संस्कृति पे था, लेकिन उन्हें पता था मैं कविता लिखता हूँ, तो उनके आग्रह पे ये कविता कही थी।
0: तो आपसे एक सवाल और है कि आजकल जो सोशल मीडिया के दौर में हर कोई लिख रहा है, आपके अनुसार असली कविता की पहचान क्या है?
1: जितनी मेरी समझ है, इसको मैं दो भागों में उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सोशल मीडिया पर जो कविता लिखी जा रही है, देखिए कविता जब अपने शिशु रूप में होती है, एक विचार जैसा ही होता है, वो विचार आया और मैंने झट से उसको फेसबुक पे लिख दिया और चंद लाइक्स और कमेंट्स से मैंने उसको घोषित कर दिया कि एक बहुत बेहतरीन कविता है, कि 10,000 लोगों ने इसे पसंद किया है तो अब ये बहुत अच्छी कविता है, तो वो कविता का पैमाना नहीं होता, किसी अच्छी कविता का या अच्छी कहानी का वो पैमाना नहीं होता। लाइक्स इसको तय नहीं करते हैं, लेकिन फेसबुक की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में आजकल लाइक्स और कमेंट ही हैं जो तय करते हैं कि क्या कविता होगी। अच्छी कविता आप उसी सोशल मीडिया में, उसी इंटरनेट के जो पूरा सागर है उसमें डुबकी लगाएंगे तो बहुत सारी अच्छी कविताएं बड़े बड़े रचनाकारों की आपको मिल जाएंगी। अब मैं नाम भी लूँगा तो कालिदास का, गालिब का, मीर का, वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे नाम होंगे, बहुत सारे लोगों का नाम मैं लूँगा, महर्षि व्यास का, तुलसीदास का, कई नाम ऐसे लिए जा सकते हैं जो बहुत अच्छी कविता है। क्यों है? उसके उत्तर अलग अलग लोग अलग अलग देंगे, अलग अलग लोगों पर उन कविताओं का, उन कहानियों का एक अलग असर है। तो दो तरह से इसको आप देख सकते हैं कि जो पाठक पढ़ने वाला है वो उसको किस प्रकार से ले रहा है, वो उसको किस प्रकार से देख रहा है, उसका अर्थ क्या निकाल रहा है। अगर वो उसके जीवन की किसी घटना को छूता है, उसके जीवन की किसी घटना से वो प्रेरित होता है, उस कविता से वो प्रेरित होता है, हो सकता है कि ग्रामर की दुनिया में या जो भाषाविद हैं उनके ज्ञान के जो पैमाने हैं, मानक हैं, उस मानक में वो कविता अच्छी ना हो, लेकिन लेकिन किसी व्यक्ति को प्रभावित कर रही है, किसी व्यक्ति का पूरा जीवन का दृष्टिकोण बदल रही है, तो वो बहुत अच्छी कविता हो जाएगी। एक कविता वो है जो हो सकता है किसी व्याकरणविद के, किसी जानकार के मानक में बहुत उत्तम स्तर की कविता हो।

0: लेकिन उस कविता ने आज तक किसी व्यक्ति के जीवन में कोई परिवर्तन ना किया हो। तो अब यहाँ पर कविता किसे अच्छी कहा जाए, तो मेरा मानना है जो कुछ चेंज ला सकती है, जो कविता कुछ चेंज ला रही है, चाहे वो कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, उसके जीवन में अगर वो कुछ चेंज ला पा रही है, उसके जीवन को कोई मोड़ दे पा रही है, कोई कोई अर्थ निकाल कर दे रही है पाठक वर्ग को, तो वो एक अच्छी कविता है। और दूसरी जो भाषाविद व्याकरणविद कहेंगे उनके अनुसार जो है वो मानकों के हिसाब से अच्छी कविता है, तो दोनों ही अच्छी कविता है। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि बड़े बड़े साहित्यकार जिन रचनाओं को कूड़ा रचना कहते हैं, ये टर्म जो है प्रचलित है आजकल, वो कूड़ा रचना भी कई बार बहुत अच्छे रचनाकारों को लिखने के लिए या पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। हो सकता है जो रचना आज के परिवेश में बहुत बेहतरीन ना मानी जाती हो, आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद जब कोई उस किताब को उठाएगा तो वो कहे अरे वाह इससे बेहतरीन तो कुछ लिखा ही नहीं जा सकता है। तो अच्छी रचना क्या होगी इसका कोई एक स्पष्ट उत्तर नहीं हो सकता, ये बहुत अब्स्ट्रैक्ट सा उत्तर हो जाएगा कि नहीं ये तरीका आप करेंगे, ये आप फॉलो करेंगे तो ये अच्छी कविता है। वो अच्छा उत्तर हो सकता है लेकिन अच्छी कविता जो है वो स्वतंत्र है, स्वतंत्रता ही अपने आप में एक अच्छी कविता जो है वो बनेगी।
1: जी जी जी, तो आपकी कविताओं की बात हुई और आप कहानियाँ भी लिखते हैं
0: जी,
1: किस प्रकार की कहानियाँ?
0: कहानी बहुत ज़्यादा कहानियाँ नहीं लिख पाता हूँ क्योंकि और कामों की भी व्यस्तता रहती है। मैं कई बार कहता हूँ कि मैं मनमौजी कवि हूँ कि मेरा जब मन करेगा, जब मेरी इच्छा होगी तो मैं हो सकता है कि 3-4 दिन साहित्य में किताब उठा के पढ़ूँ लिखूँ, और मेरी इच्छा नहीं होगी तो मैंने साल भर में भी कुछ नहीं लिखा है। अभी जैसे मैं पिछले 1-2 सालों की बात करूँ तो मैंने उसमें पूरे वर्ष भर में शायद 1-2 पंक्तियाँ लिखी होंगी, लिखा ही कुछ नहीं है, पुरानी रचनाएँ ही चल रही हैं। वो मनमौजी सा कवि हूँ। कहानियों में भी यही स्थिति है कि मन करेगा, कोई विषय लगेगा कि इस पे कहना चाहिए, मेरी कहानी के माध्यम से कोई विषय आना चाहिए, छोटी छोटी समस्याएं हैं लोगों की आम जनजीवन में, तो उन समस्याओं का चित्रण अपनी कहानियों के माध्यम से करने का प्रयास जो है मेरा रहता है।
1: कहानियों के कुछ नाम जो लिखी हो अभी?
0: अभी एक कुछ आई थी एक पुस्तक, उसमें 25 के युवा साहित्यकार हैं, उनकी कहानियाँ मेरी भी कहानियाँ हैं, तो एक मैंगो मैन करके उसमें एक कहानी है, तो वो कहानी है एक आम आदमी की, बहुत छोटी सी समस्या है, उसकी पानी की टंकी जो है वो भर नहीं पाती है, तो वो उस पानी की टंकी को देखता है और उसी के इर्द गिर्द वो पूरी कहानी मैंने बुनी है।
1: तो शिवाजी आपसे प्रश्न है कि क्या कविता समाज में बदलाव लाने की ताकत रखती है?
0: देखिए, समाज में बदलाव कविता और कहानी नहीं व्यक्ति लाता है, व्यक्ति उस कविता और कहानी से प्रभावित होता है या उसमें वो शक्ति जो है वो ये कविता और कहानी लाती है। अब आपकी बात का अगर स्पष्ट उत्तर देना हो तो बिल्कुल हाँ, कविता कहानी जो है वो परिवर्तन लाती है, बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। लेकिन मैं कई बार अकेले बैठते हुए सोचता हूँ कि आखिर अंतिम वो कौन सा कवि था जिसने अपनी कविता के बलबूते पर समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाया हो, तो कोई बहुत ऐसे बहुत सारे नाम जो है मुझे ध्यान में नहीं आएंगे। लेकिन एक कवि की किसी कहानी और किसी कविता को मंच पर केंद्र में रख कर किसी व्यक्ति ने, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया होगा। तो कविताएं कहानियां जो हैं वो माध्यम बनती हैं बहुत बहुत बड़े परिवर्तनों का। लेकिन जैसा कि कविता के लिए कहा जाता है कि कविता पूरी तब होती है जब वो पाठक वर्ग के पास पहुंचती है, जब उसे पढ़ने वाला पढ़ता है तो वो अपना एक अर्थ देकर उसे पूरा करता है। कविता तब पूरी नहीं होती जब वो छप जाती है या कवि जब उसे लिख देता है, कविता तब पूरी होती है जब उसे एक व्यक्ति पढ़ता है और उसे एक अर्थ देता है, वो अर्थ उसे पूरा बनाता है और वो जो अर्थ है वो परिवर्तन लाता है। तो कविता कहानियाँ हाँ परिवर्तन लाती हैं, कवि कितना परिवर्तन लाते हैं ये थोड़ा सा इस पर लंबी चर्चा हो सकती है।
1: तो ये तो हुई कविताओं की बात, अब बात करते हैं आपके रिसर्च के सफ़र की, जो इतिहास में पीएचडी करने का विचार जो था आपको कैसे आया? आप तो कवि हैं।
0: ऐसा कोई कि मैंने बहुत पहले से चिंतन किया हो कि मुझे ये करना, ऐसा नहीं है। कविता ही कहानियां ही इसका माध्यम बनी कि मैं इस क्षेत्र में गया। वो क्यों बनी? लोक साहित्य पे मेरी एक रुचि थी, उसके रुचि है, इसके साथ ही जो हमारी रीजनल हिस्ट्री है, नेशनल हिस्ट्री भी और वर्ल्ड हिस्ट्री भी, इनमें आनंद आता है, कहानियाँ ही तो हैं, इन कहानियों को सुनने का, जानने का, पढ़ने का में आनंद आता है। अब ये आपको पेट पालने का भी साधन हो सकती हैं और आपको हिंदी एंड 3 वक्त का खाना जो है वो पूरा करना है, कभी कविता पढ़कर पेट नहीं भर सकता। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे याद नहीं है किसी वेस्टर्न राइटर ने ये कहा था कि कविताओं को या कहानियों के लिए कहा था या शायद कविताओं के लिए कहा था कि ग्रामेटिकली उनको बांध

0: देना जो है वो उनकी स्वतंत्रता छीनना है। तो मैं भी उस बात पर इत्तेफाक रखने वाला व्यक्ति हूँ, हालांकि मैं ज़रूर कहता हूँ कि व्यक्ति को छंदबद्ध कविताएं लिखना और जो फॉर्मूले हैं, मीटर है, बहर है, उसमें लिखना आना चाहिए। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि व्यक्ति स्वतंत्र जो है वो जो छंद मुक्त कविताएं उनमें ज़्यादा स्वतंत्र रहता है, कि उनमें वो होता है जो वो सच में कहना चाहता है, उसमें लाग लपेट नहीं होता है। तो इसीलिए कविताओं ने मुझे ये तो समझा दिया कि मुझे हिंदी में नहीं जाना है। तो कविता के साथ जुड़ता, साहित्य के साथ जुड़ता कौन सा एक सब्जेक्ट हो सकता है? तो इतिहास बड़ा करीबी सब्जेक्ट है, तो उस नाते से मैं इतिहास में पीएचडी करने के लिए चला गया, आप ऐसा कह सकते हैं। इतिहास से प्रेम था, इतिहास की उन कहानियों से प्रेम था, उसमें बहुत कुछ सोचने को, विचारने को एक मौका मिलता है इतिहास में, चीज़ों को अलग तरह से। जैसे मैं कहता हूँ, कवि भावनाओं में रहता है, इतिहासकार उतना भावनाओं में नहीं रहता है। तो मेरी कविता और मेरा विरोध, विद्रोह, क्रांति जो है वो भावनात्मक ना हो, वो प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो। तो इतिहास मुझे उस दिशा में, उस दृष्टि में बढ़ने की एक जो रास्ता है वो बताता है। यानी कि आप समझ लीजिए कि जो धर्म कहा जाता है, कि धर्म जो है विवेक आपका एक तरह से, वो आपको बताता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, वैसे ही कविता में इतिहास जो है वो मेरा धर्म बन जाता है। तो मुझे वो भावनाओं में बहने नहीं देता है बहुत ज़्यादा, वो मुझे धरातल पर रखता है, प्रैक्टिकल जो अप्रोच होनी चाहिए उसकी
1: जी
0: और
1: जी
0: बढ़ाता है।
1: तो हमारा एक सवाल और है कि अगर आपको किसी एक ऐतिहासिक व्यक्ति से मिलने का मौका मिले तो आप किससे मिलना चाहेंगे?
0: बड़ा कठिन प्रश्न है, क्योंकि आपने एक ही ऑप्शन दिया। यहाँ पे मुझे लगता है बहुत सारे ऑप्शन चाहिए थे, और क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो है तो मुझे लगता है
1: जी
0: ऑप्शन लिए जा सकते हैं। बहुत सारे नाम हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, ओशो हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज से मैं मिलना चाहूँगा, इससे पूर्व में बहुत सारे लोग हैं, कबीर से मुझे मिलना, रहमान से मैं मिलना चाहूँगा, उससे पीछे चले जाएं वेद व्यास से, और इस तरह से बहुत सारे नाम मैं गिना सकता हूँ जिनसे अगर मिलने का मौका मिले। और मुझे लगता है कि मृत्यु उपरांत अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मरने के बाद लोगों की आत्माएँ या उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो पहुँचती है, और वहाँ पर ये लोग होंगे, तो मैं बहुत सारी बातें इन लोगों के साथ करना चाहूँगा।
1: जी
0: तो
1: जी
0: बहुत सारे नाम ऐसे मैं बता सकता हूँ इनके अतिरिक्त भी।
1: कभी आपको ऐसा आभास हुआ है कि आभास तो नहीं कह सकते, जैसे कभी ऐसा हुआ है कि आधी रात को अचानक कोई कविता दिमाग में आई हो
0: ऐसा मुझे लगता है हर
1: और
0: जी
1: सुबह आप उसको भूल गए हो या याद रखी हो या कागज़ पे लिख ली हो?
0: जी ऐसा मुझे लगता है जो भी कविता लिखता है उसके साथ ऐसा जरूर होता है। कई बार सोते सोते ऐसा विचार या ऐसी रचना दिमाग में आएगी, रचना तो खैर वो नहीं होती है, अपनी शैशव अवस्था में होती है, बहुत प्यारा सा वो थॉट होगा, लेकिन समस्या वही है, आप बड़ी दुविधा में होते हैं, आप उठ नहीं पा रहे होते हैं, और आपको लगेगा कि सुबह तक मैं इसको याद रखूंगा। अब सुबह आपको बस ये याद होता है कि बड़ी अच्छी पंक्ति जो है वो आपके ध्यान में आई थी, लेकिन सुबह तक वो एक आध शब्द ही बच गया होगा, तो वो स्वप्न के साथ ही उस कविता का जो है वो अंत हो जाता है। कई बार मैंने ऐसा जरूर किया, एक दो बार ऐसा हुआ है कि कोई कविता जो है वो रात को ध्यान आई और मैंने उसी समय अपने आप को मोटिवेट किया है कि मुझे ये लिख लेनी है कहीं पे कागज पे, तो मैंने उठ के उसको लिखा भी है। सुबह उठ के मुझे लगा हो कि इतनी भी कुछ खास नहीं थी, अगर छोड़ देता तो कोई बड़ा विषय नहीं था। तो मुझे लगता है वो जो थॉट आता है ना, वो प्रसन्नता उस थॉट की है कि सोते सोते भी मैं सोच पा रहा हूँ, वो
1: जी
0: उस थॉट की प्रसन्नता है। शायद कविता का उतना उसमें रोल नहीं होता है, लेकिन हाँ ये स्वप्न में होता है कि इस प्रकार से रचनाएं आती हैं।
1: तो शिवाजी, लिखने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? लोगों से, किताबों से या अकेलेपन से?
0: ये सारी चीज़ें ही प्रेरित करती हैं। व्यक्ति समाज से दूर नहीं होता है, तो समाज ही उसे सिखाता है क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या करना है। अब आपके साथ चर्चा हो रही है, कोई अच्छी बात निकल कर आ जाएगी तो वो भी एक थॉट है, तो वो प्रेरित
1: जी
0: करेगा ही कि कुछ कहानी बनाई जाए या उसको एक कविता का रूप दिया जाए। तो आसपास की चीज़ें ही जो हैं वो हमें प्रेरित करती हैं। ऑब्जर्वेशन, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना, छोटी छोटी घटनाएं होती, मेरा मानना है जब आप देखना शुरू कर देते हैं, जब आप गहराई से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, उन पे प्रश्न करना शुरू करते हैं, चीज़ों को आप जैसे आपको मिल रही हैं आप वैसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो अपने आप विचारवान हो जाते हैं, विचार की जो धारा है वो आपके शरीर में प्रवाहित होना शुरू
1: जी
0: हो
1: जी
0: जाती है। और जब आप विचार करना शुरू कर देंगे और साथ में पढ़ेंगे भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप विचार करने के साथ पढ़ें, क्योंकि विचारों पर लगाम लगना बहुत आवश्यक है, बिना लगाम के जो विचार हैं वो पूरे समाज के लिए घातक हैं। और मैं कई बार कहता हूँ कि इंजीनियर्स जब काम करते हैं, उस इंजीनियर का अगर बनाया हुआ प्रोटोटाइप फेल हो जाए तो उसको क्वेश्चन, उसकी एक अकाउंटेबिलिटी होती है, लेकिन विचार करने वाले लोगों की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर उनके विचार पॉपुलर उनके मरने के बाद हो रहे होते हैं,
1: जी
0: तो अगर चल गया तो बहुत अच्छा है।

0: नहीं चला तो किसको पूछेंगे। तो विचार को लगाम रखने के लिए अध्ययन आवश्यक है। तो अध्ययन के साथ ऑब्जर्व करना, बातचीत करना, भ्रमण करना, भ्रमण करना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कई बार कहता हूं जितना आप भ्रमण करेंगे, तो भ्रमण करने से आपको नए विचार, नई चीजें, और उनको एक्सेप्ट करना जो आप नहीं मानते हैं, जो सत्य जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। पूरी जिंदगी आपने किसी सत्य को ऐसा सोचा हो कि यही अखंड सत्य है, उस अखंड सत्य को भी प्रश्न करना, ये इंपॉर्टेंट है। जब ये चीजें आती हैं तो मुझे लगता है कि व्यक्ति खुद ब खुद लिखना जो है वो सीखता है या आता है।
1: एक सवाल हमारा और है कि अगर आपको कविता और इतिहास में से सिर्फ एक चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगे?
0: आप बहुत कठिन प्रश्न जो है वो दाग रहे हैं। दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो मैं कविता चुनूंगा।
1: जी
0: उसका कारण ये है कि कविता अपने आप में इतिहास जो है वो बनती है वर्तमान का, क्योंकि वर्तमान के बारे में कविता कहती है, वर्तमान के बारे में वो बताती है, वर्तमान का दर्पण है। और जो इतिहास है वो पुरानी बातों की बात करता है। तो जब आप पिछली बातों पे, हो सकता है कि उसको देखने के लिए, एक तो उसके बारे में पहले ही बहुत सारे लोग कह चुके होते हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा होता है, पुराने समाज को समझाने वाले उस समाज के लोग भी और इस वर्तमान समाज के लोग भी बहुत सारे हैं, मुझसे बेहतरीन है। लेकिन जो कविता है वो वर्तमान को समझाएगी, और वर्तमान में मैं कैसे समाज को देख रहा हूँ, जीवन को मैं कैसे देख रहा हूँ, संस्कृति को कैसे देख रहा हूँ, तो बिल्कुल वो एक नया अनुभव है, अलग अनुभव है। इसीलिए अगर दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो मैं कविता चुनूंगा, और कविता अल्टीमेटली मुझे इतिहासकार भी बनाई देगी।
1: जी बहुत ही अच्छी बात है शिवाजी। तो अब हम चाहेंगे कि आप अपनी कोई छोटी सी कविता या कुछ पंक्तियां हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
0: जी एक कविता है। ये कविता जो है वो बात कर रही है घर से बाहर रहने वाले लोगों के बारे में।
1: जी
0: कविता का शीर्षक नहीं बोल रहा हूँ, सीधे कविता पे आ रहा हूँ, कि अपने घर पर पहाड़ की गोद में, अपने घर पर पहाड़ की गोद में उतावलापन दिखाने वाली अलहड़ नदियाँ, अपने घर पर पहाड़ की गोद में उतावलापन दिखाने वाली अलहड़ नदियाँ किराए के मकान में गंभीर चित्त वाली हो जाती हैं। अपने घर पर पहाड़ की गोद में उतावलापन दिखाने वाली अलहड़ नदियां किराए के मकान में गंभीर चित्त वाली हो जाती हैं। उनकी रफ्तार कुछ कम होती है, उनकी रफ्तार कुछ कम हो जाती है, वे शांत हो जाती हैं। मर्जी से बहने निकली नदियां अनुशासन दिखाने लगती हैं। पत्थरों को तोड़कर भागने वाली अब रेत को सहलाती हैं, उसमें जीवन बो देती हैं। उस जैसी कई नदियां अपने घर से दूर बहती हैं। अलग अलग परिवेश से आई ऐसी कई नदियां शहर में पहुंचकर एक जैसी हो जाती हैं। कुछ भीड़ में खो जाती हैं, कुछ समाज द्वारा पी ली जाती हैं, कुछ बची हुई नदियां सागर में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती हैं। नदी बस अपने घर पहाड़ पर नदी होती है, वहां से निकल जाने के बाद वे सब कुछ होती है, नदी नहीं होती। वे सब कुछ होती है, नदी नहीं होती।
1: बहुत ही शानदार बातचीत रही आपके साथ। आखिर में युवा दर्पण सुन रहे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: ये अब अपने बराबरी और अपने साथ के लोगों को संदेश देना बड़ा जटिल काम होता है, क्योंकि पता चले 10 साल बाद वो संदेश मैं ही फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनको कहना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर मुझे कुछ कहना हो या आग्रह करना हो तो मैं ये कहूँगा कि अध्ययन कीजिए। किसी भी चीज़ को वैसे ही एक्सेप्ट मत कीजिए जैसे वो आपको बताई गई है या दी जाती है, लेकिन उसके परिवर्तन करने के लिए तभी आप पूरा दम लगाइए जब उस परिवर्तन को करने के बाद आपके पास उसकी जगह पर कोई एक अच्छी चीज़ रखने के लिए हो। यानी कि आप उस परिवर्तन का हिस्सा बनिए जो उस चीज़ को हटाकर उसकी जगह कोई अच्छी चीज़ रख रहा हो, ऐसा आपको कार्य जो है वो करना चाहिए। उसके लिए आवश्यक है अध्ययन कीजिए, भ्रमण कीजिए। सोशल मीडिया की हर बात को वैसे ही लेना आवश्यक नहीं है जैसा आप लेते हैं, उस पर प्रश्न कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए, और जब आप ये सब करेंगे तो मुझे लगता है कि अपने आप देश का भविष्य जो है वो सुरक्षित है युवाओं के हाथ में। तो इसी आशा के साथ मुझे लगता है कि
1: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि शब्दों की ताकत और इतिहास की समझ कैसे एक युवा को समाज से जोड़ती है। हमारे आज के मेहमान शिवा पंचकरण जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, देने के लिए, मंच देने के लिए।
1: तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। फिर मिलेंगे नई प्रेरणा और नई कहानी के साथ। नमस्कार।
0: नमस्कार, धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम युवा मंच, और आज के कार्यक्रम में आपने नई उड़ान के अंतर्गत गौरव राय की बातचीत सुनी लेखक शिवा पंचकरण के साथ। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 MHz पर।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
4: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
3: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
4: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
3: जल्दी विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 MHz पर।

हम अपने श्रोताओं को याद दिलाना चाहेंगे कि आज रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें संगीतकार नदीम श्रवण द्वारा संगीतबद्ध किए हुए नगमे सुनवाए जाएंगे। और रात्रि 10:00 आप सुनेंगे सजी फोन इन कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे। इस कार्यक्रम में आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी पसंद का गीत भी सुन सकते हैं, तो ये कार्यक्रम सुनना ना भूलिएगा।

ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 MHz पर। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित व रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी। शाम 6:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरमई सांझ, मौजा ग्राइंदियां। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:30 पर और आज का विषय रहेगा फसल विविधीकरण। शाम 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेती बाड़ी, जिसमें पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम पर बातचीत की जाएगी। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। 8:30 पर देशगान सुनवाया जाएगा। रात्रि 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें संगीतकार नदीम श्रवण द्वारा संगीतबद्ध किए हुए कुछ गीत आपको सुनवाए जाएंगे।

रात्रि 9:30 पर आनंद लीजिएगा लोकगीतों का कार्यक्रम रहेगा गूंज पहाड़ों की। रात्रि 10 आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे। आकाशवाणी शिमला से शाम 6 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 न्यूज एट 9, रात्रि 11 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:58 होने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के चौपाल विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए आज 27 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की। उन्होंने संयुक्त कार्यालय भवन नेरवा और कुपवी के लिए 2-2 करोड़, संयुक्त कार्यालय भवन चौपाल के लिए 3 करोड़, नेरवा बाईपास के लिए 4 करोड़, लखावटी पुल के लिए 12 करोड़ और छवाला चौपाल जलापूर्ति योजना और दुग्ध अभिशीतन संयंत्र नेरवा के लिए 2-2 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। चौपाल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेता रजनीश किमटा, सुरेंद्र शर्मा और चंद्रमोहन ने कहा कि इस राशि से क्षेत्र के विकास को

0: गति मिलेगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ खेल और अन्य गतिविधियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बेहतर खेल सुविधाओं से युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। अग्निहोत्री आज हरोली विधानसभा क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय खड में निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम के निरीक्षण के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ये स्टेडियम अगले 2 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा और इसमें विद्यार्थियों व क्षेत्र के युवाओं को आधुनिक खेल व फिटनेस सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने अधिकारियों को स्टेडियम का शेष कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि पार्टी का प्रत्येक प्रकोष्ठ संगठन और समाज के बीच मजबूत सेतु का काम करता है। राजीव बिंदल आज शिमला में पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल चुनाव के समय सक्रिय होने वाला दल नहीं है, बल्कि साल के 365 दिन समाज के बीच रहकर कार्य करने वाला संगठन है।
1: भारतीय जनता पार्टी जहां अपनी पार्टी को बूथ लेवल से लेके प्रदेश लेवल तक सशक्त कर रही है, वहीं समाज के अलग अलग वर्गों के अंदर पार्टी का काम आगे पहुंचे, हमारा विचार, हमारी सोच, हमारा चिंतन, इसके लिए प्रकोष्ठों का काम, उनके काम को हम आगे बढ़ाने के लिए ये बैठकें कर।
0: राजीव बिंदल ने बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सुक्खू सरकार ने कोई पेपर ही नहीं करवाए, ऐसे में पेपर लीक होने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस नेता वंदे मातरम का अपमान कर सकते हैं, उनसे भलाई की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। लोक जनशक्ति पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नितिन चौहान ने कहा है कि पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में तीसरा राजनीतिक विकल्प बनेगी। इसके लिए संगठन के विस्तार के साथ साथ युवाओं को प्रमुखता से पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। नितिन चौहान ने आज नाहन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जल्द ही हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे।
2: हर गांव, हर वार्ड, हर शहर में यहाँ से जाएंगे और हम अपना संगठन दोबारा से मजबूत करेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है, लोग आज के टाइम में सब परेशान बहुत हैं, क्योंकि कोई भी रोजगार के बारे में सोच ही नहीं रहा है, युवाओं के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। तो हम उन युवाओं के साथ लेकर चलेंगे और उनके लिए चिराग पासवान जी हमारे, उन्होंने बोला भी है कि मैं युवाओं के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, उनको साथ लेकर चलेगी।
0: पहाड़ी शिवालिक जन कल्याण संगठन ने नाहन शहर के लोगों को आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर आज उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। संगठन के अध्यक्ष योगेश ठाकुर ने उपायुक्त से चौगान मैदान को 24 घंटे खुला रखने की मांग की ताकि सेना व पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को आसानी हो सके। ज्ञापन में मेडिकल कॉलेज नाहन में स्टाफ की कमी को दूर करने और नाहन शहर में आवारा पशुओं की समस्या के समाधान की भी मांग की गई है।
3: अगला जो हमारा मंथ आने वाला है उसमें पूरे महीने के लिए ग्राउंड बुक है और हमारे बच्चे 4-5 महीने से ग्राउंड में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और यदि 1 महीने के लिए उनको जो ग्राउंड नहीं मिलेगा तो उनकी 5-6 महीने की जो प्रैक्टिस है जीरो हो जाएगी। तो हमारा ये भी इसमें ये मुद्दा है कि जो हमारे आवारा पशु है उनके बारे में भी जो जल्द से जल्द इसके बारे में सोचा जाए और इसका निवारण किया जाए।
0: प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का दौर लगातार जारी है और राज्य के अधिकांश स्थानों पर आज मॉनसून की व्यापक से भारी वर्षा हुई है। राजधानी शिमला में भी आज सायं जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
4: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
5: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
4: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
4: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने आमने सामने फ़िल्म से ये गीत सुना। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। जी दोस्तों, शाम ढलते ही दिल अक्सर गुजरे ज़माने के हसीन गानों को याद करता है और इसी याद को ताज़ा करने के लिए और आपके मूड को फ्रेश करने के लिए एक और गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। ये गीत हमने लिया है फिल्म लोफर से।

0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price, starting from just 9.67 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 31st August.
1: Own the style icon at an EMI of just 899 rupees per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbag as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price, starting from just 9.67 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 31st August.
1: Own the style icon at an EMI of just 899 rupees per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbag as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूं एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ में गाए भरोसा फिल्म के इस गीत के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सांझ। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मौजा गराएं दिया।

0: मौजां ग्राइनियां कार्यक्रम सुना करदे मेरे सारे किसान बागवान भाई भैणा जो लंबरदार दी तरफ ते राम राम कन्नै किसान साथियों अज मेरे कन्नै किसान मित्र जी मेरा साथ दिया करदे हन। किसान मित्र जी तुहानू वी राम राम।
1: राम राम लंबरदार जी सारिया सुनने वाले किसान बागवान भाई भैन सारिया श्रोतियों का हाँ टियाले पर स्वागत करते हैं।
0: बिल्कुल
1: कहने ले करी हूँ हाजिर है कार्यक्रम मौजां ग्राएं दियां ना।
0: बिल्कुल मौजां ग्राएं दियां कहने अजकल मैं तुम तो दसा बी जड़िया ग्राएं दियां मौजां न
1: हाँ
0: किसान मित्र तो ज्यादा कौन जा नहीं सकता
1: जी।
0: अपने ताजी सब्जी जड़ी है हाँ। निकला कर दी है
1: हाँ जी।
0: कहने बरखा भी मैं बोलता फसलों के मुताबिक ठीक हुआ कर दी।
1: बिल्कुल हाँ जी देखा बरसात भी देखा लंबरदार जी क्या कई बार क्या बोलते ना कि अंबर भरी याद आह कई बार तंग हो जाते हैं ना। अबर अगर अहां इं सोचन कि जलू हाँ जो बरखा की जरूरत हो जलू हो पोगा अहां बन हटी जाते हैं तो नहीं आना ना।
0: बिल्कुल तो ठीक लगा
1: देखा ये पानी जड़ा सा पूरा साल जड़ा सा फिर जमीन से निकलना
0: मतलब असा प्रकृति ने अहां जिया प्रकृति अपनी मौज रखती है
1: हाँ जी
0: चलना पौंदा।
1: बिल्कुल
0: कई बार असा पहले जलू असा अपना बचपन याद करिए ना किसान मित्र।

0: हाँ जी
1: तो दिखा भी हफ्ता हफ्ता पर झड़ियां चल दी रहनियां हैं।
0: हाँ
1: हूं तो सहदियां झड़ियां नहीं
0: हाँ
1: पवेंगे, संझा
0: जी
1: प्यागा टाइम मिला करता। कन्ने दिखा
0: हाँ
1: किसान ने जी, जड़े हाड़े किसान मित्र हैं ना,
0: हाँ
1: से अपने पशु धन का भी साड़ी प्रकृति पूरा ध्यान है। संझा प्यागा कुछ ना कुछ टाइम में एक टाइम जरा से पशु घा बढ़ने टाइम भी दिया करता।
0: दिया करता का देखा। आजकल तो जिन्नी अहाँ दे पशु पालक भाई हैं यानी कि टाइम में तो दिन का बढ़ लिया ना।
1: हाँ
0: शायद इन सोचो था कि मैं तो आज पता नहीं कितना की
1: दिहाड़ी
0: काम करी।
1: पाई दिहाड़ी पाई है ना जी।
0: हाँ
1: तो चलो ये तो साड़ी गलबात अगे भी जारी रहेंगी।
0: हाँ जी
1: तो किसान मित्र जी आज दसा पे जानकारी तो क्या दिया कर
0: जी
1: दे।
0: आज अहाँ जड़ी गल करनी है सह अहाँ करनी फसल बेबी दी करने दे ऊपर है ना। देखा भाई अहाँ जिसी अहाँ बोलिए ना कि फसलों बच्चे जी अहाँ सह फसल लगाई के फसल जो कि उन्नत बनाना कि विज्ञानिक तरीके करने खेती करनी है
1: जी
0: तो सारे ही काम जो फसल बेबी दी करने चाहते हैं ना।
1: बिल्कुल तो ठीक लाया भाई। गल ही है भाई, जी हाँ गल करिए ना,
0: हाँ
1: फलीदार जितनी भी फसलां हैं
0: हाँ
1: सह
0: जी
1: किसान मित्र जी हाँ जानते कि भाई फलीदार जड़ी पौध है ये फसल
0: हाँ
1: है
0: हाँ जी
1: सह आवते ही नाइट्रोजन लेके जमीन च पाई दी है
0: हाँ
1: ना
0: देखा
1: जी।
0: छलियां सोगी जी माँ रोंग
1: हाँ
0: बांधे
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, राजमा
0: हाँ
1: होइए
0: हाँ
1: माँ
0: जी
1: होइए है
0: हाँ
1: ना जी।
0: हाँ जी
1: तो ये चीजा बांधते थे, मतलब विविधीकरण का मतलब यही है कि अलग अलग अगर अहाँ फसलां बांगे कने एक ही फसल अगर जिया इस बार यहाँ चौल बाई ले अगली
0: हाँ
1: बार यहाँ कणक बाई लेनी, तो
0: हाँ
1: तीसने क्या है कि हाड़ी फसला की गुणवत्ता कने फसला का उत्पादन जरा सा घटता जाता।
0: हाँ
1: तो अगर हाँ फसल विविधीकरण करके अलग अलग फसलां बांगे अलग सौगी मिक्स करके फसलां बांगे तो हाँ जो ज्यादा फायदा जरा सा हो सकता है।
0: हाँ इससे क्या होता कि पैदावार जड़ी से बढ़ती है कने इक्का फसल से दूई है जड़ी से नाइट्रोजन मिलती है ना।
1: जी जी बिल्कुल
0: हाँ अगर देखा सारे ही अनाज विविधीकरण का जड़ा सा मुख्य उद्देश्य यही है कि थोड़े थोड़े अनाज जड़े से हाँ जो सारे उगाना चाहिए ना।
1: उगाना चाहिए
0: हाँ
1: कने पट्टिए च भी सांझो ये करना चाहिए भी इस बार यहाँ यहाँ पट्टिए चे फसल भाई तो अगली बार तिहा च बदलना बदलना चाहिए।
0: हाँ जी
1: कने ये जड़ा बदलाव है इस बीच किसान मित्र जी ये भी देखा गया कि साढ़े जड़े दुश्मन कीट है ना
0: हाँ
1: सभी इस बीच जड़े सतने भी हानि पहुंचती।
0: हाँ
1: चलो हाँ
0: जी
1: बदली बदली के फसल बाणी एक ही फसल
0: बिल्कुल
1: बांधते रहेंगे तो
0: हाँ
1: जड़े हानिकारक कीट है ना सह बदते रहेंगे
0: जी
1: कन तिस्ते हाड़ी अगली फसल जड़ी से और नुकसान हुआ करता और नुकसान हुआ करता। तो इससे अच्छा कि हाँ चलो फसल विविधीकरण करन तो तिस्ते जड़े हाड़े घातक कीट कोई का फसल है नुकसान पहुंचाते सह दूई जी नौवीं फसल है तिहा पर इतना ज्यादा घातक आक्रमण नहीं करी पाते।
0: हाँ जी
1: तो साढ़े मित्र कीटा भी फायदा मिलता कने साढ़े जड़े घातक कीट है इन्हें भी नुकसान पहुंचता। तो सो तिस्ते भी विविधीकरण हाँ जो सह फायदा होंगे है।
0: बिल्कुल हाँ जी
1: तो गलबात यही है भी अजकल दिखा भी सावन मास लग गया है कने
0: हाँ
1: साढ़े किसान साथी भी संजय वेला अपने अपने मैं बोलता भी
0: हाँ
1: अड्यालुओं
0: बिल्कुल
1: च बैठे हुए
0: हाँ जी
1: ना
0: हाँ
1: किसान भैन साढ़े मतलब
0: हाँ
1: सलूणा कने रोटियां बनाने दे
0: बिल्कुल
1: इस च
0: बिल्कुल
1: पई हैं।
0: हाँ
1: तो हाँ संजय ये बेला पैरा दे लोक भजन जरा से तिन तक पहुंचाना है
0: जी
1: अव तो अंजो भी सुना दे किसान मित्र जी कने अपने किसान साथियों भी सुना दे प्यारा दिया लोक भजन।
0: जी

0: किसान साथियों संजय जी ऐसा बेला च प्यारे दे लोग भजन जड़ा ऐसा तुहां सुनिया
1: हां जी
0: कने दिखा भी लंबरदार कने किसान मित्रता फराटियां लाई बैठे
1: बिल्कुल हां
0: दिखा भी आजकल सावन मास च खूब शिव दुआल में च जड़ी सा रौनक भी लगदी है
1: हाँ।
0: कने साडे जितने भी शिव दे द्वारे हन
1: हां जी
0: ऐसा मणिमहल समझा अमरनाथ समझाया
1: हाँ।
0: जित जितु भी ता किन्नर कैलाश है
1: हां नागे दे बार लगे
0: नागे दे बार लगे हां
1: नागपंचमी है हां जी हां
0: जी ता दिखा भी आजकल जड़ा ऐसा खूब रौनक जड़ी सा तीर्थ स्थान पर भी लगी हुआ है
1: हां जी
0: कने घरे का भी माहौल जरा सा पूरा भक्तिमय है साड़िया किसान भैन तुहां देखा भी दीये दुआल जो बाल दी
1: हाँ जी हाँ देखा भी बड़े भरी श्रद्धालु इन्होंने दिन हिमाचल तो कांगड़ा घूमने आए हुए ना
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ देखा कुछ साइकिलों पर देखा भी इतनी साइकिलों पर दिखा इतनी दूर से मत्था टेकना थोए रहते हैं
0: ना
1: जिन्हें भी है दिखा भी अजकल जिये बोलिए ना हर को जरा भी अहम जरा जित धार्मिक कोई स्थान है मंदिर है तो तू खूब रौनक लगी है
0: रौनक लगी है दिखा पिछे साढ़े किसान भाइयों के घर ब्याह कारज भी थे
1: हाँ जी
0: खूब तिस भी हाँ बोल गए भी मौसम भी अपना फर्ज निभाया
1: हाँ
0: किसान साथियां अपने जड़िया जिन्होंने घर नौवे परौने आए ने भी मुबारक हाँ माध्यम से
1: हाँ जी
0: जड़िया सा किसान भैन
1: जिन्हें
0: भी अह चाहे कि भाई तिन्हे नौ घर च पुजने दिन दुगुनी रात चौगुनी तैरक्की हो
1: बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी
0: कने सुख समृद्धि छाए तिन्हे घर च
1: जी
0: गल है सह हाँ अपने किसान साथियों ने काम भी जड़े से अजकल किसान मित्र जी थोड़ा घाए बढ़ने का ही ज्यादा काम है अजकल कने अपने डंगर बछुए जरा साफ सफाई है मतलब चाले चूल्हे से जरा दूर रखने की गल है
1: हाँ जी
0: कने बाकी जड़ा ऐसा खूब रौनक जड़ी सा ब्याह कार्ज लगा करती है तो अज असा हूं फिर तो एक बारी एक प्यारे दे लोक गीत अपने किसान साथियों तक पहुंचाना है
1: हाँ जी
0: तो तिसते पहले अह अपने किसान साथियों एक संदेश भी सुनाना
1: हाँ जी
0: कने ता फिर अह सुनते हैं एक और
1: लोक गीत
0: प्यारे दे लोक गीत है ना जी
1: जी

0: Home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price, starting from just 9.67 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 31st August.
1: Own the style icon at an EMI of just 899 rupees per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbag as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: किसान मित्र जी, इस लोकगीत कने संदेश के बाद अहाँ किसान साथी दसीए भी जी अहाँ गल करा करते थे ना, ये बरसाती टाइम लग गया, पहले भी अहाँ गल करते रहे भी हरेक बीड़ा पर एक पेड़,
4: ये
3: साड़ा किसानों का प्राण होना चाहिए।
4: हाँ जी,
3: कि फलदार लगा, काया आले लगा, लकड़ी आले लगा, कोई भी पौधे लगा, लेकिन अजकल जरा ऐसा बरसाती टाइम जरा सा हाँ जरूर तिदा फायदा जरा सा लेना है।
4: हाँ जी,
3: कने इन्हां दिनां च जड़ा कलमा लाने की भी तो कोशिश कर, तो कलमा च भी वधिया ते वधिया जड़ियां कलमा वाले पौधे ने सह तुसीं लगाई सकदे
4: आ। बिल्कुल, हाँ जी,
3: इन्हां चीज़ां तो खास ध्यान रखी के कने अजकल जड़ा है अपने पशुधन जो भी जियां हरे चारे ते कई तरह दियां बीमारियां जड़ियां सौ जांदियां ने,
4: हाँ जी,
3: तिन्हां ते भी अजकल हर गाँव च पशु औषधालय है, तो जरूर तुसीं डॉक्टर ने संपर्क करके अपने पशु की जाँच परख जी जरूर करानी है कि पशु जरा भी अगर ढिला तो नज़र आता है तो इसका जरूर मैं बोलगा कि परामर्श जरा सा लेना चाहिए।
4: हाँ, देखो अजकल जिसे अं बोलते ना बाहा परजीवी आहां दे किसान साथियों पशुओं जो बड़े भारी तंग करते हैं, जिस कि है कि मक्खी मच्छर हो गया, चिचड़ होइए, पिस्सू होइए, खास करके अहाँ के दुध आला जो माल बच्छू है, तो यानी कि जितना सह अजकल बरसाती जी अहाँ मनते भी हैं कि हर जो सह पशु है तिदी सेहत जी सह बरसाती खरी बांकी बनती है, लेकिन जलू ये बीमारियाँ कने ये ब्याह दियाँ जितने कीट रोग तिने लगे होने तो पशु की बड़वाल जी सह नहीं हो पानी है ना, तो हाँ जो चाहिए कि पशु अहाँ का बिल्कुल स्वस्थ जड़ा सा रह, कने तुसी पूरी एक जिस उपचार करी कि जड़ा सा मक्खी मच्छर ते जड़ा सा अपने पशु जड़े सा अहाँ जरूर बचाने हैं ना। कई के दिखा अहाँ जड़े अहाँ जड़े पशुपालक भाई हैं इन्हों की आर्थिकी इतनी मजबूत नहीं है कि सह हर साल महंगे तो महंगे पशु खरीदी पान है ना, अजकल गां में आई लैनी हो देखा भी पता लगता भी कितने की आई है ना।
3: बिल्कुल, हाँ। अजकल देखा किसान मित्र जी साढ़े पशु चिकित्सालय जड़े ने तिना च अलग अलग तरह के अगर तो हाँ अपना नस्ल सुधारीकरण करना चाहते अपने पशु तो सह भी करी सकते।
4: हाँ जी,
3: फिर अपने जी दिखाओ दिखा भी होस्टन जी एक गाय है,
4: हाँ जी,
3: सह अगर तुम अपने घर च तैयार करना चाहते तो हाँ तीसियो भी डॉक्टर दी सलाह सूत्रे ने तो अपने घर च तैयार करी सकते, कहने सह भी वधिया उत्पादन जरा सह दुध तुम दे सकती है।
4: हाँ जी,
3: इस कने कने दिखा भी अजकल गिर नस्ल दियाँ गाय साहिवाल नस्ल दियाँ गाय,
4: हाँ।
3: अलग अलग साढ़े कई किसान जड़े उन्नत किसान हैं सह जड़े ने सह इसी पर काम करा करते कि साढ़ा जड़ा नस्ल सुधार है सह वधिया ते वधिया होवे। अज साढ़े अल पहले तुसां याद करा किसान मित्र जी भई पुराने टाइम में जड़ियाँ गाय थियाँ किलो दुध देता तो सब बड़ा बड़ा मनते थे किलो, कने अज सही गाय तो हाँ दिखा भी किसान जी हिसाब ने सेवा करा कर बाल्टियां हिसाब ठीक ला करते तो हाँ, तो ये जी चीज है सह साढ़े किसान की मेहनत है जी वैज्ञानिका कने मिली के अहां जलू काम करते तो अहां उन्नति करते है ना
4: जी,
3: तो यह गलबात हरी गांव भी जारी रहेंगी। किसान मित्र जी,
4: हाँ जी,
3: एक बार फिर अपने किसान साथी हाँ रौनक की तरफ लेके चलना,
4: हाँ
3: जड़ा हाँ संदेश है भी तक पहुंचाते हैं, लेकिन पहले सुन दे क्योंकि सावन मास लग गया है,
4: हाँ
3: एक लोक गीत की तरफ अपने किसान साथियों लेके चलते सुन दे प्यारा दिया लोक गीत
4: जी।

0: handle the perfect combination of style, technology and safety.
1: Equipped with features like 360 degree camera, heads up display and safety through 6 airbags.
0: And now it's yours at an effective price of just 5.79 lakh rupees.
1: Yes, rupees 5.79 lakh. Valid till 31st August.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the bold Baleno today.
1: Hurry, offer still stocks last. TNC apply.
2: Nexa.
3: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
4: किसान साथियों, इस लोकगीत के संदेश के बाद हुण तुहानू गल करिए भी, जियां पशुधन की गल करा रहे हैं किसान मित्र जी,
5: हाँ जी,
4: तो तीसी कन्या हाँ ये भी दसना चाहेंगे अपने किसान भाइयों भी, जलू साढ़े दुधारू पशु कोई इन्होंने दिनों अगर बीमारी आई जाती है या जियां तुहां चीचड़ पीथड़ की बीमारी भी दसा करते हैं, तो तीस कन्या भी साड़ा पशुधन का दुध का उत्पादन जरा सा घटी जाता है।
5: बिल्कुल,
4: कने इन दिनों सुखा सिन्ना जरा सा जरूर ध्यान रखना, कने अजकल जियां तुहानू पता भी छलैटा निकलता है, अगर तुहां पशु गर्भधारण पशु अगर टीका तुहां लगवाया है,
5: हाँ जी,
4: इन दिनों जड़ा छलिया दा छलैटा जड़ा है थोड़ा घट खुआने दी कोशिश जो जड़ी सा करना चाहिए,
5: हाँ।
4: अपने पशुधन का जड़ा सा मतलब ठंडी तसीर आले जियां तुहां बोलिए भी केले दे पत्तर होई सकदे,
5: बिल्कुल
4: बिल्कुल होई सकदा, इन चीजां जड़ियां सा जरूर खुआना चाहिए,
5: हाँ जी।
4: इसी कन्ने जड़ा सा मौजां ग्राईं दा कार्यक्रम जड़ा सा पूरा होवा करदा है,
5: हाँ जी। जाने दे पहले दस दईए कि तकनीकी सहयोग अज दित्ता सुनील कुमार ने, कन्ने कार्यक्रम दे प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह, हुण हाँ जी दुनिया दी अनुमति, अच्छा जी, जय हिंद, जय हिंद।

मौजा ग्रहदीय कार्यक्रम आपने अभी सुना। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजने को हैं कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की, जो आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाता है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट देने को भी कहा है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 31 और आवेदनों को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,877 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और इससे 9,500 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। ये आवेदन 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 आवेदन शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में आवेदकों को मंजूरी पत्र सौंपे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारी

0: की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वे पार्टी को मजबूत करने और जन सेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वे विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर जिले के रामनगर वन क्षेत्र में 2 अज्ञात व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद व्यापक संयुक्त घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया। क्षेत्र में कई स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में एक इस्पात निर्माण इकाई में हुए विस्फोट में 3 मजदूर घायल हो गए। ये विस्फोट आज सुबह एक निजी विनिर्माण कंपनी में उत्पादन के दौरान हुआ। विस्फोट के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोगों को कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजने की सुविधा मिल गई है। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। दोनों देश अब इससे संबंधित अंतिम संयुक्त बयान की तैयारी कर रहे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह से फिर से खोलना अमरीका की प्रमुख मांग रही है। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई है। पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु आयरलैंड की सोफिया नोबल को हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Union Home Minister Amit Shah today highlighted that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti Network ahead of the Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said the security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. He underlined that substantial recoveries, including IEDs, grenades bearing Pakistan Ordnance Factory markings, pistols, live cartridges, and CCTV cameras used for espionage, were made from the ISI-funded group. Mr. Shah added that the network was involved in several terrorist activities. The government has approved 31 more applications under Electronics Components Manufacturing Scheme with projected investment of 7,877 crore rupees. These approvals are expected to generate over 9,500 employment opportunities. These applications have come from 10 states, including 7 from Tamil Nadu and 6 each from Maharashtra and Haryana. Union Minister for Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnaw handed over the approval to the applicants at a function in New Delhi. The applicants are related to the manufacturing of projects, including acetylene black speakers and microphones, optical transceivers, capacitors and coils. BJP National President Nitin Nab-

0: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुना करदे सारे किसान बागवान भाई भैन जो लंबरदार की तरफ से राम राम कने मेरे कन्ने साथ दिया करदे हैं किसान मित्र जी तुहानू भी राम राम
1: जी हाँ, एक बार फिर तो यहाँ सारे का जरा सटियाले पर स्वागत करते हैं ना
0: जी जी
1: लेकर ही हाजिर है कार्यक्रम हूँ खेतीबाड़ी
0: जी।
1: तो दिखा लंबरदार जी अहाँ तो ठहरे किसान कन्ना हाड़ा था जड़ा सा पेशा ही जड़ा सा पुरखा ते चले आया कि खेती है ना।
0: बिल्कुल तो ठीक लाया पे दिने च पसीने ना निकल
1: हाँ
0: ता ही लगदा भी शरीर अकड़े अकड़े है
1: बिल्कुल
0: ना
1: हाँ
0: भी संजा प्यागा अगर खेते च तो हाँ आजकल चक्कर मारा तो हाँ देखा हाँ। भी
1: चौ तरफा देखा तानी च पटिया
0: रही
1: है ना
0: ऐसा रूह खुश हो जा कर दी
1: हाँ जी हाँ
0: कने छलियां भी तो हाँ दिखने पे बढ़िया चली है ना। पर इस वेला जड़ा ऐसा हाँ ये गलांगे भी जड़े हाड़े जंगला बख्या हाड़े किसाना खेतीबाड़ी की हो है ना किसान
1: हाँ
0: मित्र जी तिना यो दिन रात पारे दी
1: पारा पे ही
0: है ना
1: हाँ
0: जी
1: जी
0: पारा पे
1: हाँ
0: ही है
1: बिल्कुल दिखा
0: जी
1: पिजी
0: गुल्ली पौंदी है
1: हाँ
0: तां तिये दिने बेचारे पारा जड़ा सा पे जंदा है
1: पे जंदा हाँ जी दिखा नुकसान भी बड़ा झेल दे यहाँ दे किसान है
0: जी
1: ना
0: जी
1: लेकिन फिर भी सह बिना जड़ा सा कुछ डरते कना बिना प्रवाह किते सह फिर ते जड़ा सा अगले साल फिर ही मेहनत कर दे ऐसा नहीं सोचते कि यार सारी फसल अहाँ
0: जी
1: दी
0: खराब
1: बर्बाद
0: हो
1: होई तो गाँव नहीं वाणी है ना।
0: बिल्कुल
1: कने कुछ हद तक अहाँ जी गल करिए तो किसान भी जड़ा सा मजबूर हो चुकी है कि यार इतनी दिखा भी अजकल खेती करना भी जड़ा जिसे बोलते ना महंगाई है जमाना चल रहा है ना
0: जी जी जी
1: सब समान जड़ा सा महंगा हुआ करता जी अहाँ दे बीज महंगी हुई है खाद महंगी है
0: जी
1: हलवाई महंगी है ना तो फिर कुछ हद तक किसान अहाँ थोड़ा मायूस भी हो जाता लेकिन फिर भी अहाँ उन्होंने किसानों के हौसले की दाद दें
0: दा दिंदे ने
1: कि
0: बिल्कुल
1: जड़े
0: तुहाडे
1: जड़े सा बिल्कुल जड़ा फिर तो जड़ा सा दुगुनी मेहनत करेगी अपनी
0: अपनी
1: फसल
0: अपनी
1: लगाने
0: जड़ी
1: फसल
0: अगली बारी की फसल है फिर तो बाहने ताई उतनी उत्साहित रहते हैं
1: हाँ
0: ना। उन्हीं मैं दिखा किसान मित्र जी मैं सुना करता था कि भाई कुथी राती सूरा इतना हमला किया कि भाई सारी फसल जड़ी है
1: तबाह
0: मक्की
1: हुई
0: है
1: है
0: तबाह हुई है
1: हाँ
0: तो कई जगह तो यदि खबर चलो किसाने वाली खबरें मिलती हैं
1: हाँ जी
0: तो बड़ा दुख होंगे लेकिन प्रकृति ने हाए बोल के भाई जिया दिने जड़ा सा बांदरां खतरा कने राती
1: हाँ
0: जड़ा सा सूरां खतरा
1: हाँ
0: तो साड़ा किसान जड़ा सा दिन रात करके अपनी फसल जड़ी सा अपने हत्थे लैंदा है
1: हाँ जी
0: तो हाँ भी इस बारी भी हाँ ये आशा करनी कि भाई साढ़े किसाने सुख सम शांतिया कन्ने जड़ी फसल से हाड़ा किसान ले सके
1: हाँ जी
0: कने जड़े किसान पारा करा करते हैं इस विच दिखा सिर्फ हाड़ा ही सहयोग नहीं है
1: हाँ
0: साढ़े जड़े कुत्ते हैं सह भी सानू बड़ा सहयोग देंगे
1: हाँ
0: है
1: जी
0: ना जी
1: हाँ
0: तो तिना का भी हाँ जो ये बोलगा भी ध्यान सानू रखना चाहिए क्योंकि सही साड़ी पूरी वफादारी साढ़े कन्ने निभाते हैं
1: हाँ जी
0: टाइम टाइम तिना भी रोटी पानी जड़ा सा होना चाहिए है ना जी
1: हाँ
0: तो अगर

0: गलबात जड़ी है असां अपने जानकारी दी तरफ लेके चलनी तेरे
1: हाँ
0: जानकारी विच अज असां अपने किसान भाइयों ने जड़ी गल करनी है सै भी
1: हाँ जी हाँ, दिखा हाँ, पहले भी अपने पशु पालक भाइयों के गल कर करते हैं। हाँ, पशुओं के स्वास्थ्य की है ना,
0: हाँ
1: तो
0: बिल्कुल
1: दिखा पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की अगर अहाँ गल करिए, तो जियाँ कि इन दिन जोड़े भी अहाँ के पशुओं के रोग लगते हैं ना, दिखा हाल ही च पिछे जी गर्मी से यदा जो एक मुफ्त टीकाकरण अभियान जो चलिया हाँ
0: जी
1: ना,
0: जी जी
1: हाँ जिस कि FMD के टीके हुई खुरपका मुँहपका के जोड़े से
0: जी
1: रोग के
0: जी
1: टीके है ना, तो ये अगर अहाँ समय रहते अगर अहाँ अपने पशुओं जो लगवाए हो दिखा बरसाती अहाँ दे पशु जो बीमार होने दे बड़े जिसे बोलते हैं ना हाँ भी घट जड़ा सही रहता ना। हाँ
0: संभावना जड़ी से रहती है। तो
1: हाँ
0: पहला तो दिखा भी जड़ियाँ बीमारियां दे टीके हैं ना
1: हाँ
0: तिना बीमारियां ना भी घराला च नहीं लेना चाहते हैं लोग है ना जी
1: हाँ
0: इतनी
1: बिल
0: खतरनाक बीमारियां होंगी है।
1: हाँ
0: तो हूँ तो विज्ञान इतना अग्गे निकली चुकिया कि साढ़े किसान भाइयों डरने की जरूरत नहीं है। समय पर जलू टीकाकरण होंगे तल तुह करवा
1: हाँ जी
0: कने इन बीमारियों तुह छुटकारा पाई सकते।
1: हाँ
0: इस
1: जी
0: कन्ने कन्ने हाँ भी बोलना चाहेंगे कि भाई जड़ा एक कुछ टाइम पहले गिल्टियां वाली बीमारी लंपी वायरस जिसी गला करते थे
1: हाँ सर
0: कुछ राज्यों च किसान साथियों से भी दिखने को मिला करता है। तो
1: हाँ
0: ये बीमारी जड़ी है सै हवा ते ही गांह ते गांह बद ही रहती है।
1: हाँ
0: तो
1: बड़ा भारी
0: अगर थोड़ा
1: हाँ
0: दिया भी तो जो कोई शक पाँदा है भी मेरी पशु च कोई ये बीमारी तो नहीं आवा दी है तो एकदम तो हाँ अपने पशु चिकित्सालय च जाइके सलाह सूत्र जड़ सही दे बारे च करना है।
1: हाँ
0: कने जियां यहाँ गला कर दे भी पशु तो साड़ा धन है तो अगर पशु कुछ हो गया तो फिर धन तो सो कमी हो जानी।
1: हाँ जी
0: तो हाँ चाहेंगे कि साढ़े किसान साथी अपने वैज्ञानिकों जो पशु डॉक्टर हैं तिना ने मिली के अपने पशुधन जो भी कने अपनी खेती बाड़ी जो भी समृद्ध बनान कने खुशहाल जीवन जोड़ा सह व्यतीत करन।
1: जी
0: इस कन्ने कन्ने हूँ हाँ अपने किसान साथियों संझा का बेला तो फिर रौनक भी जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो
1: हाँ
0: किसान मित्र जी तुहानों भी सुना कने अपने किसान साथियों भी सुना प्यारा दिया लोक गीत।

0: किसान साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी भेंट वार्ता दी कड़ी विच अहां दा प्रयास रहंदा कि हर दिन एक नोई ते नोई जानकारी अहां तुहां तक पहुंचाइए। उसी कड़ी विच आज एक उन्नत किसान मेरे सोगी जुड़ा करदे न इन्हां कन्ने गलबात। राम राम जी।
1: राम राम जी।
0: जी अपना नाम दसा।
1: मेरा नाम सुभाष सिंह सपेहिया।
0: हां जी।
1: गांव डिब्बर।
0: कने पंचायत?
1: पंचायत मनेई।
0: कने ब्लॉक कौन बंदा तुहानो?
1: ब्लॉक साडा रहत जी।
0: जी सुभाष जी, ता खेतीबाड़ी करदे है ना?
1: खेतीबाड़ी करदे जी, पूरी पूरी।
0: किन्नी की जमीन है तुहां वाला?
1: जमीन सर साड़ी कोई 10 की कनाली है तकरीबन।
0: सारी अलवैंद जमीन?
1: सारी अलवैंद ही है, कुछ बागवानी भी है, कुछ अलवैंद है।
0: हां जी। क्या क्या लगांदे?
1: अजकल दे टाइम दियां मेन फसल साड़ी है धान कने छलियां।
0: हां जी।
1: इस ते अलावा हां सब्जी भी तैयार करदे।
0: अच्छा।
1: जियां सीजनल सब्जी है।
0: हां जी।
1: घिया होई गया, डानी होई गई, घिया, करेला, भिंडी, मटर फली,
0: हां जी,
1: तैरा वगैरा, जितनी भी मतलब इस सीजन दियां सब्जियां सारियां तकरीबन तैयार करदे।
0: सुभाष जी, गल करदे ने पहले बीज दी, कुत्थों ते लैंदे बीज?
1: बीज सर किश्ता लैने हैं, ब्लॉक च तां घट ही मिलदे। हाईब्रिड क्योंकि अजकल जेहड़े तौंदियां ने हाईब्रिड ही तैयार हुंदे।
0: हां जी।
1: लोकल साडे देसी बीज तैयार नहीं हुंदे। देसी बीज जेहड़े हुण बाहे ना तां,
0: हां जी,
1: तां हुण जिहड़ा गां तैयार बरसाती मुकदियां ने जिहड़ा लगना तैयार होना।
0: हां जी।
1: तां अहां पहले भाई असे जून च अहां सब्जी मतलब तैयार करी थी ही।
0: हां जी।
1: तो सह सारे हाईब्रिड थे। अच्छा। तो सह लेंदे अहां रैत ते लेंदे। अच्छा। या फिर लदौन से लेंदे,
0: यानी कि प्राइवेट ले?
1: प्राइवेट ना, प्राइवेट सरकारी नहीं मिलते सांजो।
0: अच्छा।
1: अच्छी भी।
0: इस वक्त क्या क्या तुहां दे खेतरां विच जियां फसल क्या क्या?
1: इस वक्त फसल सारी धान छलियां ने, छलिया कुछ थोड़ी बीमारी पई है, पर थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, दवा दू स्प्रे स्प्रा करिए।
0: कौन छली बांधे?
1: छली हाँ किस देसी भी बांधे कि किसी भी नहीं, मुले आली बांधे।
0: देसी लाल है कि चिट्टी है?
1: मिक्स ही बांधे, लाल भी कने चिट्टी भी, क्या लाल भी खुंदी नहीं।
0: अच्छा।
1: मिक्स ही बांधे।
0: छलिया का देसी बीज तो घरे ही होना?
1: घरे का।
0: धान कौन दिया लगाया?
1: धान तो इस वक्त हाईब्रिड ही।
0: कुछ पता कौन किस्म है?
1: हाँ बांधे जी, विजेता 100 नंबर।
0: अच्छा। पहली बार वह है?
1: पहले भी बांधे, पहले पहले अज से पहले तकरीबन 12-15 साल पहले मिंजो ब्लॉक से गाइडेंस मिली थी।
0: हाँ जी।
1: जगोरी वाले ने गाइडेंस मिली थी, उस टाइम धान शायद समझो जिन्हें दिता 10-8।
0: हाँ।
1: तो वो धान अच्छा होया था, तो उस वक्त ब्लॉक ब्लाक वाले घाटी मतलब धान तू घाटी था, मैं इस एरिए मैं ही लाया।
0: हाँ जी।
1: तो काफी मतलब ब्लॉकों के मेरे दिखने भी आए, अच्छी पैदावार हुई। तो इसके बाद हूं देखी के लोग आम तकरीबन इस वक्त 90% किसान जो हाईब्रिड जो फुटे आला गलाने, लोकल फुटे आला गलाने, फुटे आले।
0: हाँ जी।
1: तो फुटे आले बांधे धान और अच्छी मतलब पैदावार।
0: इससे सौगी और सब्जी?
1: इस ते सब्जी सब्जी दी तो दसी तो जो सब्जी तो उतनी तैयार कर दी, हुण गां अगली है।
0: हाँ
1: बस हुण हां दो चो दिने तां गोभी दी पनीरी तैयार कर देनी हां अपनी।
0: हाँ
1: गोभी अपनी मैं पनीरी भी बेचदा।
0: हां जी।
1: लाई के भी बेचदा, मतलब सब्जी तैयार हो जांदी गोभी टमाटर।
0: जी जी।
1: अगली जेहड़ी तैयारी करनी हां सभी कने कने घर।
0: सुभाष जी गल हुंदी है खाद दी, तां खादा गुण दी है बांदे तो? हां
1: खादा सर आ कने कने देसी खाद तो साढ़े बड़ी है, कने कने थोड़ी बहुत समझो 12-32-16 भी पाना पौंदी।
0: जी हां जी।
1: क्योंकि बरखा बड़ी हमता से देसी है, कन्ने से नीत नहीं चलती।
0: हाँ जी।
1: ता थोड़ी बहुत समझो 12-32-16 जड़ी से मिक्स करना पौंदी।
0: हाँ जी।
1: ता जाई के फसल हुंदी, जे अगर 12-32-16 ना बाही है सा।
0: हाँ जी।
1: ता देसी खाद

0: जितनी मर्जी भाई ये पानी लगी जंदा फसल एक ने फसल नहीं होंदी।
1: तो देसी खादा जियां तुहां पांदे आ ना, जियां गोहा पांदे होणे आ ना, मैल
0: गोहा पांदे पुराना हां जियां हां बाकी खड्डा भी लै आया है।
1: अच्छा,
0: खाद दा वो भी तैयार की हुआ है, वो भी
1: अच्छा
0: पाने जियां हुण हां एक बारी जदो फसल तैयार करनी ते पहले सह बाणी है
1: हां जी
0: पानी ते इसके बाद जाइए फिर असां।
1: तो कितने की पशु रखे हो घर है जियां?
0: पशु तो दो ने जी, दो एक गाव कने एक बैठ।
1: अच्छा,
0: हां जी
1: दूध दनिया है दन्ना?
0: दूध एक दिन दी कने एक थाली छोटी है।
1: अच्छा, किन्ना दूध होई जांदा?
0: दूध इस वक्त 2 साल ते ऊपर ही होई है सुइया।
1: हां जी,
0: ते इस वक्त 2.5 किलो शक्का दा दिंदी, यानी 4-5 किलो
1: दूध
0: दा होई जांदा।
1: देखा वे अगर 5 किलो दूध भी अगर हां वाला अपने घर दा है ना, तो इससे वधी गल और क्या हो सकदी है?
0: हां जी हां जी,
1: तो घरे ताई ही चलदा होना दूध ना
0: कि दूध दा कने तो और करे दी और क्या कमाई। फसल दा इतनी भारी नहीं हुंदी कि हां जी बेची लईए। इस विच बेचणे ये भी सब्जी सुब्जी बेच लेंदे सी, बरखा दी वजह करके इस वक्त इस ते पहला सब्जी दी थोड़ी बहुत बेची भी कोई क्वांटल दो क्वांटल, पर इस वक्त सब्जी जेड़ी जैसे बिल्कुल जीरो हो गया, बरखा की वजह करके फूल नहीं तैयार हो रहा कने फल नहीं लगा रहा
1: जी। तो दूध भी बेच दे कि घरे दे?
0: दूध लगो 1.5 किलो लाया बांध ही।
1: हां जी,
0: कने बाकी घरे दे बच्चे बुच्चे खा लेंदे।
1: घर आई के ले जंदे होने बांध?
0: हां घर आई के ले जंदे।
1: क्या भाव दूध बिकी जंदा
0: तोहां दे? दूध बिकदा 45-50।
1: चलो देखा 45-50 भी अगर ग्राएं दी गल है ना, तो किसान जेड़ा सा पशु पालक परवाह नहीं मारदा।
0: हां जी,
1: कई की देखा अगर दूध वहां हां दिखिए तो घा महंगा हो गया, फीड महंगी है, सब कुछ तारा मेरा है।
0: चलो घा कू जेड़ा साडा घरे दा हो जंदा ओ हो जंदा, पथरा भी साडा माड़ा मोटा घरे दा हो ही जंदा है। बागवानी भी कीती थोड़ी बहुत।
1: अच्छा, दसा क्या क्या कीती है बागवानी?
0: बागवानी दा तकरीबन 2-2, 4-4 बूटे दा सारे लाए ने, जियां सेब है, अंब ने।
1: हां जी,
0: पर नींबू इस वक्त मैं ज्यादा तादाद में चले आके नींबू दे मेरे वाले इस वक्त कोई 35-40 बूटे।
1: अच्छा,
0: सीजन दा 2-4 क्वांटल नींबू है बेच लेंदा।
1: सुभाष जी, खेती बाड़ी की कर दे? हाँ, बैल रखी हो?
0: खेती बाड़ी अजकल ट्रैक्टर रखे छोटा जी।
1: अच्छा,
0: सभी मैं नहीं रखे पर प्राथी साढ़े रखे तो साड़ा सारा दूध का कम चली चली
1: जाता। तो जेड़ा है इलाका डिब्बर दहा दसिया, ये तो पानी की लगता खेत?
0: पानी है, बरखा से पानी है जी,
1: पूरा बरखा भर
0: है ना।
1: जी पानी ताइया जी कोई खड्डे वगैरह बने होंगे पंचायत स्तर पर या कुछ विभाग द्वारा से नहीं बनाए? तो
0: खड्डे बने होते हैं, खड्डे जहाँ पानी स्टोर करते बरखा का, सही पानी यूज करते फिर सब्जियां सुब्जियां।
1: सुभाष जी, जी कई बार विभाग द्वारा कई तरह दी ऐसी ट्रेनिंगा चल दी, कोई कैंप चल दे खेती दे तो हाँ भी कोई ऐसी सिखलाई?
0: हाँ सर, तकरीबन ट्रेनिंगा माड़िया मोटिया सारिया की।
1: अच्छा,
0: मिंजो पोलियोस भी बनाया हा मैं, पर मेरा पोलियोस 18-17 बीच तूफान चलिया था, मेरा पोलियोस ढही है, मतलब थले स्ट्रेचर ही सारा पटोई है, तो उसके बाद मैं पोलियोस नहीं बनाई सकिया।
1: अच्छा,
0: अपनी आर्थिक स्थिति कदम नहीं बनाई सकिया, हूं अपना बनाया सी मैं एक पनीरियां पनारियां जो बनाया माड़ा मोटा एक पोलियोस टाइप, इससे पनीरी पनारी करता कने उन्हें सब्जियां खुले तैयार कर।
1: जी कई बार फसल कोई बीमारी भी आई जाती है, जी तुहां दस्सिया कि छली दी फसल जो क्या टिड्डा खा करदा टंडे?
0: टिड्डा खा दा टां टिड्डा नहीं है सर, लुड़ी है एक ना, लुड़ी बिच सब पुपड़ी बनी जाती कि लुड़ी सी।
1: अच्छा, तीन की क्या रोकथाम की?
0: रोकथाम तो उन्हें तो बतेरिया स्प्रेयां भी की, पर मुख्य रोकथाम तीसरी यही है भी तुसा जेड़ा खाद है अपनी एक खाद बरीक पाउडर टाइप होंगी है, इस तरह तुसा वैसे देसी मतलब ऑर्गेनिक आई जाती है देसी आई जाती, जिसे तुसा स्प्रे करा तो पाउडर सट्टा मारी के दिया ते कंट्रोल हो जाती है।
1: अच्छा, तुहां लिया सा कुछ?
0: समझो अज ते 5-4 साल पहले ब्लॉक दे थ्रू कोई संस्था दे थ्रू मिला हा, ते मेरे पैकेट पी होए।
1: हां जी,
0: तिस तिना पैकेटा ते थोड़ा कंट्रोल हुई है, कंट्रोल थोड़ा क्या पे हुई है भाई जिन्हें लगी है।
1: हां जी हां जी,
0: ते लगी है पर बाकी बचाओ हुई।
1: सुभाष जी, जितना भी तुहां उत्पादन अपना सब्जी हुई फसलां जेड़ा भी तैयार करदे हैं ना अनाज, ए भी बेचदे कुतु तुहां?
0: इक अनाज ता इ है भाई छाड़ा छोटे मोटे व्यापारी चली जांदे, थोड़ा बहुत हुंदा अनाज बेचणी, बाकी ता अपना खान गुजारा हुंदा।
1: हां जी,
0: बाकी सब्जी दी गल वेई सा अपने दुकाना मार्केट च लेई जन्ने से तू बिकी जन्ने।
1: अच्छा, कौन मार्केट लगदी तां जन्ने
0: समझो जाना पे जंदी हर सके पे जंदा।
1: अच्छा,
0: कि तू जड़ी 2-4, 6-7, 5-7 किलो रोजे दी होनी से लेई जाने आ कने से तू बिकी जन्ने।
1: अच्छा जी, तुहां शुरू च जिक्र कीता है ना कि तुहां ज्यादातर जेड़ा सा देसी खादा है जणी से पांदे लगभग, तां जी देसी तरीके कने चलो आहा कोई चीज तैयार करदे हन कोई भी फसल है तां उदे थोड़ी मेहनत ज्यादा लगदी है?
0: हां जी, मेहनत ज्यादा लगदी।
1: उसी भा तरीके कने तां जोतने भा मिली जांदे ज्यादा भी?
0: भा देखो जी गल थोड़ी
1: मुश्किल है किसान जो
0: मुश्किल एक बंदा क्योंकि फर्स्ट भी चाहिए पैदावार भी घटी जानी घटती है पैदावार बधाने वास्ते 2-4 साल लगी जाते फिर मेरे बन्ने खेत्र है इस विच यूरिया भी बाहर स्प्रे भी करा दे कीटनाशक भी करा दे, मेरी जमीन भी असर।

0: होना होना जी, ये तो हाँ बड़ी पते दी गल जी दसी है।
1: साड़ा नींबू जैसे व्यापारी आते थे 20 रुपये किलो खरीदते,
0: जी हाँ
1: मैं
0: जी
1: दुकाना आपू जरा बेचना था 50-60 रुपये, दुकाना 100 रुपये, 50-60 रुपये जेडे ने बिकी जाने। बगैर खाता दूजे ते खेती करना ही है। पिंडे च कैंप लगन, पिंडे जाने सारे जी जानकारी दी जा, अगर सारे लोग इस तरीके ने खेती करके तो साल 2 साल बाद तो ज्यादा बेनिफिट होना, लेकिन मेरे गलाने पर तो पिंडे वाले नहीं मानना।
0: हाँ जी जी जी
1: इस करके किसान केंद्र जेडे ने सेमिनार लाते हैं,
0: हाँ जी
1: इन्हें चाहिए हरेक पिंड छोटे छोटे छोड़ पिंड जाकर 10-20 किसान किट्ठे करके तिन्हें इसी सा गल तिन्हें समझान,
0: हाँ जी
1: ता ये हो सकता।
0: सुभाष जी अहां जी नौजवान युवा पीढ़ी है ना, शायद दिखा भी नौकरियां पिछे ता तू घूमा कर दे, कुछ हद तक नौकरी नहीं भी मिली पा
1: नहीं
0: कर
1: मिला पा रही
0: है ना,
1: थी, चल
0: उस युवा पीढ़ी जो भी तुहा कुछ ऐसा कोई संदेश दिया कि सभी किया खेती बाड़ी जो करी की
1: लेकिन
0: भी।
1: युवा
0: हाँ
1: पीढ़ी
0: जी
1: ये संदेश है मेरी तरफो कि किसानी भी तो कोई घाटा नहीं है।
0: हाँ जी
1: अगर सारे पिंड वाले लोग जेड़े ने, अगर एक आदमी सब्जी करता जे 10 बंदे सब्जी करन,
0: हाँ जी
1: जो 2-2 किलो निकले तो 20 किलो सब्जी हो तो
0: जी
1: सह मार्केट च जाके जा सकता
0: हाँ जी
1: और जो पैसा भी अच्छा मिल सकता।
0: हाँ जी
1: एक बंदा करे तो इसकी कितनी मार्केट बने, सारे पे किसानी भी कोई घाटा नहीं है। आने वाले टाइम बच्चे किसानी करना पौनी, कहने सारी ये जिम्मेदारी पास ध्यान देन ताकि साड़ी इनकम जी से बढ़ सके।
0: जी सुभाष जी तो हाँ अपने खेतीबाड़ी के अनुभव अहाँ कन्ने साझा किते, अपना कीमती समय तो अहाँ जो दिता तो हाँ बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਜੀ ਆਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਝਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ,
0: ਹਾਂਜੀ
2: ਤਾਂ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਗੀਤ।
0: ਜੀ

0: भाई किसान साथियों संजा दी सा बेला च प्यारा दिया लोक गीत तुहानू पसंद आया होना, कने खूब रौनक तुहाडे घर च लगी होनी। इस
1: हाँ
0: लोक गीत ते बाद हुण आपां अपने किसान साथियों लेके चलना कांगड़ा सब्जी मंडी दी तरफ।
1: जी
0: कने भा जड़े ने सत तुते दसणे ने,
1: हाँ जी,
0: तां सब तो पहले आलू रिया 10 ते 20 रुपए प्रति किलोग्राम, प्याज 35 ते 38 रुपए प्रति किलोग्राम, टमाटर 25 ते 36 रुपए प्रति किलोग्राम, लहसुन 150 ते 180, अदरक 140 ते 150, शिमला मिर्च 55 ते 60 रुपए प्रति किलोग्राम, अरबी 35 ते 38 रुपए प्रति किलोग्राम, खीरा 20 ते 30 रुपए, कने मटर जड़ा सा 110 ते 130 रुपए, फुल गोभी 70 ते 75 रुपए, कने बंद गोभी जड़ी रही सै 30 ते 35 रुपए प्रति किलोग्राम, बैंगन 28 ते 30, कद्दू 15 ते 18, कने अगर मूलिये की गल करिए 20 ते 30 रुपए, टींडा जड़ा सर रिया 10 ते 20 रुपए, अगर हाँ गल करिए भिंडी की तो भिंडी जड़ा मूल्य जड़ा रहा सर 28 ते 30 रुपए प्रति किलोग्राम, घिया 20 ते 32 रुपए प्रति किलोग्राम, कने गाजर जड़ी है सर 30 ते 32 रुपए, कने अगर फलों की गल करिए किसान साथियों तो फलों हाँ केला जड़ा सर 45 ते 55 रुपए दर्जन, सेब 40 ते 200 रुपए प्रति किलोग्राम, कने अनानास जड़ा सै 33 ते 40 रुपए, अमरूद 80 ते 90 रुपए प्रति किलोग्राम, मौसमी 50 ते 60 रुपए, कने पपीता जड़ा सै 50 ते 55 रुपए प्रति किलोग्राम।
1: जी तो देखा लंबरदार जी, सब्जियां दे भाव जड़े से काफी उच्चे ने इस वेले, है ना?
0: जी बिल्कुल तुहां ठीक गला
1: हाँ
0: ने, जड़ी भिंडी जड़ी है लता बरखा हो करदियां ने
1: हाँ
0: तां हले और बदने दी संभावना।
1: देखा वे इना दिना भिंडियां 10 कने 15 रुपये किलो मिली जानी ही बाजार, है ना? सही हुण 60 कने 70 हाली बिका करदियां ने।
0: जी सांजो पहली तां गल दिखा किसान मित्र जी, अपने घर दी सब्जी उगाना बड़ा जरूरी है।
1: हाँ
0: कने हरेक किसान इतनी क खेतीबाड़ी लगभग
1: काफी मुनाफा हुआ करता इस वेले, है ना?
0: बिल्कुल ठीक गलाया।
1: हाँ।
0: इस गल बात बाद हाँ चलते चलते एक और लोक गीत जो अपने किसान साथियों तक पहुंचाना है
1: जी,
0: आओ सुन दे सुना दे प्यार दिया लोक गीत
1: जी।

0: इसी प्यारे दे लोकगीत कन्नै किसान साथियों किसान बाणी का कार्यक्रम खत्म इत्थे संपन्न हुंदा है।
1: हाँ
0: संपर्क
1: जी
0: करने से पहले तुसीं दस्सिए इस कार्यक्रम च सानूं तकनीकी सहयोग दिता सुनील कुमार ने, कन्नै इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं
1: डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह, उन्हां दुनी दी अनुमति।
0: अच्छा
1: अच्छा जी,
0: जी
1: जय
0: जय
1: हिंद।
2: कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:42 हुए हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों की संख्या कम करेगी सरकार, हर साल होगी 200 करोड़ रुपए की बचत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर लगाया गांधी परिवार को खुश करने के लिए प्रदेश के संसाधन खर्च करने का आरोप। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, शिक्षा के साथ खेल और अन्य गतिविधियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवा रही सरकार। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पार्टी के प्रकोष्ठों को बताया संगठन और समाज के बीच सेतु। और प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय, 5 जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों की संख्या को कम करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अधिकारियों की संख्या में प्रस्तावित इस कटौती से प्रदेश को हर साल लगभग 200 करोड़ रुपए की बचत होगी।
1: आईएएस के हम 153 में से 130 पद करने जा रहे हैं, आईएफएस के हम 118 में से 83 पद करने जा रहे हैं, आईपीएस के 96 में से और पद कम करने जा रहे हैं। अधिकारियों की ज्यादा फौज नहीं चाहिए। मैं सबसे ज्यादा जो अप्रूवल है वो दिल्ली जाने के लिए दे रहा हूँ कि जो अधिकारी दिल्ली जाना चाहता है, पहले इनकी फाइलें रोकी जाती थी, मैं इनकी फाइलें तुरंत प्रभाव से अप्रूव करता हूँ और जब रिलीव होना होता तुरंत प्रभाव से कह रहा हूँ, क्योंकि इतने अधिकारियों की जरूरत नहीं है। एक अधिकारी पर अगर ये हम सारे कहेंगे तो 200 करोड़ रुपया कम खर्चा आएगा, जो कि लोगों को सेवा कर सकते।
0: कर्मचारियों को लेकर विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने एक भी दिन कर्मचारियों की सैलरी व पेंशन नहीं रुकने दी, यही आत्मनिर्भर हिमाचल है जिसकी सरकार बात करती है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में राज्य पथ परिवहन निगम को आत्मनिर्भर बनाने का है। उन्होंने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से मंडी जिले के लिए 25 नई इलेक्ट्रिक बसें रवाना करने के मौके पर कहा कि निगम में अधिकारियों की गाड़ियों की संख्या भी घटाई जाएगी।
1: बहुत अच्छी माइलेज आ रही है, बहुत अच्छी कवरेज आ रही है और हमारे यहाँ चंडीगढ़ के रूट जो पर किलोमीटर के हिसाब से थोड़े कई बार नुकसान हो जाता था, वो हमारे एवरेज में ठीक आ जाएगी। तो निश्चित रूप से नई व्यवस्था के अनुरूप ये आगे बढ़ेंगे और एचआरटीसी को हम सस्टेन करना चाहते हैं, उसको हम अच्छा बनाना चाहते हैं, इस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ज्यादा समय नहीं है, 5 साल में एचआरटीसी प्रॉफिट भी कमाने लगेगा।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए के चिकित्सा उपकरणों और मशीनरी की खरीद व स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आज शिमला में हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को खरीद प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए ताकि उन्नत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लोगों को

0: जल्द से जल्द मिल सके। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू गांधी परिवार को खुश करने के लिए प्रदेश की ऊर्जा और संसाधनों को खर्च कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने मंडी में आज कहा कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र के दियोरी में स्कूल भवन लगभग 9 महीने से बनकर तैयार है, लेकिन कांग्रेस महासचिव व सांसद प्रियंका गांधी इस भवन के उद्घाटन के लिए समय नहीं दे रही है। ऐसे में इस भवन पर ताले लटके हुए हैं और बच्चों को किराए के मकान में पढ़ाई करनी पड़ रही है। उन्होंने इस भवन को महीनों तक बंद रखने को विद्यार्थियों के साथ अन्याय करार दिया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ खेल और अन्य गतिविधियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बेहतर खेल सुविधाओं से युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। अग्निहोत्री आज हरोली विधानसभा क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय खड्ड में निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम के निरीक्षण के मौके पर बोल रहे थे। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे संवाद कार्यक्रमों में प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित करें ताकि पात्र लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। पठानिया आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के रैत में बीपीएल परिवारों के साथ संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। राजधानी शिमला के खलीनी क्षेत्र में एक कार और टैंकर की आमने सामने टक्कर हो जाने से 2 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान हेड कांस्टेबल प्रवीण मेहता और कांस्टेबल हेमंत कुमार के रूप में हुई है, जो पुलिस लाइन कैथू में तैनात थे। घटना के समय दोनों जवान ड्यूटी से संबंधित कार्य पर जा रहे थे। दोनों पुलिसकर्मियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। प्रदेश पुलिस महानिदेशक और अन्य पुलिस अधिकारियों ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि पार्टी का प्रत्येक प्रकोष्ठ संगठन और समाज के बीच मजबूत सेतु का काम करता है। राजीव बिंदल आज शिमला में पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल चुनाव के समय सक्रिय होने वाला दल नहीं है, बल्कि साल के 365 दिन समाज के बीच रहकर कार्य करने वाला संगठन है। राजीव बिंदल ने बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सुक्खू सरकार ने कोई पेपर ही नहीं करवाए, ऐसे में पेपर लीक होने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि जो कांग्रेस नेता वंदे मातरम का अपमान कर सकते हैं, उनसे भलाई की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती।
1: माननीय श्री राहुल गांधी जी वंदे मातरम का अपमान कर सकते हैं तो उनसे बाकी किस प्रकार की उम्मीद की जा सके। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग उन्होंने किया, उसके लिए निंदा शब्द बहुत कम पड़ता। जो भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है उसके बाद शिक्षा के ऊपर बोलना, ये उन्हें शोभा नहीं देती।
0: धर्मशाला में स्थित जिला कारागार में कैदियों और जेल वार्डर के बीच हुई हिंसक झड़प में 11 वार्डर और 4 कैदी घायल हो गए हैं। रविवार को हुई इस घटना में 2 वार्डर और 1 कैदी को गंभीर चोटें आई हैं। इन्हें उपचार के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा ने कहा कि ये घटना उस समय हुई जब जेल में कैदियों का मेडिकल चेकअप चल रहा था।
2: जिला कारागार धर्मशाला में विचाराधीन कैदी और जेल वार्डर के बीच में मेडिकल चेकअप को लेकर कुछ कहासुनी और बहसबाजी हो गई थी, जो बहसबाजी बाद में एक स्कफल और लड़ाई झगड़े के तौर पर परिवर्तित होगी। इसमें एक कैदी द्वारा खिड़की तोड़कर कांच के द्वारा अपने आप को भी कुछ इंजरीज इन्फ्लिक्ट किए हैं और एक जेल वार्डर को भी पेट में कांच घोंपने पर उससे गंभीर चोटें आई हैं। इस स्कफल में टोटल 11 जेल वार्डर को चोटें आई हैं, जिसमें 2 गंभीर रूप से घायल हुए थे और जो भी लड़ाई झगड़ा और इस तरह का स्कफल हुआ उसमें प्रिजनर एक्ट और BNS की धाराओं के तहत मामला सदर थाना धर्मशाला में दर्ज किया गया है और दोनों तरफ से क्रॉस FIR हुई है।
0: लोक जनशक्ति पार्टी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नितिन चौहान ने कहा है कि पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में तीसरा राजनीतिक विकल्प बनेगी। इसके लिए

0: गठन के विस्तार के साथ साथ युवाओं को प्रमुखता से पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। नितिन चौहान ने आज नाहन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
1: हर गांव, हर वार्ड, हर शहर में यहां से जाएंगे और हम अपना संगठन दोबारा से मजबूत करेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है। लोग आज के टाइम में सब परेशान बहुत हैं, क्योंकि कोई भी रोजगार के बारे में सोच ही नहीं रहा है, युवाओं के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। तो हम उन युवाओं के साथ लेकर चलेंगे और उनके लिए चिराग पासवान जी हमारे, उन्होंने बोला भी है कि मैं युवाओं के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, उनको साथ लेकर चलेगी।
0: प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का दौर लगातार जारी है और राज्य के अधिकांश स्थानों पर आज मॉनसून की व्यापक से भारी वर्षा हो रही है। राजधानी शिमला में भी आज साय से बारिश का सिलसिला जारी है। भारी वर्षा के कारण किन्नर कैलाश यात्रा तांगलिंग के रास्ते बंद हो गई है, जबकि पूर्वनी के रास्ते यात्रा अभी भी जारी है। भारी वर्षा के चलते प्रदेश में 87 सड़कें और 8 पेयजल योजनाएं अवरुद्ध हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी शिवालिक जन कल्याण संगठन ने नाहन शहर के लोगों को आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर आज उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। संगठन के अध्यक्ष योगेश ठाकुर ने उपायुक्त से चौगान मैदान को 2400 घंटे खुला रखने की मांग की, ताकि सेना व पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को आसानी हो सके। ज्ञापन में मेडिकल कॉलेज नाहन में स्टाफ की कमी को दूर करने और नाहन शहर में आवारा पशुओं की समस्या के समाधान की भी मांग की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों की संख्या कम करेगी सरकार, हर साल होगी 200 करोड़ रुपए की बचत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर लगाया गांधी परिवार को खुश करने के लिए प्रदेश के संसाधन खर्च करने का आरोप। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, शिक्षा के साथ खेल और अन्य गतिविधियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवा रही सरकार। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पार्टी के प्रकोष्ठों को बताया संगठन और समाज के बीच सेतु। और प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय, 5 जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
3: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
2: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
3: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
2: जानकारी लें, अधिकार जाने।
3: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के हमीरपुर धर्मशाला केंद्रों और एफएम शिमला पर भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। रोजगार समाचार सुनिए। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी कुमार सेन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार बाल विकास परियोजना कुमार सेन के अंतर्गत क्रैच केंद्रों में क्रैच कार्यकर्ता का एक पद व सहायिका के दो पद भरने हेतु केंद्र के फीडिंग एरिया व पंचायत स्तर के आधार पर सार्वजनिक सूचना के माध्यम से पात्र आवेदकों से आवेदन दिनांक 22 अगस्त 2026 तक सादे कागज पर आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का ब्यौरा इस प्रकार से है। ग्राम पंचायत थानाधार के अंतर्गत क्रैच केंद्र पमलाई में एक पद क्रैच सहायिका का व एक पद क्रैच कार्यकर्ता का भरा जाना है, जबकि ग्राम पंचायत शलौटा के अंतर्गत क्रैच केंद्र प्लारन में एक पद क्रैच सहायिका का भरा जाना है। क्रैच कार्यकर्ता के लिए मानदेय 5,500 रुपये निर्धारित किए गए हैं, जबकि क्रैच सहायिका के लिए मानदेय 3,000 रुपये निर्धारित किए गए हैं। पात्रता संबंधी शर्तें इस प्रकार से हैं।

0: क्रैच कार्यकर्ता व क्रैच सहायिका के पद के लिए केवल महिला प्रार्थी ही पात्र है। प्रार्थी उस गांव या संबंधित यानी फीडिंग विलेजेस की सामान्य महिला निवासी होनी चाहिए जिसके क्रैच केंद्र में रिक्त पद भरा जाना है। क्रैच के केंद्र के क्रैच कार्यकर्ता के लिए आवेदक की शिक्षा कम से कम 10.2 तथा सहायिका के पद के लिए 10वीं पास होनी चाहिए। प्रार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। प्रार्थी के परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप बाल विकास परियोजना अधिकारी कुमारसेन जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के दूरभाष नंबर 01782 और 2400049 पर संपर्क कर सकते हैं। रोजगार समाचार समाप्त हुए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं।
1: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है।

आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस, और कार्यक्रम में आगे सुनवा रहे हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत।

बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और 9 बजे न्यूज़ @9 रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गॉल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और हमलों की साजिश नाकाम की। एक रिपोर्ट।
2: ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी। इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 लोग शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान आईएसआई समर्थित इस आतंकी संगठन के पास से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित और आईएसआई समर्थित एक आतंकी सिंडिकेट है जो पूरे भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा है। अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। अमन यादव के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक, स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है।
3: भारत में पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है, अब 13 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 11 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ से ज्यादा के इलेक्ट से होने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसके बाद में मॉड्यूल्स और उसके बाद में कंपोनेंट्स और आगे डीप जाने पर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मटेरियल्स और कैपिटल इक्विपमेंट, जिन मशीनों से इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चर होती है।
1: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट।
4: श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
5: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह और संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे वर्ष 2002 और 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 1 दशक में भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने नियमों को समाप्त करने और नए नियम बनाने, प्रशासन में तकनीकी बदलाव तथा लेखा व्यवस्था जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बदलती प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार पेंशन प्रक्रिया को लगातार सरल बना रही है। उन्होंने बताया कि पेंशन फॉर्म से अनावश्यक

0: आवश्यक प्रावधान हटाए गए हैं और जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।
1: भारत सरकार में सेवानिवृत्त या पेंशनर्स की संख्या जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वर्किंग एम्प्लॉय उससे कहीं अधिक है। रिटायरमेंट हैपनिंग एट द एज ऑफ 60 व्हेन द लाइफ स्पैन हैज गॉन ऑलमोस्ट अप टू 70, सो मोस्ट ऑफ दीज रिटायरिंग कुलीग्स आर इन द प्राइम ऑफ देयर हेल्थ, ऑल्सो प्राइम ऑफ देयर एक्सपर्टाइज, प्राइम ऑफ देयर एक्सपीरियंस, और इसलिए उनको इस तरह से छुट्टी पे न जाने दिया जाए। उनकी सेवाएं, उनका योगदान किसी न किसी तरह से राष्ट्र निर्माण के कार्य आए और किस प्रकार आ सकता है ये उनके साथ चर्चा करने का माध्यम बने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी जमानतदारों को लेकर चिंताओं के बीच मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी विदेशी नागरिकों के लिए जमानत की शर्तें कठोर करने का आदेश दिया है। इस संबंध में कई निर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि जमानत पर रिहा किए गए विदेशी नागरिकों को अपने पासपोर्ट संबंधित न्यायालयों में जमा करने होंगे और वे पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे। देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई, जबकि जून में यह 5% थी। हर घर तिरंगा अभियान का आज समापन हो गया। हर घर तिरंगा अभियान के 5वें वर्ष में लाखों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए एकजुट हुए। 2022 में शुरू हुआ यह अभियान अब देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष का अभियान भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रित था, जिसमें देशभक्ति के अनोखे जश्न के तौर पर राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत को एक साथ लाया गया। देश भर में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां, सांस्कृतिक जुलूसों, स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों में हर घर तिरंगा की भावना साफ दिखी। पिछले 5 वर्षों में हर घर तिरंगा लोगों की भागीदारी और गर्व का एक देशव्यापी प्रतीक बन गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। UPI से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में UPI सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 281 अंक लुढ़क कर 77,728 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में 78 अंक की गिरावट देखी गई और ये 24,288 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब कुछ खेल खबरें। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग 42,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है।
4: केंद्र भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर और केंद्रापड़ा में बाढ़ का असर हुआ है, जिससे 1,304 गांव के लगभग 800,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बैतरणी, ब्राह्मणी और सालंदी नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन, पीने का पानी और बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक और जाजपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। राज्य के जल धन विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रह सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने झारखंड में कल के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network destroyed ahead of Independence Day, says Home Minister Amit Shah. Over 200 operatives held. Government approves 31 new proposals worth nearly 7,900 crore rupees under Electronics Components Manufacturing Scheme. Education Minister Prahlad Joshi holds meeting with senior officials on examination reforms, directs National Testing Agency to conduct thorough audit of all exam processes. BJP announces new team of national office bearers, Piyush Goyal, Smriti Irani and Vasundhara Raja Sindhya among key names. Indians in Qatar can now send money home through UPI from post offices. And in men's cricket, India take 178-run lead after restricting Sri Lanka to 284 in first innings of Gaul Test. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. More from our correspondent.
6: The security agencies launched a coordinated multi-state operation on 12th of this month using a real-time intelligence sharing system with state police forces to counter Shehzad Bhatti network-linked disruptions planned around Independence Day. The operation led to the detention of over 200 people across 14 states, including 62 from Uttar Pradesh, 52 from Haryana, 51 from Delhi, and 44 from Punjab. Substantial recoveries, including IEDs, grenades bearing Pakistan Ordnance Factory markings, pistols, live cartridges, and CCTV cameras used for espionage, were made from ISI-funded group. The network was involved in several terrorist activities. Shehzad Bhatti network, a Pakistan-based ISI-backed terror syndicate, linked to grenade, IED and petrol bomb attacks and targeted killings across India. SBN has also been playing local conduits to recce police, defense and religious sites and to install CCTV cameras for espionage. More than 80 FIRs and over 200 arrests linked to this network have been made so far. With Aman Yadav, this is Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
5: The government has approved 31 more applications under Electronics Components Manufacturing Scheme or ECMS with projected investment of 7,877 crore rupees. These approvals will result in a total production of electronics components worth 82,000 crore rupees and are also expected to generate over 9,500 employment opportunities. These applications have come from 10 states including 7 from Tamil Nadu and 6 each from Maharashtra and Haryana. Union Minister of Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnav, handed over the approvals to the applicants at a function in New Delhi. The applications are related to the manufacturing of products including acetylene black, speakers and microphones, optical transceivers, capacitors and coils. Speaking on the occasion, Mr. Vaishnav said that with this, 31 approvals, A total of 106 applications of companies have got approvals under the scheme.
7: Electronics,

0: in first innings of Gaul Test. That's all in the news at 9. Good night.
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोतो, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे संगीतकार नदीम श्रवण की जोड़ी के बारे में। जी दोस्तों, नदीम श्रवण 1990 के दशक की बॉलीवुड की सबसे सफल और लोकप्रिय संगीतकार जोड़ी थी, जिन्होंने भारतीय फिल्म संगीत में मधुरता के लिए एक नए युग की शुरुआत की थी। इस जोड़ी में नदीम अख्तर सैफी और श्रवण कुमार राठौर शामिल थे और इनके संगीत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, बांसुरी, सितार और शहनाई का बेहतरीन मिश्रण भी देखने को मिलता है। तो आइए सुनवाते हैं उन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत।
2: Step into the world of Nexa.
3: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
3: Presenting the bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
2: Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags.
3: And now it's yours at an effective price of just 5.79 lakh rupees.
2: Yes, rupees 5.79 lakh. Valid till 31st August.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the bold Baleno today.
2: Hurry, offer still stocks last. TNC apply.
4: Nexa.
2: Step into the world of Nexa.
3: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
3: Presenting the bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
2: Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags.
3: And now it's yours at an effective price of just 5.79 lakh rupees.
2: Yes, rupees 5.79 lakh. Valid till 31st August.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the bold Baleno today.
2: Hurry, offer still stocks last. TNC apply.
4: Nexa.

जी दोस्तों, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और इसमें हम बात कर रहे हैं संगीतकार नदीम श्रवण की जोड़ी के बारे में। जी दोस्तों, नदीम का जन्म 6 अगस्त 1954 को और श्रवण का जन्म 13 नवंबर 1954 को मुंबई में हुआ था। और श्रवण के पिता पंडित चतुर्भुज राठौर एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे, और जिससे श्रवण को बचपन से ही संगीत का माहौल मिला। और वहीं नदीम को शायरी और धुनों की बहुत ही गहरी समझ थी। और उसके बाद इनकी जोड़ी ने अपने करियर की शुरुआत जो है वो वर्ष 1977 में भोजपुरी फिल्म दंगल से की थी, और इसका गाना काशी हिले पटना हिले भी ज़बरदस्त हिट रहा था। और इसके बाद उन्होंने मैंने जीना सीख लिया वर्ष 1981 और इलाका फिल्म वर्ष 1989 में। इन हिंदी फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया, लेकिन इन्हें वो बड़ी कामयाबी नहीं मिल पा रही थी जिसकी इन्हें तलाश थी। और उसके बाद उनकी सफलता का जो स्वर्णिम युग था वो वर्ष 1990 से वर्ष 1997 तक रहा। और साल 1990 में आई महेश भट्ट की फिल्म आशिकी ने रातों रात इस जोड़ी को स्टार बना दिया। और टी सीरीज द्वारा रिलीज ये एल्बम भारतीय संगीत इतिहास का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बन गया था। और नदीम श्रवण की धुनों ने गायक कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल के करियर को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। और इसके साथ वर्ष 1990 से 1997 के बीच के इस जोड़ी का बॉलीवुड पर एक छत्र राज था, और इनकी हर दूसरी फिल्म का संगीत जो था वो प्लेटिनम हिट होता रहा। और साथ ही इनके संगीत की अगर बात करें तो बहुत सी फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया, जिसमें आशिकी, साजन, फूल और कांटे, सड़क, दीवाना, दिल का क्या कसूर, और उसके साथ साथ फिल्म तुमसा नहीं देखा, अंदाज, दिल का रिश्ता, राज एक रिश्ता, कसूर, बहुत सारी फिल्में जो थी जिसमें उन्होंने संगीत जो था वो दिया था। तो आइए सुनवाते हैं आपको एक और प्यारा संगीत जिसका संगीत इन नदीम और श्रवण द्वारा दिया गया है।

आप सुन रही थी कार्यक्रम एक ही कलाकार। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की।

शेर सिंह जरयाल की आवाज़ में आपने ये लोकगीत सुना। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं राज प्रभाकर की आवाज़ में गाया ये लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि की 10 बज चुके हैं। नीचे प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे। सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे में। और आज का जो कार्यक्रम है इसमें हम कुछ फिल्में लेकर आए हैं जिनके गीत हम अपने श्रोताओं को सुनाएंगे उनकी पसंद पर। तो स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का इस प्यारे से कार्यक्रम में। और दोस्तों, आज की शाम होगी बेहद खास, क्योंकि आपके दिलों की धड़कन और आपकी पसंद के नगमे गूंजेंगे हमारे आज के इस शो में, जिसका नाम है पसंद आपकी गीत हमारे। तो उठाइए फ़ोन और मिलाइए सुर से सुर। तो दोस्तों, आपको फ़ोन करने के लिए हमारा नंबर तो वही जाना पहचाना सा है, नंबर है 01892224391। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे बातें भी कर सकते हैं और साथ में सुन सकते हैं प्यारे प्यारे गीत। तो जो फिल्में आज के कार्यक्रम में हमने शामिल की हैं उनके नाम अपने श्रोताओं को एक बार जल्दी से बताना चाहेंगे। और फिल्में हैं आवारगी, दिल वाले, करण अर्जुन खिलाड़ी, प्यार का साया, रजिया सुल्तान, रोटी कपड़ा और मकान, सड़क शराबी, सिलसिला, विवाह, हिना और कबीर सिंह। तो इन फिल्मों में से कोई भी गीत हमारे श्रोता जो है वो सुन सकते हैं, और उसके लिए उनको डायल करना होगा हमारा जाना पहचाना सा नंबर 01892224391। तो लीजिए, नंबर हमने बता दिया है और हमारे कॉलर जो है वो भी लाइन पर आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन है और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम है पसंद आपकी गीत हमारे, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी मैम, डॉली बात कर रही हूँ।
0: जी डॉली, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैम रोटा सूर्या से।
0: जी तो डॉली, पहले अपनी पसंद बता दीजिए।
1: मैम सभी फिल्मों के गीत चलेंगे।
0: जी फिल्में हमने अभी बताई हैं, लेकिन अपने श्रोताओं के लिए एक बार फिर से बता देते हैं। फिल्में हैं कबीर सिंह, हिना, विवाह, सिलसिला, शराबी, सड़क, रोटी कपड़ा और मकान, रजिया सुल्तान, प्यार का साया, खिलाड़ी, करण अर्जुन, दिलवाले और आवारगी।
1: ठीक है मैम, तो विवाह मूवी का सुना दीजिए।
0: जी जरूर सुनवाएंगे आपको आपकी पसंद। और डॉली, अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे, क्या करते हैं आप?
1: मैम मैं जॉब करती हूँ।
0: जी जॉब कौन सी, कहाँ पे, किस डिपार्टमेंट में?
1: मैम एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर हूँ।
0: जी टीचर हैं आप?
1: जी।
0: चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं?
1: मैम संस्कृत पढ़ाती हूँ मैं।
0: जी संस्कृत पढ़ाते हैं, तो और बताइए कुछ संस्कृत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आज के दौर में आपको क्या लगता है कि संस्कृत भाषा जो बच्चे हैं वो सीखना चाहते हैं ज़्यादा?
1: जी मैम संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स ने एडमिशन ली हुई हैं। देखिए जो आज भी जो लोग जो जनमानस के मन में यही है कि संस्कृत एक बहुत ही कठिन विषय है, लेकिन संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है। और जो वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि जो संस्कृत है वो कंप्यूटर के लिए सबसे इजी भाषा है।
0: जी तो आप ये कहना चाहेंगी कि संस्कृत भाषा जो है वो जरूर हमें सीखनी चाहिए, है ना? क्योंकि हमारे बहुत से वेद पुराण संस्कृत में हैं।
1: जी सभी।
0: जी जी तो बहुत
1: आपको हमारी एशियन चीजें समझनी पड़ेगी, उसके लिए हमें संस्कृत का ज्ञान होगा। क्योंकि अगर संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा तो जैसे आपको इंटरनेट पर कोई किसी ग्रंथ की लाइन का कुछ भी मतलब बताएगा तो आप उसको इजिली वही मान लोगे, चाहे वो ठीक है या नहीं है।
0: या गलत है। तो अगर आपको सही पहचान करनी है तो उसके लिए आपको संस्कृत भाषा जो है वो जरूर आनी चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए।
1: जी
0: चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और बहुत अच्छी बातें आपने बताई। तो अब कार्यक्रम में सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत फिल्म विवाह से। जी तो कार्यक्रम में आपने कॉल किया, शुक्रिया, और सुनिए अपनी पसंद का ये गीत फिल्म विवाह से।
1: थैंक यू।
0: थैंक यू जी।

0: जी कार्यक्रम है पसंद आपकी गीत हमारे। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सिंह धमार बोल रहा हूँ, नंदपुर पटोली।
0: जी तो कश्मीर सिंह जी से बात तो हमारी नहीं हो पाई, और श्रोताओं से गुजारिश करेंगे कि थोड़ा सिग्नल का ध्यान ज़रूर रखें जब भी हमें कॉल करें। और चलिए एक और कॉलर जो है वो लाइन पर है, तो देखते हैं उनसे बात हो पाती है कि नहीं। हेलो।
2: हेलो, नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
2: मैडम जी, विनोद कुमार बोल रहा हूँ, पालनपुर से।
0: जी विनोद कुमार जी, और बताइए क्या काम करते हैं आप?
2: मैडम मैं दिव्यांग हूँ, पर भी फिर भी मैं रेडियो टीवी की रिपेयर करता हूँ।
0: चलिए जी, अच्छी बात है, अपना काम करते हैं, आप बैठ के भी काम कर सकते हैं, है ना?
2: जी
0: जी, चलिए तो बताइए विनोद जी, आप आज आपने कॉल किया है तो कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
2: मैडम मुझे सड़क मूवी का सुना देना, तुम्हें अपना बनाने की कसम खा ली खुशी दे लगाना।
0: चलिए, देखिए आपने ये फिल्म?
2: हाँ जी मैडम, देखी
0: जी। तो ये गीत आपको अच्छा लगता है?
2: हाँ जी मैडम।
0: किसी खास वजह से या वैसे ही अच्छा लगता है?
2: वैसे आकाशवाणी धर्मशाला में चला रहता है।
0: चलिए जी, अच्छी बात है। सारे कार्यक्रम सुनते हैं आप आकाशवाणी धर्मशाला के?
2: हाँ जी मैडम जी, मैं तो सुन रहा था से लेकर
0: जी,
2: कलाकार सुना, फिर पहाड़ की गूंज सुना मैंने।
0: चलिए अच्छी बात है, तो यूं ही सुनते रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ, और आपको आपकी

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और इस समय आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे। तो श्रोताओं, आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उसके लिए आपको डायल करना होगा हमारा नंबर, और नंबर है 01892224391। इस नंबर को डायल करके आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और सुन सकते हैं अपनी पसंद का गीत।

0: हेलो हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं जी? इनकी कॉल एक बार फिर से कट चुकी है और इनसे गुजारिश करेंगे कि जब ये कॉल कर रहे हैं तो सिग्नल का ध्यान जो है वो ज़रूर रखें और तभी हमें कॉल करें। एक और कॉलर जो है वो लाइन पर आ चुके हैं, तो आइए देखते हैं कि कौन है। हेलो हेलो जी, नमस्कार जी,
1: पुरानी
0: लेकिन आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं आ रही है
1: फिल्म
0: जी। पुरानी फिल्म का गीत सुनेंगे आप जी? अजय गुप्ता जी, स्वागत करते हैं आपकी कॉल का। कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे? फिल्मों के नाम हमने बताए हैं, फिर से बताएं जी। जी फिल्में हैं सिलसिला, शराबी, रोटी कपड़ा और मकान, रजिया सुल्तान, प्यार का साया, खिलाड़ी, करण अर्जुन, हिना, दिलवाले और कबीर सिंह।
1: का
0: करण अर्जुन का कोई भी गीत जी, तो इस गीत के बाद आपकी पसंद जो है वो आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए शुक्रिया।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: मैडम विजय कुमार बोल रहे हैं, नागनी से, नागनी माता मंदिर से।
0: जी विजय कुमार जी, स्वागत है आपकी कॉल का। तो पहले बता दीजिए कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: दिल वाले का मैडम जी, कोई
0: दिल वाले का कोई भी गीत?
1: भी गीत नहीं, कितना हसीन चेहरा।
0: कितना हसीन चेहरा जी, आपकी पसंद आप तक ज़रूर पहुंचाएंगी। तो और बताएंगे कुछ अपने बारे में विची जी?
1: हाँ जी मैडम जी, हम
0: जी
1: नागनी से, हम बांध आ रहे हैं छोटे से।
0: जी और आज नागनी माता मंदिर जो है,
1: हाँ जी, मेले लगे हुए हैं नागनी माता
0: हाँ
1: के, हम
0: जी, हम यही प्रश्न आपसे
1: चलते हैं
0: पूछने
1: अंदर।
0: वाले थे कि नागनी माता मंदिर में भी आजकल मेले चल रहे हैं
1: हाँ जी,
0: जी। तो और
1: बिल्कुल
0: बताइए मेलों के बारे में, किस तरह से, क्या मान्यता है इन मेलों की, कुछ बताइए इसके बारे में
1: बड़ी मान्यता मैडम जी।
0: जी।
1: हाँ जी,
0: तो ये मेले जो हैं वो कितने दिन तक चलते हैं?
1: ये मेले मैडम जी 2 महीने तक चलते हैं।
0: 2 महीने।

0: तक चलते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी मैडम जी।
0: तो वैसे आज नाग पंचमी का दिन भी है।
1: हाँ जी,
0: तो आज के दिन शुरुआत होती है, कब से शुरुआत होती है इन मेलों की?
1: ये सावन के महीने में मैडम जी।
0: सावन के महीने में जी,
1: जुलाई महीने में।
0: चलिए, तो आपने किस चीज की आपकी दुकान है मेले में?
1: साग की है और रेडीमेड की है।
0: चलिए, तो आजकल तो नागनी मेलों में तो बहुत सारे श्रद्धालु जो है वो आते होंगे।
1: बहुत ज्यादा मैडम जी, रौनकें लगी हुई है इधर मैडम जी, और कमा रहे हैं सभी।
0: चलिए जी,
1: जी
0: तो
1: अच्छा काम चल रहा है मैडम जी।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, यूं ही आपका काम हमेशा ही अच्छा चला रहे, और मंदिर की मान्यता भी बहुत है, और ये जी जी जी तो भगवान सब पर जो है वो कृपा बनाए रखें।
1: जो भी सच्चे दिल से नागनी माता के मंदिर में आता है, मांगता है, उसको महामाई अच्छा देती है मैडम जी।
0: चलिए जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो भी श्रद्धालु मंदिर में आते हैं और सच्चे मन से जो श्रद्धा के साथ जो पूजा अर्चना करते हैं, तो उनकी मुरादें जो हैं वो ज़रूर पूरी होती हैं। चलिए जी, अच्छी बात है, और आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई। तो कार्यक्रम में आपकी पसंद का गीत जो है वो इस गीत के बाद हम ज़रूर सुनवाएंगे। तो कार्यक्रम में कॉल करने के लिए शुक्रिया।

0: यीशु, तो अभी आपने करण अर्जुन फिल्म का गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, और अगली फरमाइश जो हमें आई है वो फिल्म दिलवाले से है। तो अगली फरमाइश सुनवा रहे हैं फिल्म दिलवाले से, तो आइए मिलके सुनते हैं इस गीत को।
1: ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने।

0: हेलो।
1: नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार जी, कार्यक्रम में आपकी कॉल का स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: मैं वीरेंद्र बिहान गांव जेरा जिला सारा हरियाणा से बात कर रहा मैम जी।
0: जी और बताइए सर, आज कौन सा गीत सुनेंगे? पहले फिल्म का नाम बता दीजिए।
1: जी मैंने आपकी फिल्म के नाम नहीं सुने जी, आप थोड़ा कन्फर्म कराइए।
0: अब फिल्में जो हमारे पास बची हैं उनके नाम आपको बता देते हैं। कबीर सिंह, हिना, सिलसिला, शराबी, रोटी कपड़ा और मकान, रजिया सुल्तान, प्यार का साया, खिलाड़ी और आवारगी।
1: ये शराबी का सुना दो मैम जी, कैसे प्यार थे।
0: जी शराबी फिल्म का गीत सुनेंगे।
1: हाँ जी, कैसे प्यार थे वो सुनना मैम जी।
0: जी जरूर, तो इस गीत के बाद आपको आपकी पसंद का गीत हम सुनवाएंगे। तो अपने बारे में कुछ बताएंगे, क्या करते हैं आप?
1: मैम जी मैं पेट्रोल पंप पर चेयरमैन हूँ मैम जी।
0: जी तो इस समय आप पेट्रोल पंप पर हैं?
1: नहीं मैम जी, करते हैं।
0: चलिए तो और कुछ कहना चाहेंगे?
1: और तो जी मैं ये कहना चाहता हूँ जी, आप तो ये नाम बताते हैं ना फिल्मों की, जैसे आप सीधा लाइव मतलब प्रोग्राम तो लाइव है जी, लेकिन आप जो सोचा अपनी पसंद का सुना चाहते वो लिखना चाहिए, आप कुछ फिल्मों के नाम बताते हैं
0: जी हमें कुछ, क्योंकि हमारे पास जो समय की भी लिमिट है और साथ में हम काफ़ी खुली फरमाइश रखते हैं, काफ़ी फिल्में आपको बताते हैं कि उनमें से आप अपनी पसंद का कोई भी गीत हमें बता सकते हैं। तो चलिए जी।
1: ये मैम जी आप है ना, जैसे ही सॉन्ग आप प्ले करते हैं ना उस टाइम पे आप फोन को अटेंड कर लिया करो और छोटा से पूछ लिया करो कौन सा गीत सुनोगे, तब तक वो गीत समाप्त हो ना तो तब तक आप उस सॉन्ग को सिलेक्ट करके रख लिया करो जी।
0: जी चलिए, तो आपके सुझाव का हम स्वागत करते हैं और बात करेंगे अपने अधिकारियों से।
1: हाँ जी, जब 5 मिनट का सॉन्ग चलेगा ना तब तक आप श्रोता की पसंद के गीत को सिलेक्ट करके रख सकते हैं।
0: चलिए जी, अच्छी बात है आपके सुझाव के लिए। तो इस समय आपने शराबी फिल्म का गीत सुनना चाहा?
1: आपको उसमें ना जी फिर ये फिल्में बताने का वो नहीं रहेगा, जिसमें कि आपको फिल्में नहीं बतानी पड़ेंगी कि आपको फिल्मों से कोई गीत सुनना है, फिर श्रोता अपनी पसंद का गीत आराम से सुन सकता है जिसमें।
0: जी तो अभी शराबी फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं, दे दे प्यार दे।
1: हाँ जी, हाँ जी मैम जी। हाँ जी, ये व्हाट्सएप इनको प्रोग्राम आता है मैम जी आपके यहाँ पे?
0: जी हाँ हाँ, ईमेल पे आधारित और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जो हमने रखा है वो SMS बेस्ड भी रखा है, तो उसमें भी आप SMS कर सकते हैं।
1: ये ईमेल का तो मैं करता हूँ जी, सोमवार को और बुधवार को।
0: हाँ जी हाँ जी जी जी जी जी जी जी जी, उस कार्यक्रम में आप मैसेज भी भेज सकते हैं और मेल कर सकते हैं। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सभी मिलकर
1: कब आता मैम जी प्रोग्राम?
0: जी ईमेल और जो व्हाट्सएप है हमारा वो इकट्ठा ही कार्यक्रम है, तो आप उसमें आप कभी भी ईमेल भी कर सकते हैं और SMS भी भेज सकते हैं। तो आप आपका जो SMS
1: करना पड़ेगा मैम
0: जी, तो आप उसमें SMS जी जी
1: SMS कैसे करना पड़ेगा मैम जी, कहाँ पे करना पड़ेगा?
0: SMS के लिए आपको बता देंगे कि ईमेल आईडी है हमारी और SMS भी आप कर सकते हैं। इन श्रोता से बात करते करते इनकी कॉल जो है वो कट चुकी है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने फिल्म शराबी का गीत जो है वो सुनना चाहा है और हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि इस समय कार्यक्रम चल रहा है पसंद आपकी गीत हमारे, तो आप कार्यक्रम के विषय में ही बात करें और आपको ईमेल आईडी और उसके साथ ही जो SMS कहाँ पे आपने भेजना है ये जानकारी कार्यक्रम के अंत में हम आपको दे देंगे।

बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और इस समय आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे। और एक और कॉलर जो है वो हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, तो आइए देखते हैं कौन है। हेलो, हेलो, नमस्कार जी। जी अपना नाम बता दें। जी किशोरी लाल जी, स्वागत है आपकी कॉल का। तो सबसे पहले बता दीजिए कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे। जी सिलसिला फिल्म का। चलिए जी, गीत तो हम आपको सुनवाएंगे ही, और कुछ कहना चाहेंगे सर। जी जी, ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बरसात के मौसम में हम अक्सर भूल जाते हैं कुछ चीज़ों को, नदी नालों के पास बिल्कुल ना जाएं और ध्यान रखें इस चीज़ का, ताकि कोई दुर्घटना जो है वो ना हो सके। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, और ख़ासकर पानी का ध्यान जो है वो ज़रूर रखना चाहिए। बरसात के मौसम में पानी को उबाल कर या छान कर पिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं, और कुछ कहना चाहेंगे। चलिए जी, तो सिलसिला फिल्म का गीत आपको। जी जी जी, अब वो कार्यक्रम बंद हो चुका है, तो जी तो बताइए कौन सा गीत सुनेंगे। सिलसिला का नीला आसमां सो गया सुना दें। चलिए जी, बहुत अच्छा गीत आपने चुना है और आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद फ़ोन करने के लिए।

0: हेलो
1: कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी, इंद्रभान सिंह जी, स्वागत है आपकी कॉल का। तो बता दीजिए, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे
1: बताइए कौन कौन से निकाले हैं, जल्दी से बता दीजिए।
0: जी? अब जो फिल्में हमारे पास हैं वो है आवारगी, खिलाड़ी, प्यार का साया, रजिया सुल्तान, रोटी कपड़ा और मकान, हिना और कबीर सिंह।
1: तो खिलाड़ी का गाना है ना, वादा करके, वादा करके अभिजीत का वादा है
0: जी
1: सनम, करते हैं ना वो
0: जी
1: गाना
0: वादा रहा
1: अभिजीत।
0: सनम,
1: हाँ, अभिजीत और शायद अलका
0: अलका
1: याग्निक का
0: याग्निक
1: आवाज।
0: की आवाज़ें हैं जी। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है। तो देखी है आपने ये फिल्म?
1: जी मैडम, देखा हूँ मैं ये, शक्ति कपूर, क्या बोलते हैं ये, अक्षय कुमार जी हैं इसमें, मैं देखा
0: जी
1: हूँ मैंने।
0: जी जी जी और शायद इस फिल्म में आयशा जुल्का साथ में हीरोइन भी हैं, और बहुत अच्छे गीत हैं इस फिल्म के
1: जी
0: जी। और बताइए कुछ, आप आकाशवाणी धर्मशाला के सभी कार्यक्रम सुनते हैं?
1: जी मैडम, कभी कभी सभी सुनता हूँ, बहुत केंद्र को सुनता हूँ, बहुत केंद्र में मैं तो फोन ही करके मैं जुड़ता हूँ, लाइव में, ईमेल में, जो अब जो कार्यक्रम होता है ना, फोनिंग जो लाइव
0: जी जी
1: कार्यक्रम, और
0: जी
1: इसके
0: लाइव
1: बाद
0: प्रोग्राम,
1: मैं
0: सजीव फोन इन प्रोग्राम आप सभी सुनते हैं। और छत्तीसगढ़ में बताइए, मौसम कैसा है? बारिश हो रही है?
1: यहाँ पे बारिश गजब हो रहा है मैडम एकदम, अभी तो झड़ा बहुत जबरदस्त हो रहा है पानी अभी।
0: बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इस
1: जी
0: बारिश के मौसम में आप कुछ सावधानियां भी रखते हैं?
1: मैडम, सब सावधानी के लिए रखता हूँ, जैसे ड्यूटी जाता हूँ तो छाता वाता रखता हूँ,
0: जी
1: और इसके बाद गम्बूट पहनता हूँ, और इसके बाद जैसे पानी एरिया जो रहता है, जैसे गड्ढा उड्ढा रहता है, पानी भरा रहता है, तो वहां पर मैं थोड़ा सा देख देख के जाता हूँ मैडम, और
0: जी और
1: काफी
0: अपने घर के आसपास पानी के गड्ढे तो बनने नहीं देने चाहिए, क्योंकि इससे मक्खी और मच्छर भी पैदा होते हैं और
1: मक्खी होता है
0: बीमारियां पनती
1: डेंगू,
0: हैं। जी
1: डेंगू, हैजा, मलेरिया, सब मच्छर पनपते हैं, उससे भी साफ
0: जी
1: सफाई
0: जी
1: होना जरूरी, घास
0: जी
1: पास को उखाड़ना जरूरी।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बरसात के मौसम में तो खास करके पानी का ध्यान हमें रखना ही चाहिए, और हमारे घर के आसपास जो है वो पानी इकट्ठा बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए, ताकि बीमारियां जो है वो ना पनप सकें। चलिए, बहुत
1: जी
0: अच्छी
1: जी
0: जानकारी आपने दी, बहुत अच्छा लगा बात करके। तो आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत, लेकिन उससे पहले सुनेंगे एक संदेश, और फ़ोन करने के लिए शुक्रिया।
2: जान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला, SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला, SEL टाइगर

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी। पहले
0: जी। नमस्कार जी, कौन बोल रही हैं? अपना
1: तो
0: परिचय
1: मैं आप
0: दीजिए।
1: पूछ रहा हूँ कि आपने अपना परिचय नहीं दिया। मैं इतनी देर से, कितने सालों से कह रहा हूँ कि जो भी उद्घोषक होता है, उद्घोषक होती है, तो अपना नाम पहले प्रसारित करें। तो मैं किससे बात कर रहा हूँ इतनी मधुर
0: जी
1: आवाज से, जो पूरी वर्ल्ड को अपनी आवाज सुना रही है, उनका नाम पूछना चाहता हूँ।
0: जी सर, मेरा नाम पूनम है और आप अपना परिचय
1: हाँ
0: दीजिए।
1: पूनम जी, नमस्कार। पूनम नमस्कार, आप मेरी आवाज को पहचान ही गए होंगे।
0: जी, हम आपकी आवाज पहचान चुके हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए जो है वो अपना परिचय दे दीजिए।
1: मैं बोल रहा हूँ जी, पंजाब के जिला होशियारपुर, तहसील मुकेरिया के गांव मेहतापुर से महेंद्र सिंह राणा। मैं
0: जी
1: इसलिए आज तक बात इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों को पता लग जाए कि एड्रेस जो है बिल्कुल सही है।
0: जी सर, और जैसे जो हमारा कार्यक्रम रेगुलर सुनते हैं और शाम से सुन रहे हैं, तो किसी न किसी कार्यक्रम में कई बार नाम सुन भी लिया होगा, और हो सकता है
1: बिल्कुल
0: कि नाम
1: बिल्कुल
0: हमने
1: बिल्कुल
0: नहीं लिया। चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आप।
1: हीना है, मैं नहीं हूँ, देर हो जाती है, जैसे आपने देर कर दी, देर करता नहीं हूँ, देर हो जाती है।
0: जी, हीना फिल्म का गीत आप सुनेंगे।
1: हाँ जी,
0: जी
1: और
0: मैं देर
1: सुनाइए पूनम जी,
0: जी
1: क्या हाल चाल है? ठीक
0: जी बिल्कुल ठीक हैं। और
1: है, चलो भगवान करे मेरे बेटे बेटियां जो भी है, मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ कि सुख शांति से रहे। जो मेरे सभी श्रोता सुन रहे हैं, वो भाई बंधु हैं, जो
0: जी
1: उनके भगवान की कृपा रहे और सब सुख शांति से रहे। और
0: जी
1: सबसे ज्यादा यह है कि वो अपने प्रकृति से और अपने भगवान से जुड़े रहे।
0: जी जी बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि सभी सुख शांति से रहें और प्रकृति से हमेशा जो है वो जुड़े रहें, और प्रकृति के संरक्षण में भी अपना योगदान जो है वो ज़रूर देते रहें।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल, वही तो बात है, मैं
0: जी
1: प्रकृति से हम जुड़ेंगे तो प्रकृति की हम सुरक्षा करेंगे। ठीक
0: जी जी बिल्कुल
1: है, धन्यवाद, सुना
0: जी,
1: दिए,
0: धन्यवाद।
1: और भी श्रोता होंगे, उनका भी
0: जी
1: अपना
0: जी
1: फोन खोल लेना है, तो बहुत बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी कार्यक्रम में कॉल किया आपने, शुक्रिया इसके लिए। और सुनवा रहे हैं आपको हिना फिल्म का ये गीत।

जी हाँ श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे, और हमारे एक श्रोता ने हमसे बात की थी कि हम हमारी जो ईमेल आईडी है जिस पे वो अपनी फरमाइश भेज सकते हैं, तो हम अपने श्रोताओं को ईमेल आईडी बताना चाहेंगे, तो वो है musicdshala@gmail.com। इस पर आप अपनी फरमाइश का गीत जो है वो भेज सकते हैं फिल्म के नाम के साथ, और आप अपने नाम जो है अपने प्रियजनों के नाम जो है वो भी साथ में मेल कर सकते हैं और अपनी पसंद का गीत जो है वो सुन सकते हैं।

जी हाँ श्रोताओ, तो हमारा कार्यक्रम जो है वो अब समापन की ओर है, और चलने से पहले आपको बता दें कि जिन श्रोताओं की कॉल जो है वो आज के कार्यक्रम में हम नहीं ले पाए, उनसे हम माफ़ी मांगना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले कार्यक्रम में उनकी कॉल जो है वो ले सकें। और जिन श्रोताओं की कॉल्स आज के कार्यक्रम में लगी हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। अब आपको चलने से पहले बता दें कि इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा सुनील कुमार का और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। अब अपनी रेडियो दोस्त पूनम को दीजिए इजाज़त।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत

0: 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलिन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने अब तक की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। इनमें डॉ हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना का चरण आज पूरा हो गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। इस दौरान 13,000 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुंचे और मतदाता सूची के सत्यापन का काम पूरा किया। इस महीने की 24 तारीख से 23 सितम्बर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।